एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026। अभी प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब प्रारंभ होती है।

FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है।

0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित कर रहे थे हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। शुरुआत इस देश वंदना से करेंगे।

समूह स्वर में आपने सुनी देश वंदना। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह और साथियों की आवाजों में राम भजन।

0: भीमसेन जोशी के गाए इस कृष्ण भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है सूखे चारे का यूरिया उपचार। वाचक अभिनव गौरहा है।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। आज हम बात करबो अपन पशु मन बर कैसे ढंग से हम सूखा चारा मा यूरिया के उपचार करके अपन पशु मन ला लाभ दे सकत है। मवेशी मन के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन के लिए हरा चारा और संतुलित पशु आहार बड़ जरूरी होते, लेकिन वर्ष भर हरियर चारा के सीमित उपलब्धता और पशु आहार के बढ़त लागत किसान मन के सामने एक गंभीर चुनौती होते। वर्तमान में लगभग 80% पशु सूखा चारा विशेषकर धान और गेहूं के भूसा में निर्भर है, जौन हा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होए के बावजूद पोषण के दृष्टि से कमजोर होते। काबर एमा प्रोटीन के मात्रा 3% से भी कम होते और एकर पाचनशीलता और स्वादिष्टता भी कम होते। ऐसा स्थिति में भूसा मतलब कटिया के या पैरा के यूरिया द्वारा उपचार एक प्रभावी समाधान के रूप में सामने आते, जेखर से खर पौष्टिकता में वृद्धि होते और प्रोटीन के मात्रा लगभग 5% बढ़ जाते, मतलब 8% तक पहुंच जाते। एकरे संग एकर पाचनशीलता और स्वादिष्टता में सुधार होते, जेखर से पशु एला ज्यादा मात्रा में खाते और पोषक तत्व के बेहतर उपयोग कर पाते। ए प्रकार यूरिया उपचारित भूसा पशु मन में प्रोटीन की कमी ला दूर करे में सहायक सिद्ध होते और एकर नियमित उपयोग से आहार के आवश्यकता में लगभग 30% तक कमी लाए जा सकते है, जेकर से पशुपालक मन के लागत घलव घटते। यूरिया उपचारित भूसा पशु मन पर बड़ लाभकारी होते, काबर यह नरम और स्वादिष्ट होए कारण पशु एला बड़ चावले खाते और एकर बर्बादी घलव नहीं हो। ए प्रकार से उपचारित चारा के उपयोग से दूध उत्पादन के लागत ला कम करे जा सकत है, जेकर से पशु पालक मन ला आर्थिक लाभ मिलते। एकरे संग यूरिया उपचारित भूसा कम लागत मा साल भर उपलब्ध हो सकत है। काबर हमन धान गेहूं लगाथन और अगर यूरिया उपचार कर दी तो हमन सो साल भर बढ़िया ढंग से रख रही थे। तब भूसा के यूरिया उपचार के विधि के बात करबो। भूसा के वैज्ञानिक उपचार बर सबले पहली 4 किलोग्राम यूरिया ला 40 लीटर बढ़िया साफ पानी मा बढ़िया ढंग से घोल के एक समान विलयन तैयार करना है। एकर बाद लगभग 1 क्विंटल सूखा भूसा ला समतल भूया में 3 से 4 इंच मोटाई के परत के रूप में फैला जाते। तैयार यूरिया घोल ला ए परत मा फव्वारा या स्प्रेयर के सहायता से समान रूप से छिड़के जाते, जेकर से भूसा पर्याप्त रूप से नम हो सके। एकर बाद ए भूसा ला पैर से बढ़िया दबाए जाते ताकि हवा के जिन स्थान है वो कम हो सके और हवा रहित एक व्यवस्था बन सके। एकर बाद ओकर ऊपर पुनः 1 क्विंटल भूसा के समान परत बिछाए जाते। वही प्रकार 4 किलोग्राम यूरिया के 40 लीटर पानी में घोल ओकर ऊपर छिड़के जाते, फिर दबा के ओला सघन करे जाते। ये प्रक्रिया ला जैसन आवश्यकता ओ हिसाब से दोहराए जाते। आखिर मा पूरा चारा ला चारों कति से प्लास्टिक के सीट मा जेमा हवा झन आ सके जा सके वैसा ढक दिए जाते, जेखर से बाहरी हवा पूर्ण रूप से रुक जाते। ए प्रकार तैयार

गर्मी में लगभग 3 हफ्ता और ठंडा के समय लगभग 4 हफ्ता तक दबा के रखना है। ये अवधि के दौरान यूरिया के अपघटन होके अमोनिया के निर्माण होते जौन हाँ भूसा में उपस्थित कार्बनिक यौगिक विशेषकर लिग्नोसेल्युलोज ला आंशिक रूप से विघटित करते। एकर से भूसा के पाचनशीलता और पोषक उपलब्धता में वृद्धि होते जेकर से पशु ए पोषक तत्व ला बेहतर उपयोग कर सकते। अब बात करबो उपचारित भूसा ला खवाए के पशु मन ला तरीका। भूसा के अपेक्षित मात्रा ला ढेर से निकालना।

0: जब पशु यूरिया उपचारित भूसा लखाए लगे तो समझा के पशु खाए ला तैयार है, फिर ढेर से निकाल के सीधा पशु ला खवाना है।
1: राम राम जय जोहार।
2: सूखे चारे का यूरिया उपचार, इस विषय पर आप सुन रहे थे खेती की बात। वाचक थे अभिनव गौरहा। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य गायक हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे जड़ जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्री राम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।

0: अभी हम प्रसारित कर रहे थे रामचरित मानस गान। मुख्य गायक थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन। आज का विषय है संयमित और संतुलित आलोचना ही करें। आलेख श्री अशोक रहर गांवकर का है।
1: मनुष्य जब किसी की आलोचना करता है या किसी पर कटाक्ष करता है, उस समय वो ये नहीं सोचता कि उस व्यक्ति को क्या उसने ठीक से समझा है जिसकी वो आलोचना करने जा रहा है। होता यह है कि हम बगैर जाने समझे ही आलोचना या कटाक्ष करने लगते हैं, और इसी नासमझी के कारण हम कभी कभी उपहास का पात्र भी बन जाते हैं। आलोचना अच्छी है, परंतु वो संयमित और शालीन होनी चाहिए। आलोचना के लिए आलोचक को उस व्यक्ति से अधिक क्षमतावान होना पड़ता है जिसकी वो आलोचना कर रहा है। यदि वो 19-20 नहीं हुआ तो उसकी आलोचना की सर्वत्र निंदा होने लगती है। ऐसा नहीं है कि हर बार आलोचना के लिए आलोचक की सराहना हो। खासकर अपनों की या प्रियजनों की जब आलोचना की जा रही हो तो हमें बहुत संयम पूर्वक और संभलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अक्सर मनुष्य अपने या प्रियजनों के विलाप अथवा दुख और कष्ट की बात सुनकर अपनी सुध-बुध खो बैठता है। ऐसा ही एक मार्मिक प्रसंग आंध्र प्रदेश के एक संत पोतन्ना के जीवन में भी आता है। पोतन्ना अत्यंत विद्वान थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत का संस्कृत से तेलुगु भाषा में रूपांतर किया था। एक दिन वे तल्लीन होकर अष्टम स्कंध का गजेंद्र मोक्ष प्रसंग लिख रहे थे। इसी बीच उनका साला श्रीनाथ उनसे मिलने आया। फिर क्या था, श्रीनाथ तो साला ही था, जिसके बारे में कहा जाता है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। पोतन्ना के साले ने जिज्ञासावश उस मोक्ष प्रसंग को पढ़ना शुरू किया। पोतन्ना ने लिखा था कि हाथी के पैरों को मगर ने पकड़ लिया था और धीरे धीरे वो उसे निगलते जा रहा था। जब गजेंद्र को अपने प्राण संकट में होने का एहसास हुआ तो उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे तुरंत आकर उसके प्राण बचा लें। आर्त पुकार सुनकर भगवान कृष्ण बिना कोई क्षण गंवाए वहां आ पहुंचे। इस आपाधापी में उन्हें अपना सुदर्शन चक्र साथ ले जाने का ध्यान ही नहीं रहा। इतना पढ़ने के बाद श्रीनाथ ने बहनोई होने के नाते पोतन्ना का मजाक उड़ाते हुए आलोचना के स्वर में पूछा कि आपने ये कैसे लिखा कि भगवान को सुदर्शन चक्र ले जाने का ध्यान ही नहीं रहा। श्रीकृष्ण मगर और हाथी का युद्ध देखने गए थे या गजेंद्र के प्राणों की रक्षा करने के लिए, और फिर बगैर सुदर्शन चक्र के वे गजेंद्र को भला मोक्ष कैसे दिलवा पाते। जीजाजी, क्या आप नहीं जानते कि कोई काव्य लिखने के पूर्व उसे अनुभव की कसौटी पर परखना होता है। पोतन्ना उस समय तो चुप रहे, लेकिन दूसरे ही रोज एक दृष्टांत के माध्यम से श्रीनाथ को नसीहत देने की ठान ली। उन्होंने श्रीनाथ के लड़के को दूर खेलने भेज दिया और पास के कुएं में एक बड़ा पत्थर धकेल दिया। जब जोर की आवाज हुई तो पोतन्ना ने शोर मचाया, श्रीनाथ दौड़ो, जल्दी दौड़ो, तुम्हारा लड़का कुएं में गिर गया है, उसके प्राण बचाओ। इतना सुनना था कि श्रीनाथ ने आव देखा न ताव उस कुएं में छलांग लगाने ही वाला था कि पोतन्ना ने रोकते हुए पूछा, मूर्ख हो क्या, ये क्या कर रहे हो? छलांग लगाने से पहले क्या तुमने ये सोचा कि तुम्हें तैरना आता भी है या नहीं? और फिर बिना रस्सी बाल्टी के तुम अपने लड़के के प्राण कैसे बचा पाते? पोतन्ना बोले, श्रीनाथ घबराओ नहीं, तुम्हारा लड़का

0: इस कुएं में नहीं गिरा। वो देखो सामने से आ रहा है। मैं तो तुम्हें उस दिन के सुदर्शन चक्र वाले सवाल का जवाब दे रहा था। मैं तो तुम्हें यह दिखाना चाहता था जिससे हम अगाध प्रेम करते हैं उस पर यदि संकट आए तो क्या दशा होती है। ठीक यही भगवान कृष्ण के साथ भी हुआ।
1: संयमित और संतुलित आलोचना ही करें। इस विषय पर आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख श्री अशोक रहर गांवकर का था। FM बैंड 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आज के शेष और मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी हम देंगे कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

शाम 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला विषय किसान कल्याण हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया और सुबह 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर हर रोज की तरह हम पेश करेंगे कार्यक्रम आज सुबह। सुबह 7:30 पर सदाबहार नगमों का सिलसिला शुरू होगा। कार्यक्रम नए तराने का सफर हम तय करेंगे सुबह 10:30 पर। हर रोज की तरह सुबह 11 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

संध्या 5 बजे समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे किसानवाणी, जिसके अंतर्गत आज की बात में चर्चा होगी होम हर्बल गार्डन के लाभ विषय पर। स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसानवाणी गांव में सुनेगा ग्राम परसापाली विकास खंड बमनी डी जिला जांजगीर चांपा के कृषकों के मध्य किया गया ध्वन्यांकन कार्यक्रम। संयोजन और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। कार्यक्रम का संपादन और रिकॉर्डिंग किया होगा पंचू भैया ने। महिला सभा का समय होगा संध्या 5:35 पर। सामयिक चर्चा का विषय होगा स्वस्थ जीवन के लिए साइकिल का महत्व, क्रम होगा महिला मंडली का। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा शाम 6:20 पर। शाम 7:45 पर आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। रात्रि 8 बजे स्वास्थ्य पत्रिका अमृतधारा के अंतर्गत योग और मधुमेह से बचाव और योग विषय पर डॉक्टर अरिहंत जैन से की गई बातचीत सुनेगा। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। रजनीगंधा की महक हम बिखेरेंगे रात्रि 8:20 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: कृतपात्रवर्यः नरेन्द्रमोदीप्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, सङ्घटनात्मकविस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरू भाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुच्चेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं।

0: मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित कर रहे थे समाचारों को। हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम आज सुबह की ओर।

श्रोताओं, दिन की शुरुआत यदि सकारात्मक विचारों और उपयोगी जानकारी के साथ हो तो पूरा दिन उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है। इसी उद्देश्य के साथ हम लेकर आए हैं ऐसा कार्यक्रम जिसमें होंगी ज्ञानवर्धक चर्चा जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर, प्रेरक विचार और कुछ ऐसी बातें जो आपके दिन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती हैं। तो अभिनंदन है आप सभी का कार्यक्रम में। कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े अवसर, बड़े संसाधन या कोई असाधारण काम करना जरूरी होता है। लेकिन सच तो ये है कि जीवन की दिशा बदलने वाली चीज़ें अक्सर बहुत छोटी होती हैं। हमारी रोज़मर्रा की आदतें ही हमारे व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, संबंधों और सफलता का आधार बनती हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतों की जो देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें नियमित रूप से अपनाया जाए तो ये हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। सबसे पहले तो दिन की अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। सुबह का समय पूरे दिन की दिशा को तय करता है। अगर दिन की शुरुआत जल्दबाजी, तनाव और मोबाइल फोन के साथ होती है तो मन भी उसी तरह व्यस्त और अस्थिर बना रहता है। इसके विपरीत अगर सुबह कुछ समय शांत वातावरण में बिताया जाए, थोड़ा व्यायाम योग किया जाए और सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत की जाए तो पूरा दिन ऊर्जा और उत्साह बना रहता है। दूसरी जरूरी आदत है समय का सम्मान करना। समय एक पूंजी है जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आती। अक्सर हम समय का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। दिन भर के कार्यों की एक छोटी सी योजना बनाना और प्राथमिकताओं को तय करना हमें ज्यादा व्यवस्थित और सफल बना सकता है। श्रोताओं, उसके बाद आती है पढ़ने और सीखने की आदत। आज के दौर में ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। हर दिन कुछ नया पढ़ना, चाहे वो समाचार पत्र हो, कोई किताब हो, उपयोगी लेख हो, ये सभी हमारे विचारों को व्यापक बनाता है। सीखने की प्रक्रिया कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन स्वयं एक निरंतर चलने वाला विद्यालय है। श्रोताओं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना भी हमारी आदत में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य किसी भी सफलता की नींव है। संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम और भरपूर नींद ऐसी छोटी आदतें हैं जिनका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। स्वास्थ्य की अनदेखी करके कोई भी उपलब्धि लंबे समय तक आनंद नहीं दे सकती। और अब हम बात करेंगे

एक ऐसी आदत की जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, और वो है कृतज्ञता का भाव रखना। हम अक्सर उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं। प्रतिदिन कुछ क्षण उन लोगों और परिस्थितियों को धन्यवाद देने में बिताइए जिन्होंने आपके जीवन को बेहतर बनाया है। ये आदत मन में संतोष और सकारात्मकता का संचार करती है। श्रोताओं, जीवन की वास्तविकता यही है कि सफलता और खुशियाँ अचानक नहीं मिलती, वो हमारी छोटी छोटी दैनिक आदतों का परिणाम होती है। जिस तरह एक एक बूंद से सागर भरता है, उसी तरह अच्छे जीवन का निर्माण भी एक एक अच्छी आदतों से ही होता है।

0: लीजिए श्रोताओं, सड़क सुरक्षा और जागरूकता के संबंध में जानकारियां सुनते हैं ट्रैफिक अपडेट के माध्यम से।
1: प्रतिदिन की तरह आप सुन रहे हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नगर पालिक निगम अर्थात शहरी क्षेत्र के साथ ही गांव-गांव में भी सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन हो रहा है, या यूं कहें कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, जिले में उपलब्ध संसाधनों, उपलब्ध बल के साथ साथ पूरे मनोवेग से यातायात का आमला आपको सुगम और सुरक्षित आवागमन व्यवस्था उपलब्ध कराने कृत संकल्प है। शासन की अवधारणा के अनुसार 24 घंटे सातों दिन यातायात का बल इस हेतु समर्पित है। फिर भी यदा कदा सड़कों में अप्रत्याशित स्थिति भी देखने को मिलती है। निश्चित रूप से लोग इससे असहज होते हैं, पीड़ित होते हैं। यदि हम चाहें ये सब ठीक हो, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आवागमन सुगम हो, सभी की यात्रा सुरक्षित हो, तो इसके लिए आवश्यक है हम सभी व्यवस्था के अनुसार चलें, यातायात नियमों के अनुसार चलें। वो कुछ इस प्रकार। किसी भी चौक में यदि आप रेड सिग्नल में खड़े हैं तो अपने बाएं तरफ, जिसे लेफ्ट फ्री जोन कहा जाता है, उसे छोड़कर खड़े हों, ताकि बाएं जाने वाले बिना रुके जा सकें। शहरी क्षेत्र में सड़कों में व्यवस्था के लिए पीली पट्टी बनाई गई है। अपने वाहन हमेशा इस पट्टी के बाहर ही खड़ा करें। नो पार्किंग जोन में कभी भी वाहन खड़ा ना करें, इससे जाम की स्थिति नहीं होगी। सड़क के किनारे स्थित दुकानदार अनावश्यक रूप से सड़कों तक सामान फैलाकर ना रखें, ताकि सड़क पूरी पूरी स्वतंत्र रहे। ठीक इसी प्रकार सुरक्षित यात्रा के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें और इस वाहन में तीन सवारी कभी न चलें। मोबाइल को वाहन चलाते समय भूल जाइए, अर्थात कोई भी वाहन चलाते मोबाइल से बातें बिल्कुल न करें। अपने वाहन चलाते समय रॉन्ग साइड ओवरटेक कभी न करें, यदि आवश्यक हो तो दाहिने तरफ से आगे बढ़ें। मालवाहक

0: वाहनों में बॉडी से बाहर निकले हालत में माल कभी भी लोड ना करें, यह घातक हो सकता है। शराब सर्वनाश की जड़ है, यह सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण है, अतः नशा से दूर रहें। नशाकार वाहन चलाने की गलती कभी ना करें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: श्रोताओं, कृपया ये जरूरी सूचना सुनिए। शासकीय आईटीआई नेवरा तकतपुर में सत्र 2026 और 27 में संचालित एक वर्षीय व्यवसाय कोपा में एवं शासकीय आईटीआई कोटा में संचालित द्विवर्षीय व्यवसाय फिटर इलेक्ट्रीशियन एवं एक वर्षीय व्यवसाय कोपा व स्टेनो हिंदी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई से 29 जून तक आधिकारिक वेबसाइट www.cgitioadmissions.nic.in पर जाकर किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए अध्यर्थी संस्था या वेबसाइट पर प्रदर्शित हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। ये सूचना यहीं समाप्त हुई। श्रोताओं, आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सोशल मीडिया से जुड़ा ना हो। सुबह आँख खुलते ही मोबाइल स्क्रीन पर नज़र जाती है और रात को सोने से पहले भी हम सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। इसने दुनिया को हमारी उंगलियों पर ला दिया है। जानकारी, मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार और संवाद के अनगिनत अवसर इसने हमें दिए हैं, लेकिन इसका सही और गलत दोनों उपयोग हमारे लिए वरदान और समस्याओं का कारण बन सकता है। श्रोताओं, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसने दूरियों को कम कर दिया है। आज हम देश दुनिया की खबरें तुरंत जान सकते हैं, नए कौशल सीख सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सहायता भी ले सकते हैं। अब तो विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा से लाभ भी उठा रहे हैं और नए नए व्यंजन बनाना भी सीख रहे हैं। छोटे व्यवसाय सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं और समाज के कई सकारात्मक अभियानों को भी इससे गति मिली है। इस दृष्टि से सोशल मीडिया आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। मगर श्रोताओं, जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही सोशल मीडिया का दूसरा पक्ष भी है जिस पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है। आजकल फेक न्यूज, अफवाहें, भ्रामक जानकारी तेजी से फैल रही है और कई बार बिना सच जाने और जांचे लोग किसी भी गलत संदेश को आगे बढ़ा देते हैं, जिससे समाज में भ्रम और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। एक गलत जानकारी हजारों लोगों को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा आजकल साइबर अपराध तेजी से बढ़ गए हैं। नकली लिंक, फर्जी कॉल, ऑनलाइन ठगी और व्यक्तिगत जानकारी की चोरी जैसी कई घटनाएं आम हो गई हैं। कई लोग अनजाने में अपनी निजी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा कर देते हैं, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि इंटरनेट की दुनिया में जितनी सुविधा है उतनी ही सावधानी की जरूरी है। श्रोताओं, सोशल मीडिया का एक और प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लगातार दूसरों की

सफलताओं, यात्राओं या दिखावटी जीवन शैली को देखकर कई लोग स्वयं की तुलना करने लगते हैं। इससे तनाव, हीन भावना और असंतोष बढ़ सकता है। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर तस्वीर और कहानी वास्तविक जीवन की पूरी सच्चाई नहीं होती है। श्रोताओं, तकनीक स्वयं ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। सोशल मीडिया एक शक्तिशाली साधन है श्रोताओं, अगर इसका उपयोग समझदारी, संयम और सतर्कता के साथ किया जाए तो ये ज्ञान, विकास और संवाद का माध्यम बन सकता है। सोशल मीडिया का सही उपयोग तभी संभव है जब हम कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांच लें, अपनी निजी जानकारी, बैंकिंग विवरण, मोबाइल पर आया हुआ OTP किसी से भी साझा ना करें, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, संदिग्ध लिंक दिखाई दे तो उससे बचें। साथ ही हमें चाहिए कि सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय की भी एक सीमा तय करें, ताकि ये हमारी पढ़ाई, काम, परिवार और स्वास्थ्य को प्रभावित ना करें।

श्रोताओं, इस गीत के साथ अब दीजिए हमें अनुमति, कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार।

कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आनंद लीजिए सदाबहार नगमों का। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा उसमें राज कपूर का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। वो केवल एक अभिनेता, निर्देशक, निर्माता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे कथाकार थे जो कैमरे की भाषा में समाज की कहानी कहते थे। उनकी फिल्मों में प्रेम था, दर्द था, संघर्ष था, उम्मीद थी और सबसे बढ़कर इंसानियत थी। और जब बात राज कपूर की हो रही हो तो उनके गीतों का जिक्र किए बिना चर्चा अधूरी रह जाएगी। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लेकर आए हैं उनके द्वारा अभिनीत और निर्देशित फिल्मों के सदाबहार गीतों को। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस संगीतमय सफर को।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना मुकेश की आवाज़ में धर्म करम फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी, आर डी बर्मन का संगीत था। श्रोताओं, राज कपूर की पहचान केवल एक अभिनेता के रूप में नहीं थी, वो एक दूरदर्शी निर्माता, संवेदनशील निर्देशक और भारतीय सिनेमा के एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने अपनी सोच से फिल्म निर्माण की दिशा बदल दी। अपने सपनों को आकार देते हुए आरके फिल्म्स की स्थापना उन्होंने की और ये बैनर भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित पहचान बन गया। आइए इसी बैनर के फिल्म का गीत हम सुनवाते हैं आपको। बॉबी फिल्म के इस गीत की रचना की है आनंद बख्शी ने, शैलेंद्र सिंह की गायकी है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, 1948 में राज कपूर ने आरके फिल्म्स की स्थापना की थी, जिसने न केवल मनोरंजन बल्कि समाज, प्रेम, मानवीय संवेदनाओं और भारतीय संस्कृति को भी बड़े पर्दे पर खूबसूरती से पेश किया है। आरके फिल्म्स की कुछ फिल्मों के नाम हैं बरसात, आवारा, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली। तो आइए, अब बारी है सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के इस खूबसूरत गीत की, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में बांधा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

शैलेंद्र लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रविंद्र जैन जैसे रचनाकारों के साथ उनकी साझेदारी ने हिंदी फिल्म संगीत को अनमोल धरोहर दी। आइए अब पेश करते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म के गीत को, जो कि राज कपूर के निर्देशन की अंतिम फिल्म थी। इसे संगीत से और शब्दों से सजाया है रविंद्र जैन ने, गायकी लता मंगेशकर और साथियों की है।

श्रोताओं, राज कपूर की फिल्मों में संगीत सिर्फ गीत नहीं बल्कि कहानी का एक जीवंत पात्र होता था। शंकर जयकिशन

श्रोताओं, राज कपूर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक युग गाथा है। उनकी फिल्में, उनके विचार, उनके किरदार और उनके गीत आज भी हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके अभिनय को याद करते हुए सुन रहे हैं मेरा नाम जोकर फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़ में। गीतकार नीरज हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन।

सदाबहार नगमे में अभी आप सुन रहे थे मेरा नाम जोकर फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़ में। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हम आकाशवाणी दिल्ली से कुछ ही देर में अनुप्रसारित करेंगे।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउ लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउ लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयास

0: प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
1: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
2: 2-3 branches also।
0: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
4: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पंवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउंग क्लाइंग सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। इंडिया एंड यूएस हैव

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के अंक में आप मन के स्वागत है। जय जोहार महेंद्र साहू कोतिले। श्रोता हो, आज के पत्रिका में आप मन सुन सकत हो डॉक्टर सियाराम साहू ले वार्ता। विषय हवय छत्तीसगढ़िया लोक जीवन में बरखा ऋतु फुलवा। ये कहानी आप मन ला सुनाही डॉक्टर दीपशिखा पटेल। और मोर भुइयां के आखिर में डॉक्टर मीता अग्रवाल आप मन ला कविता सुनाही। आज के अंक में सबले पहली आवा आप मन ला सुनवात हन एक वार्ता जेकर विषय हावे छत्तीसगढ़िया लोक जीवन में बरखा ऋतु। अब वार्ताकार हावे डॉक्टर सियाराम साहू।
1: हमर बाबा हा एक ठन जनौला जन्मावे, 12 में 4 गए तब का बाँची। जनौला तो सीधा और सरल है, 12 में 4 गए तब 8 बाँची। तब हमर सियान हा कहे, अरे बेटा कुछ नहीं बाँचा है, 12 महीना में 4 महीना चौमास में पानी नहीं गिरही तब वो 8 महीना कोनो काम के नहीं होए। ये महत्तम है छत्तीसगढ़िया लोक जीवन में वर्षा ऋतु के। ये हमर लोक जीवन के प्राण आए। छत्तीसगढ़िया लोक जीवन में वर्षा ऋतु सिर्फ मौसम भर नो है, भलुक जिंदगी के उत्सव और जीवन चक्र के सबले महत्वपूर्ण अध्याय हरे। हम एला ऐसन घलो कही सकत हन, वर्षा छत्तीसगढ़िया मन बर खेती के आरंभ और संस्कृति के पुनर्जन्म आए। हमर छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते। हमर ये पहचान है सर्वस वर्षा ऋतु ऊपर आधारित होते। वैसे तो किसानी के नवा साल है अक्ती के दिन ले शुरू होते, जी हाँ, गांव के ठाकुर देव माता देवाला या अन्य देवी देवता के पूजा पाठ करके बीज बोए के शुरुआत होते। फिर जेठ महीना के आखिरी अवसाढ़ के लगती माँ जब करिया बादल आगास माँ उमड़त घुमड़त गरजत चमकत आते तब खेती किसानी शुरू होते। आंधी के संग झिमिर झामर टिपिर टापर बरसा होए लगते, तब किसान मेड़ पार मुही के जतन करत खातू कचरा ल बगरावत कांटा ल सकेल थे और खेती के बूता मा लग जाते। तब उखर मधुर कंठ ले ए गीत निकल पर थे, कांटा सकेलव रे लैका औ सियान बावत के दिन आगे भैया बोए ल चली धान। अषाढ़ के महीना में अर्तता के बोली ले नांगर जोतत किसान अपन पछीना ले धरती ल सींच थे, तन के पछीना के बूंद झरथे और हृदय ले गीत के बोल। माटी के दुलरवा बेटा के गीत गावत जब मेहनत करते तब पूरा वातावरण ददरिया के मोहक स्वर ले गूंजे लगते। आघू न बैला है टिकला डोली में उतर हूँ हो जाही चिखला हवाले ले रे। अषाढ़ आते तब मन झूम जथे, धान के बामा शुरू हो जथे, अषाढ़ के बूंद धरती पर अमृत तो आए संगे संग किसान बर। अषाढ़ महीना मा चुक जबे माने जीवन के सुविधा ले चुक जबे, तेखर सिती कहे गे है डार के चूके बेंद्रा और अषाढ़ के चूके किसान। कृषि संस्कृति न केवल हमर लोक जीवन ला प्रभावित करते बल्किन कवि हृदय ला घलो। तभे तो किसानी के बूता ला अपन लेखनी में लिखते, चल धर ते झुहा टोपली मैं धरत हूँ कुदारी, संगवारी मैं धरत हूँ रापा कुदारी, ठल्हा बैठे में जिंदगी नहीं चलाए, बिन जांगर पेरे पेट नहीं भराए, कमा के खाबो नहीं करन अलाली, संगवारी मैं धरत हूँ रापा कुदारी। अषाढ़ महीना के नाहकत सावन आजत है, सावन सबला सुहात है, सावन महीना फसल के सिंगार करते, तब मन मयूरा खुशी के गीत गाते। सावन महीना खेती के काम जोर होते, बन कचरा के निंदई के संगे संग बियासी के बूता घर जते। सावन महीना के घपटे बादर चमकत बिजली के संग किसान बियासी करत गीत के माध्यम ले अपन हृदय के उद्गार ला व्यक्त करते। ये सुघर बेरा मा छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी कवि कुंज बिहारी चौबे जी किसान के उद्गार ला लिखते, चल मोर भैया बियासी के नांगर, अरे कैसे मजा बियासी के नांगर, बिजली लफा लफ चमकत है इंदर देवता तमकत है, जुड़ जुड़ बोहत है पुरवाही, दिखत है लच्छन गजब पानियाही, घपटे है उत्ती डहर करिया बादर, चल मोर भैया बियासी के नांगर। खेत के लहलहावत फसल ल देख के किसान के आनंद दुगना हो जाते है।

निंदई बियासी के संग धान चले के काम शुरू हो जाते। खेत में निंदत किसान श्रमिक के दल ददरिया गा के आनंद विभोर हो जाते। रिमझिम बरसा सावन के ददरिया के स्वर लहरी आत्मा ला तृप्त कर देते। सावन महीना ले किसानी तिहार के शुरुआत हो जाते। हरेली छत्तीसगढ़ और कृषि संस्कृति के प्रमुख त्यौहार आए। हरेली सावन महीना के अमावस के दिन मनाए जाते। हरेली लोक जीवन और कृषि संस्कृति के मंगल के पर्व आए। तभे तो लोक कंठ ले किसानी काम के ऐसन उद्गार होते। पानी पसिया पेज पी के पहावत हन जिनगानी, मैं छत्तीसगढ़िया भैया करथाओ खेती किसानी, जियत किसानी मरत किसानी, नहीं जानो कुछ सियानी। लैका मन गेणी बना के चढ़ते, नाचते गाते और उछाह मनाते। सावन महीना के अंजोरी पाख नम्मी तिथि के भोजली बोए जाते, जैन पुन्नी तक चलते। राखी तिहार

हरेली सावन महीना के अमावस के दिन मनाए जाते। हरेली लोक जीवन और कृषि संस्कृति के मंगल के पर्व आए, तभे तो लोक कंठ ले किसानी काम के ऐसन उद्गार होते। पानी पसिया पेज पी के पहावत हन जिन गानी, मैं छत्तीसगढ़िया भैया करथों खेती किसानी, जियत किसानी मरत किसानी, नहीं जानो कुछ सियानी। लैका मन गेड़ी बना के चढ़ते, नाचते गाते और उछाह मनाते। सावन महीना के अंजोरी पाख नवमी तिथि के भोजली बोए जाते, जैन पुन्नी तक चलते। राखी तिहार के बिहान भर नदिया तरिया में ठंडक थे, एमा आरती जागरण स्वागत और विसर्जन के गीत गाए जाते, जैन मा भोजली दाई के स्तुति होते। देवी गंगा लहर हमर भोजली दाई के भीजे आठो अंग। यही भादो महीना में चतुर्थी तिथि के बहुला चौथ मनाए जाते, ओखर दो दिन बाद भादो महीना अंधियारी पाक के छठ तिथि के माता मन अपन संतान के सुख समृद्धि बर कमर छठ के उपास रही थे। एला भगवान बलराम के घलो माने जाते। कमर छठ के दो दिन बाद आते आठे कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पूरा गांव उछाह मंगल ले मनाते। दूसर दिन दही लूट के आयोजन होते, जेमा गांव के ग्वाल बाल मन मगन होके ये परब ला सुघर बना देते। दही लूटो नंदलाल, दही लूटो नंदलाल, आठे कन्हैया दही लूटो। पोरा तिहार छत्तीसगढ़ के प्रमुख तिहार आए। पोरा तिहार भादो अमावस के मनाए जाते। पोरा पोर फूटना यानी धान में पोटरी पान आना। पोरा के दिन कृषि संस्कृति के आधार नंदिया बैला के पूजा करे जाते। नंदिया बैला में ठेठरी खुरमी चढ़ाए जाते, जिन हर भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतीक आए। ये लोक आस्था के चरम हरे। जी हाँ, खान पान और रोटी पीठा में घलो देवत्व के दर्शन होते। नान्हे लैका मन नंदिया बैला के पूजा के बाद ओमा सीली लगा के खेल उड़ाते और आनंदित होते। नोनी मन जाता पोरा दिया चुकिया और माटी ले बने खिलौना ले सगा पहुना खेलते। महिला मन पोरा पटके बर जाते, जिहा सुवा नित्य करत अपन अंतस के भाव व्यक्त करते। तरिहरी नाना मोर नाना हरि नाना, कदम तरी मोंगरा के झाड़े, ये झाड़े रे सुवना कदम तरी मोंगरा के झाड़े। पोरा के तीन दिन बाद तीजा तिहार। छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में तीजा तिहार के बड़ महत्तम है। भादो महीना के अंजोरी पाक के तीसर दिन तीजा के तिहार मनाए जाते। पोरा तिहार के रोटी धर के भैया के अगोरा रही थे। महिनी मन चाहे कोनो उम्र के होए, मैके के दुलार पाए बर कुलकत रहे थे। और रही काबर नहीं, साल भर में एक बेर तो ये पावन अवसर आते। करु भात खा के तिजहारी मन उपास रही थे। पति के सुख समृद्धि और दीर्घायु जीवन बर कठिन निर्जला उपास रही थे। ये उपास ला कुमारी कन्या मन घलो रही थे। माता पार्वती हर मनचाहा बर पाए बर भगवान शिव की कठिन तपस्या करे रहीस, ऐसे वेद पुराण में वर्णन और लोक मान्यता है। तीजा के बिहान भर गणेश चतुर्थी ले शुरू हो जाते विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी के पूजा अर्चना, 11 दिन चलते। गणेश विसर्जन के बाद शुरू हो जाते पितर पाक। पितर पाक में हम अपन पुरखा मन के सुरता करत उखर प्रति अपन कृतज्ञता व्यक्त करथन। तोरई के साग संग बरा सोहारी और खीर के भोग लगावत पुरखा मन ला अर्पण तर्पण देथन। ए बीच खेती में आखिरी निंदई करगा छटई के काम और फसल ला खातू माटी के बरोबर मात्रा देवत पानी आदि के बने देखभाल करे बर लगते। पितर मोक्ष के संगे संग देवी दुर्गा के आराधना के पर्व नवरात्रि के पर्व शुरू हो जाते। देवी दुर्गा के भक्तिमय वातावरण ले गांव गूंजे लग जाते। माता देवाला में जमारा बुआ थे, मनोकामना के ज्योति जल थे, देवी के मूर्ति की स्थापना होते, अपन मनोती मनाते। स्थापना के सुमरनी सिंगार ले लेके विसर्जन तक अलग अलग प्रकार के गीत गा के माता के सेवा करे जाते। माता और जमारा विसर्जन के बाद दशहरा के पर्व मनाए जाते। उखर 5 दिन बाद शरद पूर्णिमा मनाए जाते, फिर वर्षा ऋतु समाप्त हो जाते। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु

0: सिर्फ नहीं ला पाए, यहाँ के लोग खान पान रहन सहन में परिवर्तन लाते। किसान मन बर ये चौमास हा आशा और संस्कृति के उत्सव होते। वर्षा ऋतु छत्तीसगढ़िया लोक जीवन बर ऋतु भर नो है, ये श्रम संगीत स्वाद और संबंध के मौसम आए। खेती में पानी भरत ही छत्तीसगढ़ के लोक जीवन आशा और विश्वास ले भर जथे। ये सबो बात ला जाने के बाद हमर बाबा के बात है सिरतोन लगते कि 12 महीना में 4 महीना गीस का बाँचीस।
1: डॉक्टर सियाराम साहू ले अभी आप मन वार्ता सुनत रहो, जेकर विषय रहिस छत्तीसगढ़िया लोक जीवन बरखा ऋतु। और कार्यक्रम में आगू बढ़त हवन और आप मन ला एक कहानी सुनवात हन जेकर शीर्षक हावे फुलवा। और कहानी सुनात हैं डॉक्टर दीप शिखा पटेल।
2: गजब दिन के गोठ है, एक गांव है जंगल के तीर में रहिस। गांव में सब हंसी खुशी के साथ जीवन बितावत रहे। गांव में ककरो घर में सुख दुख आवे तो गांव में सबो जन मिल के निपटारा करे। गांव के तीर में किम रिकिम के रूख राई, आमा जाम तेंदू महुआ बिही केरा अमली आनी बानी के रूख रहिस। गजब सुघर लगे संझा बिहनिया चिरई चिरगुन के मीठ बोली। उही गांव में डोकरा डोकरी रहे, तेखर दो जन बेटा और एक जन बेटी रहे। बेटा मन के बिहाव हो गए है, नोनी के बर बिहाव नहीं हुए है। नोनी अपन दाई ददा के संग में रहे। डोकरा डोकरी मन अपन बेटी के फुलवा नाम रखे रहिन। सही में फुलवा हा फूल असन सुग्घर रहे। रोज बिहनिया उठ के अपन दाई के संग में रन्नी कुरिया में जाके घर लिप के पानी भर चल देवे। भाई भौज फुलवा के काम देख के करे। फुलवा अपन दाई ददा संग खेत में जावे और चिरे चिरगुन ला देख के गजब कुलक कुलक के खेले। इसने इसने में फुलवा चिरे चिरगुन के भाका ला समझे लगे। ए डहर ओखर भाई भौजी मन फुलवा ला गजब टिटोली लगा के ताना मारे। फुलवा ला देखे तहा ओखर भाई भौजी मन उला दुरिया ले चिल्लावे, वही दे आवते करिया चिरई कहके। फुलवा रोवत अपन दाई की गोदी में बैठ जावे। इसने दिन बीतत जाते। अब डोकरा डोकरी के बेटा बहु मन अलग खाए कमाए ला धर लीन। फुलवा अपन सियान दाई ददा के संग रह गए। फुलवा के भाई भौजी मन जंगल में रोज डाही मारे बर जावे। फुलवा घलो अपन सियान दाई ददा संग में डाही मारे बर जावे तो ओखर भाई भौजी मन फुलवा ला देख के औ ताना मार के हंसे। फुलवा चुपचाप काम करत रहे औ भाई भौजी ले पहले काम खत्म करके आमा के रूप में चढ़ के अपन सियान दाई ददा और भाई भौजी मन बर पके पके आमा ला भुइया में गिरावे। फिर वाह रे निर्दयी भाई भौजी रूख ले उतार के ओखर भाई मन चटकन में मार देवे। बिचारी फुलवा रोवत सुस्कत अपन दाई के लुगरा के छोर में आंखी के आंसू पोछत अपन दाई ला पोटार लेवे। ए डहर ओखर भाई मन नागर जोते और डाही मारे रहे तौन खेत में धान बोए है। बिचारी फुलवा का करे रात के अपन सियान दाई ददा मन ला खवा पिया के सोवा दिस और जंगल निकल गए। फुलवा तो पिंगला विद्या जानते रहे, चिरई चिरगुन और सब जीव जानवर के बोली भाखा जाने समझे। फुलवा जम्मो जंगल के सिंग वाले बरहा मन ला गुहार थे। रात भर में बरहा मन फुलवा के खेत ला सिंग में कोट डरते। फुलवा अपन घर में चुपचाप आके सो जाते। इति बिहनिया ले ओखर भाई मन नागर धर के जोते पर देखते खेत के जोत के है। फुलवा के भौजी मन आंखें मटकावत ईर्ष्या के मारे कहते तोरे करिया चिरई बहनी के खेत ताए बिकट कमैलिन बने हैं। फुलवा रात के बियारी करे के बाद अपन दाई ला कहते दाई जान अब भाई मन करा ले खेत में बोए बर धान मांग लेते। फुलवा के बात मान के दाई हर अपन बेटा मन जगह जाके कहते बेटा हो खेत में फुलवा हा घलो धान बोही धान दे देते हो। भाई मन प्रेरत कहते दाई को लाज नहीं आवे अब फुलवा टूरिया धान बोही हमर गांव में नाक कटवाओ। भौजी मन घलो अपन सास ला नंगत फुहरे फुहर गारी देते। दाई बिचारी कले चुप आगे। फुलवा अपन दाई के डबडबाए आंखिला देख के जान डरिस। फुलवा कहते दाई

0: पुजारी बाबा घर जाके कुटकी मांग के लाबे। फुलवा की दाई दादा दोनों जन पुजारी घर जाके कुटकी मांग के लाते। फुलवा कुटकी ला धर के खेत में जाके होम दे के जंगल के जम्मो देवता धामी मन के करत कहे थे, हे मोर पुरखा के देवता हो, कुटकी बोवत हो, सब जन मोर रक्षा करहु। कुछ दिन बीते के बाद फुलवा के खेत में रगबग ले जाम गे। फुलवा के भाई के खेत में धान में सावा बदौरी उपज गे। धान के एक बोझा नहीं होइस, फुलवा के गाड़ा भर भर कुटकी होए है। फुलवा जम्मो अनाज ला अपन घर के कोठी में भरवा देस। एक दिन रात के बेरा मा फुलवा के भाई मन ईर्ष्या के मारे फुलवा के घर में आगे लगा देन। फुलवा के घर और कोठी में रखे कुटकी भुंजा के राख हो गए। फुलवा अपन सियान दाई दादा के कैसनो करके जीव बचाते। फुलवा गजब चेतलक बेटी हरे, घर के राख हा जुड़ाते। तब जम्मो राख ला बोरा में भर के भैंसा गाड़ी में शहर बेचे बर। उही रद्दा में एक जन व्यापारी अपन सियान दाई ला धर के रेंगत अपन गांव जात रहे से। दुधारू गाय बछरू घलो धरे रहे। फुलवा की गाड़ी ला देख के व्यापारी, नोनी मोर सियान दाई ला तुर गाड़ी में बैठा लेते, रेंगत रेंगत थक गए है। फुलवा कहे थे, मोर गाड़ी में सोना चाहे है, कोनो मनखे के पांव पर जही तब सब राख हो जही। व्यापारी के थे, तुर गाड़ी भराए सोना चांदी, कहूँ राख हो जही तो बदला में सोना चांदी और ये गाय बछरू ला दे देहूँ, मोर दाई ले बढ़ के कोनो चीज नो है। व्यापारी के दाई ला फुलवा अपन गाड़ी में बैठा लेते। व्यापारी के गांव में पहुँच के ओखर दाई ला घर में उतार के फुलवा अपन गाड़ी में भराए बोरा ला देख के कहते, खरे सेती कह रहे हो नहीं बैठा रहो, देख जम्मो सोना चांदी हा राख हो गए। व्यापारी देखते सिरतुन गाड़ी के बोरा में राख भराए है, का कर अपन बात में हार गे रही से, जैसे कह रही से वैसने सोना चांदी और दुधारू गाय बछरूला दे दिस। फुलवा गाड़ी में सोना चांदी और गाय बछरूला धर के घर आ गए। फुलवा के भाई भौजी मन देख के अचरिच में पड़ गए। ओखर भाई आके पूछते, नी गाड़ी में राख भर के ले गए रहे और कैसे सोना चांदी गाय बछरू धर के लाए हस। फुलवा हा अपन बड़े भाई ला नोनी कही के पूछत सुने तब भाई के अंतस के कपट ला समझ गए। फुलवा कही थे, राख बेच के लाए हूँ, जाके बड़े भाई घर माँ बताते। लालच में आके दोनों भाई मन रात के अपनों घर भुंजाए है, देखकर राख ला सकेल। फुलवा के भाई भौजी मन बोरा में भर के गाड़ी में लाद के शहर शहर घूमे, राख ले लो हो राख ले लो, फिर सांझ के होत ले कोई राख नहीं लेन, का करे थके हरे थोतना उतारे गांव पहुँचिन। घर द्वार तो आगे में भुंजा गेरा है, भाई भौजी के सब गर्व टूट जाते। मुड़ी ला धरे दोनों भाई रोवत बैठे रहा है। उतके बेरा पाछू डहाल ले उखर दाई दादा मन अपन बेटा मन के पीठ में हाथ रखते। फुलवा घलो अपन दाई के लुगरा के छोर ला धर के खड़े रहते। उखर भाई मन मुड़ी उठा के देखते और घोक पार के रो डरते। भाई भौजी मन फुलवा ला बांह भर पुटार के कहते, हमला छिमा कर दे नोनी, ते हमर घर हमर गांव की देवी असनोनी, हमन तोला बेटी समझ के तोर इज्जत नहीं कर सकें, ते हमर बेटी नो अस बेटा अवस, हमर आंखी उघर गे। फुलवा ला बांह भर पुटारा देख के डोकरा डोकरी मन के आंखी ले आंसू बोहावत है। अपन लेका मन ला एक होवत देख फुलवा के दाई कहते, जैसे मोर लेका मन एक हो गए वैसने जम्मो के घर में खुशहाली रहे, सब जुर मिल के रहे और बेटी बेटा में कोनो भेद मत रखे। नार भात चुर गे मोर कहानी पुर गे।
1: फुलवा ये कहानी अभी आप मन सुनत रहे हो डॉक्टर दीपशिखा पटेल ले। और कार्यक्रम के आखिर में अब आप मन ला सुनवात हन एक छत्तीसगढ़ी कविता पाठ, सुनात हवे डॉक्टर मिता अग्रवाल।
2: मोर कविता के जो शीर्षक है वो है नदिया कस जिंदगी धारा। रावी सतलज सिंधु ब्रह्मपुत्र सा

सुमता के बड़ मोल सिखाथे, सुमता के बड़ मोल सिखाथे, छल छल जल के धाराती, अमृत बाट

अभी गर्मी बहुत तपत है, तो हम मनखे मन के तो हाल बेहाल है। नदिया तरिया तको जौन प्रकृति के उपादान है, ओकर एक चित्र खींचे के प्रयास करत हूँ। पानी की किल्लत बहुत होवत है, तो पानी जीवन जगत हवे जी, पानी जीवन जगत हवे जी, एकर करो मोल, अबूंद बूंद पानी ला जतनो, जीव द्वार खोल, जलहा बाचे जिंदगी बाचे, जलहा बाचे जिंदगी बाचे, बाचे सरी साज, और चेत लगा के संकट टालो, बूंद बनाए काज, पंच तत्व मा एक हरे जल, पंच तत्व मा एक हरे जल, बड़का दाम मान, सागर नदिया झरना तरिया, सागर नदिया झरना तरिया, कतको रूप जान, सब गुलना अपना लेते जी, सब गुलना अपना लेती जी, रंग अपन मिटाए, अब बर्फ भाप बन उड़ जावे जी, धुंगिया रूप भाए, धुंगिया रूप भाए, पानी बिन सब सून होए जी, पानी बिन सब सून होए जी, सबले बड़े शाप, और नीर पवन हाँ बदे मितानी, संगवारी माप, संगवारी माप, बिन पानी के पेड़ बचे ना, बिन पानी के पेड़ बचे ना, बचे सासा जान, और जिंदगी दाता प्राण विधाता, जीव जिंदगी मान, जीव जिंदगी मान, पानी जिंदगी जगत हवे जी, एकर करो मोल, अ बूंद बूंद पानी ला जतनो, जीव द्वार खोल, जीव द्वार खोल। मोर अगला रचना जौन है वो नारी सिंगार ऊपर है, हमारे छत्तीसगढ़ के। सांवर गोरी रंग पाए है छत्तीसगढ़।

0: अभी आप मन डॉक्टर मीता अग्रवाल ले कविता पाठ सुनत रहो और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक ले यह विदा देवा। जय जोहार महेंद्र साहू कोती ले।
1: अभी आपने सुना छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइया। संपादन और प्रस्तुतकर्ता महेंद्र साहू थे। मीडियम व्यूअर फ्रेंड,
2: ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है चित्रलोक। लीजिए मुंबई एक्सप्रेस फिल्म का गाना सुनिए सोनू निगम, श्रेया घोषाल और शान की आवाजों में, देव कोहली के बोल और संगीत इलैयाराजा का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों, आज संगीतकार इलैयाराजा का जन्मदिन है, उन्हें भी हम शुभकामनाएं देते हैं। संगीतकार, संगीत रचयिता, संगीत संयोजनकर्ता, कंडक्टर, ऑर्केस्ट्रेटर, बहुवाद्य यंत्र वादक, गीतकार और पार्श्व गायक हैं वो। और मुख्य रूप से उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों के लिए कार्य किया है और उन्हें विपुल संगीतकारों में से एक माना जाता है। 39 वर्षों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने 8600 से अधिक गीतों की रचना की। 9 भाषाओं में लगभग 1523 फीचर फिल्मों के लिए उन्होंने संगीत दिया है और लोग उन्हें प्यार से मास्टरो कहते हैं। तो एक बार फिर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। और अब शमिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत इलैयाराजा का।

इलैया राजा के संगीत निर्देशन में शमिता फिल्म का ये गाना आपने सुना। और चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक ब्रेक का।

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और रंजीत बारोट की आवाजों में होलीडे फिल्म का ये गाना, नीलेश मिश्रा और महबूब का लिखा हुआ ये गाना है, और इसमें जो संगीत है वो रंजीत बारोट का है।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आज के चित्रलोक कार्यक्रम का आखिरी गाना वेलकम टू सज्जनपुर, इस फिल्म का गाना मोहित चौहान और मधुश्री की आवाजों में स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोइत्रा का संगीत।

इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम,

0: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है, कब्बन मिर्जा साहब। बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

मणिरत्नम का शुमार सिनेमा की उन प्रतिभाओं में होता है जो फिल्म के माध्यम से बहुत असरदार तरीके से अपनी बात कहना जानते हैं। यूं तो मणिरत्नम का ताल्लुक दक्षिण भारतीय सिनेमा से है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि भारत और भारत के बाहर भी है।

1956 में मद्रास यानी चेन्नई में जन्मे मणिरत्नम ने अपनी पढ़ाई मद्रास यूनिवर्सिटी में की और उसके बाद मुंबई के बजाज इंस्टीट्यूट से ली मैनेजमेंट की डिग्री। फिल्मों की दुनिया में आने से पहले मणिरत्नम एक प्रबंध सलाहकार थे। मणिरत्नम के पिता गोपाल रत्नम और भाई वेंकटेश्वरन भी फिल्म निर्माण से जुड़े हुए थे। जाहिर है ऐसे में फिल्म माध्यम से उनका लगाव होना स्वाभाविक था।

पुट्नम सिनेमा की दुनिया में सबका ध्यान खींचने में कामयाब रहे 1986 में फिल्म मौनारागम बनाकर। इसके सितारे थे मोहन, रेवती और कार्तिक। मणिरत्नम की अगली फिल्म थी गॉडफादर से प्रभावित नायकन, जो 1987 में आई। इस एक फिल्म ने आभास दे दिया कि मणिरत्नम आने वाले दिनों में फिल्म निर्माण और निर्देशन के नायक बनने वाले हैं। इस फिल्म ने जहां प्रतिभा के धनी कमल हासन को दिलाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार, वहीं मणिरत्नम को इस फिल्म ने पहुंचा दिया सिनेमा के अग्रणी निर्देशकों की पंक्ति में।

मणिरत्नम की पहली फिल्म कन्नड़ में थी, पल्लवी अनुपल्लवी। इस बीच उनकी तेलुगु और मलयालम में भी फिल्में आईं, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाईं। मणिरत्न

1988 में आई अग्नि नक्षत्रम, जिसने तमिल सिनेमा को दिया सिनेमा का एक नया विजुअल स्टाइल। 1989 में मणिरत्नम लेकर आए गीतांजलि, और फिर 1990 में आई उनकी एक दिल को छू लेने वाली फिल्म अंजलि। लेकिन पूरे भारत में मणिरत्नम को ख्याति दिलाई कश्मीर के आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर बनी एक लव स्टोरी रोजाने।

1993 में निर्मित थेरुडा थेरुडा नाकाम रही, लेकिन ठीक दो बरस बाद मुंबई के दंगों की पृष्ठभूमि पर मणिरत्नम ने बनाई फिल्म बॉम्बे।

राजनीति में अपने लगाव के चलते मणिरत्नम ने 1997 में बनाई एरुवर और फिर 1998 में उत्तर पूर्व की समस्या को लेकर बनाई हिंदी में दिल से।

हालांकि मणिरत्नम ने अपनी सभी फिल्में दिल से ही बनाई हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो वही हिट होती है जो पब्लिक के दिल को भा जाए।

मणिरत्नम की गिनती भारतीय सिनेमा के बेहद सम्मानित फिल्मकारों में होती है। उनके कथोपकथन में बारीकी और गहराई दोनों होती है। मणिरत्नम की फिल्मों का गीत, संगीत और नृत्य पक्ष भी प्रभावशाली फिल्मांकन के लिए हमेशा चर्चा में रहा है। 2004 में बनी युवा कभी

सिनेमा में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए मणिरत्नम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार मणिरत्न पर। विविध भारती की ओर से ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस जानकारी के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून को होगी मतगणना। इसी दिन पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बना धमतरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: मीडिया वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी।
1: यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छत्तीसगढ़ संवाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: भारत में सूचना क्रांति अपने सर्वोच्च शिखर पर है। जन संचार के माध्यम हो या सोशल नेटवर्क की दुनिया, जनमानस को अत्यंत प्रभावित किया है आधुनिक सूचना तंत्र ने। विज्ञान के नित नए आविष्कारों ने न सिर्फ समाज को विकसित किया है बल्कि सामाजिक विघटन को दूर करने में भी मदद की है। पहले कितने ही ऐसे क्षेत्र थे जहां संचार व्यवस्था की बहाली दुष्कर मानी जाती थी, खास तौर पर प्राकृतिक आपदाओं और आतंकी घटनाओं के वक्त त्वरित सहायता और बचाव कार्य की गति बहुत धीमी होती थी। लेकिन अब ये सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक डायल 112 के आ जाने से, यानी एक के नंबर सबो, और वो है नेक्स्ट जेन 112। इस आपात सेवा का विस्तार कर सुरक्षा व्यवस्था को अब और भी दमदार बना दिया गया है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने डायल 112 के प्रतिक्रिया समय और समस्या समाधान को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही है।
1: तो पहले खाली 16 जिला में था ये सेवा डायल 112, लेकिन अभी पूरे 33 जिला में ये सेवा हम लोग उपलब्ध करा दी है। पूरे 33 के 33 जिला में जितना ज्यादा सुविधा उपलब्ध करा सकती है वो हम सब लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं सरकार के।

0: सरकार की मंशा अब सभी 33 जिलों में बुद्धिमत्ता आधारित डायल 112 आपात सेवा लागू करने की है। इसके लिए 400 नए आपात वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन और 60 राजमार्ग गश्ती वाहन तैनात किए गए हैं। ये सभी वाहन अति आधुनिक संचार उपकरणों से लैस है। डायल 112 के शुभारंभ पर छत्तीसगढ़ के माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा,
1: माननीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति, मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी उपस्थित रहे और गृह मंत्री जी पुरिंदर जी हमारे क्षेत्र के विधायक और अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण योजना जिसमें 112 और 112 नंबर पूरे छत्तीसगढ़ में 400 से अधिक स्थानों पे एक दिन में आज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, मोबाइल फोरेंसिक वैन, जो अपराध होते हैं और अपराध के साक्ष्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं, और ये वैन सभी जिलों में 32 दिया जा रहा है। ये वहां पे फोरेंसिक जो एविडेंस होते हैं, जैसे हाथ के निशान है, कपड़े के निशान है, उनके ब्लड के सैंपल है, जो एक घंटे के बाद भीड़ आने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये एक एविडेंस इसी का कोर्ट में चलता है।

0: छत्तीसगढ़ में पहले से कार्यरत डायल 112 दरअसल भारत का एकल आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी तरह के संकट की स्थिति में चाहे पुलिस की जरूरत हो, एम्बुलेंस की या फायर ब्रिगेड की, ये सेवा सातों दिन 24 घंटे मुफ्त उपलब्ध रहती है। अब उच्चतम तकनीक के विकास के कारण इसके कार्य क्षेत्र का दायरा भी बढ़ गया है और राहत की समय सीमा भी घट गई है। गंभीर अपराध, चोरी, महिलाओं और बच्चों संबंधित अपराध की स्थिति में डायल 112 एक विश्वसनीय कॉल नंबर है।
1: मैं फागड़े खूब पुलिस अधीक्षक बालोद से बोल रहा हूँ। डायल 112 यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने जगदलपुर मार्केट का उद्घाटन किया था। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में इसका उद्घाटन 112 का जो संचालन है वो नहीं हो रहा था, किंतु 19 तारीख को उन्होंने विधिवत उद्घाटन करके उसका शुभारंभ किया, जिसके तहत बालोद जिले में भी 112 का वो शुभारंभ हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा कि भारत में डायल 112 एक एकीकृत आपातकालीन सेवा नंबर है, जिसे किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तुरंत सहायता करने के लिए शुरू किया गया है। यह सेवा पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी सेवाओं को एक ही नंबर पर उपलब्ध कराती है। डायल 112 की मुख्य विशेषताएं लगभग किसी भी आप मोबाइल या लैंडलाइन या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते हैं। SMS के द्वारा भी आप उसको सूचित कर सकते हैं। यह सेवा 24/7 उपलब्ध रहती है, जो मुख्यतः महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों की सुरक्षा हेतु उपयोगी होती है। आपात स्थिति में लोगों की और त्वरित सहायता की सुविधा भी डायल 112 के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कई राज्यों में मोबाइल ऐप और अन्य फीचर्स के माध्यम में भी उपलब्ध है, जो आने वाले दिनों में जिले में भी लागू किया जाएगा। और किन परिस्थितियों में इसका उपयोग कर सकते हैं ये मैं बताना चाहूंगा। अपराध या कोई चोरी की सूचना हो, कोई सड़क दुर्घटना हो, आग लगना हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, महिला सुरक्षा संबंधी कोई सहायता चाहिए या किसी भी प्रकार की तत्काल सहायता चाहिए, तो डायल 112 तत्काल वो सेवा में हाजिर रहेगा। ये जो जो इनका जो करने का टाइमिंग 10 मिनट का रहता है, किंतु देहात में आधा घंटे का टाइम उसको फाइनल किया गया है कि जब भी आप 112 को फोन करेंगे तत्काल आधे घंटे के अंदर सेवा आपको हमेशा उपलब्ध रहेगी। और डायल 112 का उद्देश्य अलग अलग आपातकालीन नंबरों को एक साथ, जैसे 100 नंबर है, 101 नंबर है, 108 आदि को एकीकृत कर नागरिकों को तेज और सरल सहायता उपलब्ध कराना उद्देश्य है डायल 112 का।

0: छत्तीसगढ़ में डायल 112 केंद्र आपातकालीन प्रतिक्रिया नंबर है। भारत सरकार के आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के ढांचे के तहत डायल 112 के अंतर्गत कई सेवाओं को एकीकृत किया गया है, जिनमें पुलिस आपातकालीन सेवा, एम्बुलेंस, अग्निशमन, महिला हेल्पलाइन, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन, रेल हेल्पलाइन और बाल हेल्पलाइन शामिल है। इस पहल से अपराध कम करने में मदद मिल रही है। डायल 112 अपनी मुख्य तकनीकी संरचना और प्राथमिक प्रतिक्रिया वाहनों के माध्यम से संवेदनशील समूहों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान कर रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता ने बताया,
1: जहां पर ऐसी जनसंख्या है जहां पर हमारा डायल 112 की इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल जा सकती है और वहां पर कॉलर को सुविधा ज्यादा है अपनी खुद की भाषा में बात करने के लिए, तो ऐसे में वो अपनी खुद की भाषा में भी शिकायत और सहायता मांग सकता है और हमारा प्रयास रहेगा कि उस भाषा को समझने वाला व्यक्ति उससे वार्तालाप करे और उसकी पूरी बात समझ के तदनुसार हम वहां पर उसको सहायता पहुंचाएं। डायल 112 की जो सुविधा है पूरे देश में और वैसे ही छत्तीसगढ़ में है, वो सुविधा जो है वो उसमें लोकेशन बेस्ड सर्विस आती है, तो लोकेशन बेस्ड सर्विस में जो कॉलर है वो उस कॉलर की लोकेशन अपने आप जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो 112 को उपलब्ध करा देते हैं, तो इनके लोकेशन के आने से हम बड़े आसानी से तय कर सकते हैं कि जो हमारे इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है उसको कहाँ पहुंचना है, और उस लोकेशन को फर्दर रिफाइन करने के लिए उनसे हमारे जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल में पुलिस पर्सनल है वो फर्दर उनसे बात कर लेते हैं। 112 केवल पुलिस की अकेली सेवा नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड सेवा है, तो किसी को भी अगर पुलिस, मेडिकल या फायर के कोई आपदा में एक रिस्पॉन्स चाहिए तो वो 112 डायल करके हमारे कमांड सेंटर पहुंच सकता है। कमांड सेंटर पे उसकी पूरी बात नोट की जाएगी और पुलिस का अगर सेवा चाहिए तो हम उसको खुद डिस्पैच कर देंगे, अगर उसको कोई मेडिकल सुविधा चाहिए तो हम उसके इवेंट को तत्काल जो 108 का कमांड सेंटर है उनको अग्रेषित करते हैं जिससे वो लोग एम्बुलेंस भेजते हैं, और अगर कोई फायर का इंसिडेंट है तो हम उसको फायर सर्विसेज को तुरंत नोटिफाई कराते हैं तो वो लोग आते हैं। इसके अलावा और भी वेमेन हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन की जरूरत अगर परिलक्षित होती है तो उन हेल्पलाइंस में बैठे हुए जो कमांड सेंटर के पर्सनल हैं उनको भी ये सूचना दी जाती है तुरंत, चाहे मदद की हो, वेमेन हेल्पलाइन हो, हेल्पलाइन हो, आपदा प्रबंधन हो, तो ये सब का इंटीग्रेशन ये सुनिश्चित करता है कि अगर उसको मल्टीपल कॉल्स नहीं करने पड़ेंगे हर चीज के लिए। आने वाले दिनों में डायल 112 की सेवा यूनिवर्सल उद्देश्य रहेगा और जैसे जैसे हमारे वनाच्छादित क्षेत्र जो हैं उनमें विकास पहुंचेगा, उनमें से जो की प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, हम चाहेंगे कि डायल 112 वहां पर और ज्यादा विस्तार में जाए। साथ ही साथ इसमें जो हमारा रिस्पांस टाइम है वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है, तो उस रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए हम जितने अधिकाधिक पर्सनल को इसमें लगाना चाहेंगे और अधिकाधिक इसमें इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स इसमें डिप्लॉय चाहेंगे, तो ये सब संसाधन से जुड़ी बातें हैं और भविष्य में हम लोग इन सब में बढ़त करना चाहेंगे क्योंकि हमारा जो आईटी सॉल्यूशन है वो लगभग परिपूर्ण, तो अब जो उसमें इम्प्रूवमेंट मिलना है वो इन संसाधनों के अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट से मिलेगा। डायल 112 की जो सेवा है उसका उपयोग करें, कहीं पर भी आपको यदि स्वयं के लिए इसकी आवश्यकता पड़ रही है या आप देख रहे हैं कि कोई दूसरा नागरिक संकटापन्न है तो आप 112 को जरूर कॉल करें और उसको संपूर्ण जानकारी दें। यदि आप लोकेशन को जितना ज्यादा बारीकी से प्रिसाइज और एक्यूरेट बताएंगे हमारी इमरजेंसी रिस्पांस को वहां जल्द से जल्द पहुंचने में उतनी सुविधा मिलेगी, तो ये सेवा पूरी तरह से जनता के लिए है, तो जनता को इसको एक तरह से अपना एसेट मान के इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा।

0: एक नंबर सबोबर। तत्काल सहायता के लिए ये नारा अब छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुका है। गांव हो या शहर, एक के नंबर यानी डायल 112 अब उपलब्ध है सबोबर यानी सबके लिए, सभी जगह और वो भी 24 घंटे। डायल 112 की कार्यप्रणाली जन अपेक्षाओं के अनुरूप है, तभी तो इसके प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ा है। लोग खुश हैं अपनी समस्या का समाधान तत्काल पाकर। ऐसे कई मामले रोजमर्रा पेश आते हैं जिनमें जरूरत होती है तुरंत सहायता की, और वहां अगर आसानी से मदद आए तो फिर ऐसे में जनता जनार्दन के चेहरे आखिर क्यों न खिले। आप हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री अनिल सोनी।
1: पूरे छत्तीसगढ़ में फेज 2 नेक्स्ट जेन के माध्यम से पूरे प्रदेश में डायल 112 जो कि एक एकीकृत इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है उसका संचालन किया जा रहा है। इसी के तहत रायगढ़ जिले में 16 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल प्रदाय किए गए हैं जो कि 24/7 सेवा सुनिश्चित कर संचालित हो रही है, और 24/7 सुनिश्चित करने के लिए एक कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं जिसके अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। इसमें पुलिस, फायर, मेडिकल इमरजेंसी, इसके साथ साथ महिला चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन, आपदा सहायता और हाईवे इमरजेंसी जैसी सेवाओं को एक ही नंबर 112 से जोड़ा गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो इमरजेंसी में हो, पुलिस से संबंधित या फायर से संबंधित या मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे महिलाओं और बच्चों या अन्य प्रकार से आपदा हो, तो उसमें केवल एक नंबर ही डायल करके या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर SMS के माध्यम से, वेब रिक्वेस्ट से, चैट बॉट से, किसी भी माध्यम से सूचना देकर मदद प्राप्त कर सकता है।

0: आपातकालीन परिस्थितियों में बेहद जरूरी होती है तुरंत राहत। इसके लिए डायल 112 का प्रतिक्रिया समय जितना कम होगा उतनी ही जल्दी होगा समस्या समाधान। बस्तर गुजा जैसे दूरस्थ अंचलों डायल 112 की पहुंच को विस्तार देने के लिए यहां चार पहिया वाहनों के अलावा दो पहिया वाहनों की सेवाएं भी ली जा रही हैं। इस तरह ये अभियान अब राज्य के कोने कोने में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा श्री दीपक कुमार झा।
1: जो हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस है इसमें डायल 112 की शुरुआत वैसे तो काफी समय पहले से है, 2018 से है, लेकिन उस समय कुछ जिलों में ही इसकी शुरुआत की गई थी। ये सेवा अभी देश के सभी 33 जिलों में इसको लागू कर दिया गया है। जैसे उदाहरण से मैं हमारे रेंज में केवल सरगुजा जिले में गाड़ियां थी, इसमें सरगुजा जिले में पुरानी गाड़ियां थी, इतनी पुरानी हो गई तो वो तो कंडेम हो गई, उसको बदल के नई गाड़ियां तो आई गई है और अन्य जिलों में भी आ गई है। जैसे 12 गाड़ियां सरगुजा जिले में है, कोरिया जिले की बात करें तो वहां भी 5 गाड़ियां हैं, हर एक जिले में अभी वाहन है। ये सेवा एक तरह से हम कह सकते हैं जो ये आम नागरिक हैं उनको तत्काल त्वरित रूप से सहायता मिल सके।

उसी के लिए एक अच्छी व्यवस्था है ये। और जैसे कोई आपातकालीन हो गई कहीं पे, मान लीजिए कोई रोड पे कोई देखता है किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को चिकित्सा की आवश्यकता है, कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसमें पुलिस को लगता है, ऐसी स्थिति में लोगों को पता नहीं रहता है कि थाने में किसको फोन करें, कहाँ करें। ये एक नंबर है मात्र पूरे प्रदेश में, मात्र एक नंबर 112। इसमें आप जैसे ही कोई आदमी फोन करेगा और बता के जानकारी देगा, लोकेशन देगा, तो पुलिस वहां पे सभी गाड़ियां जीके से लैस हैं, जो नियरेस्ट वाहन अवेलेबल होगी वो गाड़ी को सूचना चली जाएगी कंट्रोल रूम से, और वो वाहन वहां पर तत्काल पहुंच जाएगी। कई बार अगर पुलिस तत्काल नहीं पहुंचे तो बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोगों का जिनकी जान का नुकसान भी हो जाता है अगर समय पर राहत नहीं पहुंचे। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेवा है। और इसमें जो है, इसमें हमारे पास जो है जैसे 112 में इस बार 4 व्हीलर के अलावा कुछ 2 व्हीलर वाहनों भी दी गई है। 18 से जैसे चल रहा है तब से लगातार इसके माध्यम से जो रेस्पॉन्स टाइम है उसको भी घटाने का काम किया गया। पहले जैसे कि ये शहरी क्षेत्र में 10 मिनट था और ग्रामीण एरिया में 30 मिनट का समय रहता था, तो उसमें भी लगातार हम काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को, माननीय सीएम महोदय का जो अभी बैठक हुई थी है, उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हमें इसको रेस्पॉन्स टाइम को कम से कम करना चाहिए, पुलिस 112 के वाहन त्वरित रूप से जल्दी पहुंच सके और लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके। और इससे जो है पुलिस के प्रति लोगों को जो विश्वास है वो निश्चित रूप से बढ़ा है। क्या होता है, देखिए जैसे थाने में कोई गाड़ी रहती है और हमको थाने गाड़ी उपलब्ध नहीं है तो फिर अब पुलिस पहुंच नहीं पाती है। पहले तो 2 2 घंटे 4 4 घंटे हो जाते थे स्पॉट पे जाने में, अभी क्या है 112 के वाहन जो नियरेस्ट है वो मिलेगी। अगर कोई एक वाहन कहीं और गई है तो वाहन नहीं वो आ जाएगी। इस प्रकार से कोई ना कोई वाहन जल्दी से जल्दी वहां जरूर मौके पहुंच जाएगी। तो ये ऐसी व्यवस्था है और इससे निश्चित रूप से लोगों की मदद, आम लोगों की मदद होगी। लोग उसमें काम करते हैं उनके लिए भी अनुशासन का पालन करना आवश्यक है, और किस प्रकार से सर्विस के लिए है उसके लिए किस प्रकार से आवश्यक है वो उस बात को भी खत्म। इसमें मुख्य रूप से महिला की सुरक्षा के से जुड़ा हुआ मामला भी है, वरिष्ठ लोगों की जो वरिष्ठ नागरिक है अकेले रहते हैं उनको भी आपात स्थिति में सहायता मिल सकती है। महिलाओं के संबंध से मैंने बताया, उनके उनको भी कोई इस तरह घटनाएं आती है, कोई सरकार संबंधी कोई शिकायत करनी है, कोई कुछ और है उसके बारे में कर सकती है। आपातकालीन जैसे चिकित्सा की वजह ने पहले बताया, दुर्घटना हो जाती है उसके वजह से जो बच्चे हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, उनके संबंध में भी, तो हर प्रकार से आपदा प्रबंधन में भी इसकी जो है महत्वपूर्ण वो है। और ये नंबर जो है 112 अभी 108 102 इस प्रकार के जो नंबर होते थे उन सबसे भी जुड़ा हुआ है। आपको अलग अलग नंबरों पर फोन करने की जरूरत नहीं है, 112 फोन करें, इसलिए इसका टैगलाइन ही यही है, एक के नंबर से दोगा सभी काम के लिए यही एक नंबर है। निश्चित रूप से लोगों को, आम जनता को इससे काफी मदद मिलेगी 112 इस सुविधा से।

0: डायल छत्तीसगढ़ सरकार का आम नागरिकों के लिए एक त्वरित पारदर्शी और प्रभावी कदम है। इस आधुनिक तकनीक से पुलिस व्यवस्था और भी मजबूत हो रही है। एक नंबर अनेक माध्यम और त्वरित सहायता की सोच पर हरित डायल 112 सेवा प्रदेशवासियों को किसी भी संकट की स्थिति में तुरंत रेस्क्यू और मदद उपलब्ध कराने का सबसे सशक्त माध्यम बन रही है। इन नए हाईटेक वाहनों के सड़क पर उतर जाने से न केवल आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद आपातकालीन चिकित्सा और सुरक्षा सहायता मिल सकेगी।
1: दिलीप ध्रुव बोल रहा हूँ, धमतरी जिले से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुजरा में कार्यरत हूँ। जो 112 की सेवा है बिल्कुल निःशुल्क है पूरे छत्तीसगढ़ में। इसके 112 डायल करने पे आप आपदा प्रबंधन हो गया, अपराध नियंत्रण हो गया, आपातकालीन चिकित्सा, महिला और फायर ब्रिगेड प्रकार की

हाँ का लाभ ले सकते हैं। 112 कॉल करने के बाद आप लाइव लोकेशन आपका ट्रेस किया जाता है, उसके करने के बाद वहाँ के इमरजेंसी को और नजदीकी व्हीकल्स को आपके पास भेजा जाता है। 112 सीधा आप कहीं भी डायल कर सकते हैं, दुर्घटना चिकित्सा अग्निशामक सब प्रकार की सुविधा के लिए आप 112 कॉल कर सकते हैं। तो डायल करने से आप चिकित्सा सुविधा मिल सकता है, पुलिस सुविधा मिल सकता है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए

हाईटेक वाहनों के उतर जाने से न केवल आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी बल्कि आम नागरिकों को भी तेज सुरक्षित और भरोसेमंद आपातकालीन चिकित्सा और सुरक्षा सहायता मिल सकेगी। एके नंबर सबोबर यानी डायल 112 को लेकर आम नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास की जो लहर जागी है वो उनके उत्साह से साफ जाहिर होती है। जनता अब निर्भीक है, उत्साहित है और सम्मान के साथ बढ़ रही है उजाले की ओर।

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे छत्तीसगढ़ संवाद। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बर्निंग ट्रेन से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और राहुल देव परमन का है।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10:31 हुए हैं। आइए शुरू करते हैं सफर नए तराने कार्यक्रम का।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना दबंग फिल्म से राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल के युगल स्वर में। फैज़ अनवर के बोल थे, साजिद वाजिद का संगीत था। श्रोताओं कृपया ये आवश्यक सूचना सुनिए, कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद की रिकॉर्डिंग अभी की जा रही है। कार्यक्रम में अपने फ़ोन कॉल्स शामिल करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 07752-310026। एक बार फिर से सुनिए 07752-310026। तो फ़ोन कीजिए और जुड़ जाइए इस कार्यक्रम से। ये सूचना यहीं समाप्त हुई। आइए सुनते हैं खट्टा मीठा फिल्म का गीत प्रीतम की धुन पर। इरशाद कामिल की रचना है और आवाज़ें के सुनिधि चौहान की है।

0: श्रोताओं, लीजिए पेश है आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार मित्रों, प्रतिदिन की तरह आप सुन रहे हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नगर पालिक निगम अर्थात शहरी क्षेत्र के साथ ही गांव-गांव में भी सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन हो रहा है। या यूं कहें कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, जिले में उपलब्ध संसाधनों, उपलब्ध बल के साथ साथ पूरे मनोवेग से यातायात का आमला आपको सुगम और सुरक्षित आवागमन व्यवस्था उपलब्ध कराने कृत संकल्प है। शासन की अवधारणा के अनुसार 2400 घंटे सातों दिन यातायात का बल इस हेतु समर्पित है। फिर भी यदाकदा सड़कों में अप्रत्याशित स्थिति भी देखने को मिलती है। निश्चित रूप से लोग इससे असहज होते हैं, पीड़ित होते हैं। यदि हम चाहें ये सब ठीक हो, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आवागमन सुगम हो, सभी की यात्रा सुरक्षित हो, तो इसके लिए आवश्यक है हम सभी व्यवस्था के अनुसार चलें, यातायात नियमों के अनुसार चलें। वो कुछ इस प्रकार। किसी भी चौक में यदि आप रेड सिग्नल में खड़े हैं तो अपने बाएं तरफ, जिसे लेफ्ट फ्री जोन कहा जाता है, उसे छोड़कर खड़े हों, ताकि बाएं जाने वाले बिना रुके जा सकें। शहरी क्षेत्र में सड़कों में व्यवस्था के लिए पीली पट्टी बनाई गई है। अपने वाहन हमेशा इस पट्टी के बाहर ही खड़ा करें। नो पार्किंग जोन में कभी भी वाहन खड़ा ना करें, इससे जाम की स्थिति नहीं होगी। सड़क के किनारे स्थित दुकानदार अनावश्यक रूप से सड़कों तक सामान फैलाकर न रखें, ताकि सड़क पूरी पूरी स्वतंत्र रहे। ठीक इसी प्रकार सुरक्षित यात्रा के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें और इस वाहन में तीन सवारी कभी न चलें। मोबाइल को वाहन चलाते समय भूल जाइए, अर्थात कोई भी वाहन चलाते मोबाइल से बातें बिल्कुल न करें। अपने वाहन चलाते समय रॉन्ग साइड ओवरटेक कभी न करें, यदि आवश्यक हो तो दाहिने तरफ से आगे बढ़ें। मालवाहक वाहनों में बॉडी से बाहर निकले हालत में माल कभी भी लोड न करें, यह घातक हो सकता है। शराब सर्वनाश की जड़ है, यह सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण है। अतः नशा से दूर रहें, नशाकार वाहन चलाने की गलती कभी न करें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1 लाख दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे।

0: तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: नए तरह ने कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है एआर रहमान की तर्ज पर गुलजार की रचना, आवाजें हरिहरन और अलका याग्निक की है, फिल्म का नाम है गुरु।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम का आखिरी गीत हम सुनवा रहे हैं आपको कलयुग फिल्म से, राहत फतेह अली खां की आवाज़ है, गीतकार असीम रजा हैं और संगीतकार अनु मलिक हैं।

कार्यक्रम नए तराने में अभी आप सुन रहे थे कलयुग फिल्म का गीत राहत फतेह अली खां की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहां पेड़ और पानी साथ हों वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहां जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
0: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
0: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
0: आपने आगे लिखा है।

0: हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
1: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
0: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
0: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
1: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी।
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी,
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है।
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
1: जी,
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू,

0: तेल, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
0: जी
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है।
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
1: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।

0: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
2: देखो मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
3: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
2: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
3: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
2: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए। लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
0: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
4: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
5: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
0: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
0: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
0: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के

0: तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
1: लुई पाश्चर,
2: सर,
1: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
2: कहिए सर।
1: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
2: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
1: ठीक है।
3: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
3: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
3: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
3: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
3: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
3: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
4: अरे आजा आजा आजा।
5: हाँ,
4: इंजेक्शन लगा दूँ?
5: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी।

0: और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
2: सर सर, ये टेलीग्राम।
0: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ, अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
2: क्या हुआ सर?
0: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
2: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
0: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
2: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
0: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
3: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
4: सर, सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
0: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
4: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
0: देखिए आप,
4: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
0: इस तरह मैं

0: ज्यादा नहीं नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।
6: कुछ यादें अतीत की।
7: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
6: कुछ बातें वर्तमान की।
8: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
6: कुछ सपने भविष्य के।
9: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
6: कुछ किस्से अनकहे।
10: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
6: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े
5: आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है।

लकीर फॉरबिडन लाइंस, इस एल्बम से ये गीत आप वीवा की आवाज में सुन रहे थे। महबूब ने इसे लिखा था और एआर रहमान का संगीत। रंग तरंग में ये अगला गीत लकी अली की आवाज में।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: मीडियम वेव एफ एम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। प्रादेशिक समाचार सुनिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल। आज के मुख्य समाचार। नगरी निकाय चुनाव के तहत 4 जून को होगी मतगणना, इसी दिन पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है, और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बना धमतरी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए हुए मतदान में 84.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए 78.61% मतदान दर्ज किया गया। आयोग ने बताया कि मतदान के दौरान किसी भी क्षेत्र से अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। निकायों के मतों की गणना 4 जून को की जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना स्थल पर ही गणना कराई गई, जिसके परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सुविधा, यूपीआई और कोड जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य में यात्री बसों के किराए में वृद्धि को लेकर परिवहन विभाग ने बस संचालक बैठक कर उनकी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। बस संचालकों ने बताया कि वर्ष 2021 से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने डीजल के दामों के अनुसार किराया तय करने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की। परिवहन विभाग ने कहा है कि अन्य राज्यों की किराया दरों का जल्द निर्णय लिया जाएगा। धमतरी जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों यानी पैक्स के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले के 10 पैक्स समितियों में यह सुविधा शुरू की गई है। लोहरसी में आयोजित कार्यक्रम में इस पहल का शुभारंभ किया गया और प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों ने ड्रोन स्प्रेयर का प्रदर्शन किया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस को 1 अगस्त से प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया है। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बिलासपुर यलहंका बेंगलुरु के बीच 3

0: जून से 2 जुलाई तक 5-5 फेरों के लिए समर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। रायपुर के पास आरंग में स्थित मिवान स्टील प्लांट में बॉयलर फटने से भीषण आग लग गई। यह हादसा आज सुबह करीब 5 बजे हुआ। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इसके लिए जानकारी के लिए वीडियो भी जारी किया है। रायपुर जिले के दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा 5 जून को विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह रोजगार मेला शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। मेले में अस्थिबाधित, बौने, कम सुनने तथा देखने में कठिनाई वाले भाग ले सकेंगे। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका छत्तीसगढ़ से होते हुए ओडिशा तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से आज उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिलों में मेघ गर्जन और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर होने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून को होगी मतगणना। इसी दिन पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बना धमतरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुंचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं। अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातेले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातेले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार

0: ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

रेशमा की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हीरो फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। यादों की महफिल आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

0: याद आ रहा है तेरा प्यार, बप्पी लहरी की आवाज में ये गीत आप डिस्को डांसर फिल्म से सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा और बप्पी लहरी का संगीतबद्ध ये गीत था। साथ ही आपको पता चल ही गया होगा कि यादों की महफिल में आज वो गीत जो यादों से जुड़े हैं, जहां किसी को याद किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये भी याद दिला देते हैं,
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल। लीजिए सुनिए चरस फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है, आनंद बख्शी ने इसे लिखा।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज यादों से संबंधित यादों पर आधारित गीत आपको सुनवाए जा रहे हैं।

0: कुछ दिल ने कहा। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा, निखिल विनय का संगीत। और साथ ही आपको एक और खास बात याद दिला दें,
1: 2 जून

0: सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली।

0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। साथ ही आज की ये स्पेशल सखी सहेली को आप फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं, तो जरूर जुड़े हमारे साथ 3 बजे सखी सहेली में।

0: फिल्म लव स्टोरी से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में ये गीत। आरडी बर्मन की तर्ज थी और आनंद बख्शी ने इसे लिखा।
1: वो जब याद

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। इस गीत में पारस मनी फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है और उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। और आपके प्यार भरे संदेश साथ ही गानों की लिस्ट भी मुझ तक पहुंच चुकी है जैसे कि हमेशा पहुंचती है। और बहुत अच्छे अच्छे गीत आपने चुन के लिखे हैं लिस्ट में, वो मैं पढ़ चुकी हूं। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं वो भी अपने गीतों को चुनकर वहां लिख सकते हैं, उन शब्दों को लिख सकते हैं, अपने संदेश भेज सकते हैं। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें इस प्रोग्राम की, चलिए ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, गुलमोहर की डाल पर जब एक खाब उतरा, फूलों ने धीमे धीमे उसका नाम पुकारा, गुलाब की लाली में कोई राज छिपा था, चमेली की महक में दिल का मौसम बसा था, गेंदा भी बहारों संग आंगन में उखिला, जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिल गया। एक पुरानी तस्वीर में ठहरा है किसी अनकहे प्रेम का जो पहला सवेरा है, एक नर्म सा खत हवा के संग आया था जिसमें मौसम ने तेरा जिक्र सजाया था, पूजा सी पावन सी तेरी हंसी की रोशनी जिसमें भर जाती थी मन की हर वीरानी, पलकों की चिलमन में जब नजर गुजरती थी सपनों की झालर भी धीरे धीरे सवरती थी, यादों का ये सिलसिला आज भी रंग भरता है, गुलमोहर गुलाब और ख्वाबों में रंग।

ठहरता है। चलिए आपके संदेश भी हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जहां पर रंग रंग और फूलों की बातें हैं।

आन मिलो सजना। जी हाँ, ये गीत आप सुन रहे थे इसी फिल्म से। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में, साथ ही आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसकी डिटेल्स आप मुझे भेज चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये पहला गीत था आज के इस प्रोग्राम का, और कहना पड़ेगा कि काफ़ी सारी डिटेल्स आप हमारे जो श्रोता है हम तक लिख देते हैं, और काफ़ी डिटेल्स में बताया कौन कौन अभिनेता है, अभिनेत्री है इस गीत में, काफ़ी डिटेल्स हमें मिली है। लेकिन साथ ही क्या मैं ये प्रश्न पूछने वाली हूँ? नहीं, मैं कुछ और पूछने वाली हूँ आपसे। फिलहाल आपके प्यारे संदेश आपको सुनवाते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत फूलों की खुशबू, रंगों की छटा और प्रेम की कोमल भावनाओं का सुंदर संगम है। फूलों और यादों से सजी ये इबारत प्रेम की उस पवित्र अनुभूति को व्यक्त करती है जो समय बीत जाने पर भी मन में जीवित रहती है। एक पुरानी तस्वीर, एक नर्म खत और प्रिय की मुस्कान स्मृतियों के ऐसे दीप हैं जो आज भी हृदय को रोशन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए हम इस तरह के गीत लेकर आए हैं ताकि आप उस रोशनी में एक बार फिर से नहा लें। आज कही हुई पढ़ी हुई लाइन यहाँ साझा कर रही हूँ। सर, वसंत के आते ही तुमने कहा था हम साथ साथ पार करेंगे हर जंगल। मैं अब भी खड़ी हूँ उस गुलमोहर के नीचे जहाँ कोयल के कंठ में कांपता है पत्तों का पानी। तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में न जाने कब से गुलाब उदास है। रिमझिम रिमझिम बूंदों में जहर भी है और अमृत भी। आंखें हंसती और दिल रोया तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर लिखा है। ये तो एक नई इबारत बन गई है। हमारे एक साथी कहते हैं कि आज के शब्दों पर गाने सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। गुलमोहर, गुलाब और ख्वाबों के रंगों में खो जाने का मन करता है। इस कार्यक्रम का इंतजार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, हम आ चुके हैं, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप बने रहें हमारे संग इस प्रोग्राम में। साथ ही हमारे एक और साथी है जो लिखते हैं कि बेहद प्यारी नज्म से चुनिंदा शब्द उन्होंने निकाले हैं गुलमोहर दो दीवाने शहर में। उन्हें ऐसा लगता है कि इन शब्दों से आज के गीत जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से मैच होती है, मेल खाती है या नहीं। साथ ही साथ एक और श्रोता हमें लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, संवेदनशील और पुरानी यादों के रंगों से सजी हुई है इबारत, और समय भले ही बीत गया हो, वो पल अतीत का हिस्सा बन चुके हों, लेकिन यादों का ये सिलसिला आज भी थमा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यारे से खूबसूरत मैसेज के लिए। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि आज के इस गद्यांश को गुलाब, गुलमोहर, चमेली की महक से महकाया है। गुलों की मासूमियत और भरपूर अनगिनत रंगों से उषा की लालिमा की तरह खिलने वाला नाजुक नर्म प्यार का एहसास नए सवेरे की ताजगी भरे ख्वाबों में सजकर जीवन का मेघ धनुष रच रहे हैं। वाह, कितना सुंदर लिखा है आपने। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अरे वाह, शायर है हमारे श्रोता, बिल्कुल कहना पड़ेगा। एक और साथी लिखते हैं कि फूल एक इकाई है, गुलशन एक खिला हुआ बगीचा है और गुलिस्तान एक बहुत बड़ी फूलों की भूमि या विस्तृत उपवन है। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने बताया है अपने विचार

0: व्यक्त किए हैं। साथ ही हम फूलों की बात कर रहे हैं, तो एक और ये गीत सुन लीजिए, फिर आते हैं हम अपने प्रश्नों पर।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

जी हाँ, इस नशे को प्यार कहते हैं। प्रेम पुजारी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में, नीरज ने इसे लिखा था, एसडी बर्मन की तर्ज थी। और आपके बहुत से संदेश हम तक पहुंच गए हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज फूल बहारों मिलन की बातें होगी। देश के बहुत सी जगह मानसून का आगमन हो चुका है। चिलचिलाती धूप गर्मी से राहत मिली है। बाग बगीचे और मन का मोर भी नाचने के मूड में है। बहुत से फूल जगह जगह खिलने लगे हैं। बिरह मिलन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी हाँ बिल्कुल। और एक और साथी कहते हैं, शुभ दोपहर, आज बहुत दिनों के बाद ये हमसे जुड़ रहे हैं और पहली बार मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। यानी कि मैं अगर सुरीला सफर में हूँ तो ये फर्स्ट टाइम इनका जुड़ाव है इस प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक और साथी हमारे कहते हैं कि जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिला, ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में जब भी खुशियां आती है तो जीने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है और हर चीज नई लगने लगती है। एक पुरानी तस्वीर में वो पल ठहरा हुआ है जहां यादों के अनगिनत रंग बिखरे हैं। ये बात याद दिलाती है कि वक्त भले ही गुजर जाए लेकिन खूबसूरत यादें हमेशा हमारे दिल में और आंखों में ताजा रहती है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बहुत ही जोरदार गाने से शुरुआत हुई आज के इस प्रोग्राम की और उन्हें अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और साथी हमारे लिखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, ये लाइन हमें रुकने पर मजबूर करती है। एक पुरानी तस्वीर या एक पुराना खत समय को एक जगह रोक देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि भले ही दुनिया आगे बढ़ जाए, हमारे दिल का एक कोना हमेशा उस सबसे खूबसूरत पल में ठहर जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम ठहर जाते हैं और ठहराव भी जरूरी है। कभी थोड़ा रुकना, थमना, ठहरना बहुत जरूरी है और हमें ये अक्सर करना चाहिए अपने साथ हर दिन। एक और साथी लिखते हैं कि वक्त की धूल से धुंधली नहीं होती वो यादें जो दिल के कागज पर मोहब्बत से लिखी जाती है। कोई कितना भी दूर चला जाए, जमाने में गुलमोहर की छांव में कुछ बातें रह जाती है। बिल्कुल, गुलमोहर का जिक्र हुआ है तो इसका गीत हम कैसे भूल सकते हैं। गीत तो फूलों पर है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल। कितने सारे फूल हैं ना जो खुशियां बांटते हैं, आपके चेहरे पर रंग ले आते हैं। तो आप अपने आप को कौन से फूल के साथ रिलेट कर पाते हैं, जुड़ाव महसूस कर पाते हैं, मुझे लिख भेजिए। और कौन सा फूल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ये बहुत जरूरी सवाल है कि क्यों अच्छा लगता है, मुझे जरूर लिखें। साथ ही साथ फूलों को सजाने के अलावा और किस तरह से आप यूज करते हैं, या फिर अगर आपके आसपास फूलों का बाजार है तो उसके बारे में भी मुझे जरूर लिख भेजिए। फिलहाल राहत देने के लिए ये खूबसूरत नगमा।

फिल्म देवता से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों में, और गुलजार ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी। जी हाँ, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि गुलाब की लाली और खुशबू की तारीफ सुनकर बाकी फूल जल उठे। मोगरा बोला, मेरी खुशबू के दीवाने हैं लोग। तो निशिगंधा ने कहा कि मैं भी क्या कम हूँ। गेंदे के फूल ने कहा कि मैं तो दिवाली की शोभा हूँ। मतलब एक ही चीज, हर एक चीज का अपना एक समय होता है, लेकिन सभी फूलों की जगह ईश्वर के चरणों में होती है। जी हाँ, क्या खूब कहा है आपने। एक और साथी कहते हैं कि आवाज की दुनिया विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के सभी उद्घोषक और सभी लोग जो भी यहाँ पर काम करते हैं, उन सब की आवाजें मीठी वाद्य यंत्रों से भी सुरीली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कल रात 2 बजे सूरत गुजरात में आंधी तूफान के साथ पहली बारिश हुई, और आज धूप के कारण गर्मी बहुत है। यही तो मौसम की बात है, मौसम पल पल में बदलता है। हमारे एक श्रोता है जो कि लंदन से इस वक्त हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं ऐप के थ्रू, और उन्हें ये गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। देखते हैं आगे के नगमे आपकी लिस्ट से मैच खाते हैं या नहीं। हमारे एक और साथी है जो लिख रहे हैं कि 15 गीतों की लिखी हुई इबारत में से फूलों पर लिखे हुए मेरे दोनों गीत फेल हो गए हैं, फेल हो गए हैं, और अब देखते हैं और कौन सा मेल खाते हैं। नहीं जी बिल्कुल, आपके दिल और हमारे दिल एकदम जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं गीत मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन मनोरंजन जरूर विविध भारती पर चलता रहेगा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि रोज दोपहर 1 बजे प्रसारित होने वाला सुरीला सफर कार्यक्रम केवल गीतों का संग्रह नहीं है, बल्कि श्रोताओं के दिलों को जोड़ने वाला एक सुंदर सेतु है। वर्षों से विविध भारती ने अपने श्रोताओं के साथ जो आत्मीय रिश्ता बनाया है, उसे यह कार्यक्रम और भी मजबूत कर देता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से श्रोताओं की सहभागिता इस कार्यक्रम को और भी जीवंत बना देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और साथी लिखते हैं कि फूल बिना कुछ कहे प्रेम, सम्मान, शुभकामना और संवेदना व्यक्त कर देते हैं। मंदिरों की पूजा से लेकर विवाह, स्वागत, उत्सव और स्मृति समारोह तक हर जगह फूलों की जरूरत होती है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आप ये जरूर संदेश में लिखिए कि आप किस तरह से इसके अलावा फूलों का उपयोग करते हैं, या फिर सिर्फ सजाने, पूजा भर से या विवाह स्थलों को सजाने, उसके अलावा ये जो फूल हैं जो मुरझा जाते हैं, आप एक बार फूल लेकर आ जाते हैं, किसी को गिफ्ट कर देते हैं या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, उसके बाद उन फूलों का आप क्या करते हैं, किस तरह से उसे उपयोग में लेकर आते हैं, साझा करते हैं अपने विचार और सुनते हैं कि सब लोग किस तरह से इसे यूज करते हैं। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई एक फूल की बात करना कठिन है, इनका जो रंग होता है, मनमोहक सुगंध होती है, कोमलता होती है, वो हमारे मन को सकारात्मकता से भर देती है। जी हाँ बिल्कुल।

चलिए, फूलों की बात चली है तो बताइए, मैं इंतजार कर रही हूँ, फूलों के बाजार का भी इंतजार कर रही हूँ कि आपके एरिया में, आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कौन से फूलों के बाजार लगते हैं, आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं।

फिल्म ना खुदा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, और लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाजों में अभिनेता अभिनेत्री आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, स्वरूप संपत और राज किरण पर फिल्माया ये गीत। फूलों की बात की कि फूलों को देने के लिए, गिफ्ट देने के अलावा और क्या करते हैं, तो हमारे साथी लिखते हैं कि जब भी उन्हें कोई फूल गिफ्ट करता है, देता है, तो वो अपनी किताबों में छुपा कर रख लेती हैं, फिर सोचती हैं कि इस बार जब भी कोई देगा तो उसे अपने बगीचे में लगा देंगे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि गुलाब के फूलों की हमारे देश में सबसे ज्यादा खेती बाड़ी हमारे अजमेर जिले के पुष्कर में होती है, जो कि तीर्थ स्थल भी है, और फूलों का उपयोग यहाँ पूजा के साथ साथ गुलाब का इत्र और गुलाब का गुलकंद बनाने में भी किया जाता है। हमारे घर के गार्डन में भी गुलाब के पौधे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत ही ज्ञानवर्धक बात आपने बताई है, हमें ये नहीं पता था। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि सबसे अच्छा फूल तो गोभी का फूल होता है, जब कोई इम्प्रेस हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसकी सब्जी बना ली जाए। जी हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पारिजात, हर सिंगार, शिफालिका या प्राजक्ता, ये एक ऐसा फूल है जो बहुत ही सुगंधित होता है और बड़ा पवित्र पुष्प माना जाता है, और आयुर्वेद में भी इसके काफी सारे औषधीय गुण हैं, और धार्मिक और पौराणिक महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने काफी डिटेल में इसके बारे में बताया है, और महाभारत काल में भी उस वक्त की भी कोई चर्चा की है यहाँ पर, उसका कुछ बताया है, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम और मैसेजेस पढ़ जाते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वो नागपुर में रहते हैं, और नवरात्रि, गणेश जी के आगमन के समय हर त्योहार को फूलों की मंडी में जाकर हर प्रकार के फूल खरीद कर लाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि पारिजात पुष्प को देवलोक का पुष्प माना जाता है, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं बहुत ही प्यारी लाइन कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, ये कविता की एक लाइन है जो बचपन में याद की थी और आज भी याद है, और सभी फूल बहुत सुंदर लगते हैं इन्हें। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनके आसपास फूलों का बाजार तो नहीं है, लेकिन वो एक सरकारी शिक्षक हैं और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बागवानी भी सिखाते हैं, जिसमें फूलों के बारे में बताते हैं और हर दिन माँ सरस्वती की तस्वीर को पुष्प चढ़ाते हैं, प्रार्थना करके अपना काम शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि मिडिल मिस्ट रेड एक अद्भुत फूल है, इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ फूलों में गिना जाता है, और ये माना जाता है कि केवल दो ज्ञात पौधे ही बचे हैं, और एक इंग्लैंड में है और दूसरा न्यूजीलैंड में है। और दिलचस्प बात यह है कि ये रेड कलर नाम जरूर है, इसका रेड जरूर नाम है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो गहरे गुलाबी रंग के होते हैं, और साथ ही ये हमें ये सिखाता है कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज वही है जो कम दिखाई देती है, लेकिन जिसकी मौजूदगी पूरी प्रकृति को खास बना देती है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने हम तक पहुंचाया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आंगन में महकती मधु मालती उन्हें बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह, और तमाम उदासियों को दूर कर देती है। हमारी एक साथी लिखती है कि ये शो सुनकर उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल बागों में नहीं, यहाँ पर कहीं झड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यारे से संदेश के लिए कि जब हम बोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि फूल झड़ते हैं। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, और ये पहली बार हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त स्कॉटलैंड से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए चलते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात।

0: तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: जी हाँ दोस्तों, आज दिन में 3 बजे सखी सहेली के साथ जरूर जुड़िएगा। स्पेशल सखी सहेली की वर्षगांठ है और मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी हमारे साथ होंगी। साथ ही आप हमें देख सकते हैं FB लाइव पर। साथ ही आपके जो भी सवाल है हिमानी जी से, वो आप अभी हमारे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं और हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। हमारे सुरीला सफर के कुछ संदेश इंतजार में है। फूलों की बातें चल रही थी तो फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, ऐसा लिखा हमारे साथी ने। मतलब फूलों को कई बार बेरहमी से कुचला और फेंका भी जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। और फूल काफी नाजुक होते हैं, उनके साथ इस तरह से बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। तो फिर उन फूलों को जो हमें गिफ्ट किए जाते हैं या जो मुरझा जाते हैं, उनके साथ ऐसा क्या किया जाए, किस तरह से उन्हें उपयोग में लाया जाए, आप हमें लिख सकते हैं। साथ ही हमारे साथी लिखते हैं एक और कि विभिन्न फूलों में मिली जूही महक, ओके, और रंग बिरंगे फूल जो है वो मन को तरोताजा कर देते हैं और आंखों को भी तरावट देते हैं, बिल्कुल। साथ ही साथ एक साथी लिखते हैं कि कपास का फूल, जिसके आगे संसार के सारे फूल फेल है। कपास के फूलों से रुई और खाद कपड़ा बनता है, जो इंसानों के शरीर ढकने का काम करता है। जी हाँ, वो भी एक तरह का फूल ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों के लिए। साथ ही गुलकंद के अलावा और मुझे ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे उपयोग सामने दिख रहा है आपके संदेशों में। मैं इंतजार कर रही हूँ कि और किस तरह से इन फूलों का उपयोग किया जाता है या आप किस तरह से करते हैं, जरूर मुझे लिखिए है।

फिल्म आप सबने बिल्कुल ठीक लिखी है। सिलसिला फिल्म से ये गीत सुनवाया गया आपको। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज, उमेश शिव हरी का संगीत था और जावेद अख्तर ने इसे लिखा था। साथी फूलों की बातें पहुंच चुकी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे राज्य ओडिशा में केवड़े की खेती बहुत भारी तादाद में होती है और इसके इत्र बनाने की कई फैक्ट्री है और साथ ही पान मसाले बनाने वाले ज्यादातर खरीदार होते हैं। और एक और साथी हमारे लिखते हैं कि इस पूरे हफ्ते ये कार्यक्रम नहीं सुन पाई और क्योंकि इनकी बेटी आई हुई थी और बेटी आई हुई है जो कि काफी टाइम इनको व्यस्त रखती है। कोई बात नहीं, स्वागत है आपका आज इस प्रोग्राम में। आप बने रहें जब तक भी आप बन सकते हैं हमारे साथ। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपराजिता शिवजी को चढ़ाते हैं और अलग अलग प्रकार के फूल उगाए हैं इन्होंने अपनी बगिया में और लाइट आकाशी कलर के भी इनको फूल काफी पसंद है। हमारी एक साथी लिखती है कि ये जब भी किसी को गिफ्ट करती है, फूल भेंट करती है, तो हमेशा उसकी जो डंडियां हैं, उसकी जो स्टेम है, उसे लंबा रखती है ताकि अगला भी उसे यूज कर सके। पानी में रखे, हर दूसरे दिन पानी को चेंज करे और वो ज्यादा से ज्यादा तरोताजा रह पाए जब तक रह सकते हैं और उसके बाद फिर उसको बाकी कामों में यूज कर सके। हमारी एक साथी लिखती हैं कि फूलों की वादियों में वो एक बार गई हैं जब गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ का टूर किया था और वहां पे फूल चट्टी बोलकर एक जगह आई थी फूलों की और वो बहुत खूबसूरत फूल लग रहे थे। मोबाइल तब नहीं होते थे इसलिए फोटो नहीं खींच पाई वो। जी हाँ, उसके अलावा ट्यूलिप गार्डन का जिक्र आया है हॉलैंड का, यहाँ पर एक साथी ने लिखा है। हमारी एक साथी लिखते हैं कि ऐसे ऐसे फूल भी खिलते हैं जिनके बारे में अगर आप सुने तो ताजुब करेंगे। कैक्टस के भी फूल खिलते हैं और ये फूल साल में एक बार रात को 12 बजे के करीब खिलते हैं, 1.5-2 घंटे के लिए। और उस पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता भी है कि कैक्टस के फूल तुम दिन में खिले होते। जी हाँ, ये मैंने पहली बार सुना है और आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। सचमुच ताजुब है। इसके अलावा गुलाब के फूल केवल सुंदरता के लिए नहीं होते हैं, साथ ही साथ उसमें रोग प्रति

रोधक क्षमता भी होती है, विटामिन सी भी मौजूद होता है, उसका टोनर भी बनाया जा सकता है और होंठ भी गुलाबी होते हैं उसे पीस कर लगाने से। साथ ही उसकी चाय भी बना सकते हैं, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा है। उसके अलावा गुलाब जल के रूप में भी प्रयोग होता है। और भी बहुत सारे फूल हैं जिनका अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस आज मुझ तक पहुंचे। चलिए हम पहुंचते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

सहेली के नीचे, पोस्ट के नीचे आप जरूर अपने प्रश्न रखिए और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के मैसेजेस के लिए। आज का सुरीला सफर यही समाप्त होता है, इजाजत दीजिए। आपने आज का ये सफर तय किया अनुराधा के संग।

फिल्म अपने पराये से येगी तभी आप सुन रहे थे, जिसे हम पूरा नहीं सुनवा पाए क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आपके मैसेजेस मुझ तक फूलों के पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं कि कईयों ने यहाँ पर प्रश्न लिख दिए हैं हिमानी जी के लिए, लेकिन आप फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर सखी

नमस्कार दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में सुख दुख धूप छांह की तरह है। समय का पहिया घूमता है तो कभी सुख आता है तो कभी दुख। सुख का समय तो पंख लगाकर उड़ जाता है, लेकिन दुख का समय बेहद लंबा और कष्ट भरा मालूम होता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में सुख दुख का चक्र चलता ही रहता है। इसमें घबराने की बजाय धैर्य से काम लेना ही समाधान है। जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा लाभ है, ये हमें अपने व्यक्तित्व में अंदर झांकने और उसे मजबूत करने का मौका देता है। दुख हमें अपने सच्चे और झूठे रिश्ते नातों और दोस्तों के असली चेहरे हमारे सामने उजागर कर देता है।

जीवन में जब भी कोई संकट आता है और अधिकांश लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब अपनी सहायता ईश्वर के अलावा हम स्वयं करते हैं। हमारा दृढ़ निश्चय और हमारी सकारात्मकता हमें जीवन के तूफानों में भी भटकने नहीं देती। अंधेरी सुरंग कितनी भी लंबी हो, उसके अंत में प्रकाश की किरण मिलती ही है। रात कितनी ही काली क्यों न हो, जीवन में सुख की सुबह होती ही है।

दुख का समय हमारे जीवन में एक चुनौती की तरह आता है। इस चुनौती को हम अपने संयम, धैर्य और विवेक से बड़ी सहजता से परास्त कर सकते हैं। और जब हम अपनी कर्मठता से, अपने पुरुषार्थ से परिस्थितियों पर विजय पा लेते हैं, तब हमें अपने आप पर गर्व भी होता है और उस पल को हम उत्सव से कम नहीं समझते।

दोस्तों, हम जीवन को जितनी सहजता से लेंगे उतना ही हमारा मन शांत रहेगा और हम अपने धैर्य और विवेक से दुखद परिस्थितियों पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर सकेंगे। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक हैं। मेरे सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
2: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए

0: श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुनिए गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जांच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था।

0: आजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5

0: नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: जी हाँ, जरूर जुड़िए हमारे साथ आज सखी सहेली स्पेशल, यानी कि आज हमारी वर्षगांठ पर मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी से रेडियो सखी ममता सिंह की दिलचस्प बातचीत आप सुनेंगे। हिमानी जी हमारे स्टूडियो में पहुंच चुकी है, हमारे परिसर में पहुंच चुकी है। 3 बजे से वो फेसबुक लाइव भी होंगी और आप उनसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लिख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज की सखी सहेली के पोस्ट के नीचे, हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। और ये दिलचस्प बातचीत बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक लाइव भी हम आपको सुनवाएंगे और दिखाएंगे। वक्त है सदाबहार नगमे का।

0: लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुगले आजम फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में

0: सजे गी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर।

0: शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: जी हाँ साथियों, आज 3 बजे स्पेशल सखी सहेली। जी हाँ, आपके चहेते कार्यक्रम सखी सहेली की वर्षगांठ पर आज मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी हमारे विविध भारती परिसर में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत स्वागत उनका। और आज ये दिलचस्प बातचीत हिमानी शिवपुरी जी के साथ रेडियो सखी ममता सिंह की आप सुनेंगे। साथ ही आपके जो प्रश्न है वो आप हमारे फेसबुक पेज पर सखी सहेली के पोस्ट के नीचे लिख सकते हैं, हम उन्हें जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और 3 बजे ये विशेष कार्यक्रम जरूर सुनिए। ये फेसबुक लाइव भी होगा।

3420 फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा था, ओपी नैयर का संगीत था। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती से।

होगा और हमारी जानी मानी अदाकारा, जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी विविध भारती के स्टूडियो में आ चुकी हैं। बस दिल थाम के बैठे रहिए श्रोताओं, 4 मिनट बाद हम शुरू करेंगे सखी सहेली, विशेष सखी सहेली।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली।

0: ही सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, आज है सखी सहेली की वर्षगांठ। 2003 में शुरू हुआ था ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का सफर इतना सुरीला रहा, इतना लोकप्रिय रहा कि आज भी लोग इसे बहुत प्यार देते हैं। सखी सहेली देश ही नहीं बल्कि दुनिया के श्रोताओं का प्यार मिला है। इस विशेष अवसर पर हमने फिल्म और टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी को सजीव प्रसारण में आमंत्रित किया है। हिमानी जी अपनी सहज अभिनय शैली, दमदार संवाद अदायगी के लिए जानी जाती हैं। फिल्म, धारावाहिक और रंगमंच तीनों माध्यमों में हिमानी जी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। तो पूरे विविध भारती परिवार की ओर से हम हिमानी शिवपुरी जी का स्वागत कर रहे हैं। हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सजीव प्रसारण स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू, आपने इतना प्यारा स्वागत किया और आपको और पूरे विविध भारती के परिवार को सखी सहेली की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
1: हिमानी जी, ये विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं, इसके पहले भी आप आ चुके हैं और आज सखी सहेली की वर्षगांठ पर हमने आमंत्रित किया है, तो ये स्टूडियो में आना कैसा लग रहा है और साथ में ये बताइए हमें कि रेडियो से आपका कैसा नाता है, खास तौर से विविध भारती से।
2: देखिए, वैसे तो मैंने फिल्म, टेलीविजन, थिएटर में काम किया है, लेकिन सब माध्यमों का जो पहला माध्यम जिससे मेरा परिचय हुआ या वो हुआ, वो रेडियो सबसे पहला। मुझे बचपन की जो यादें हैं इतनी जुड़ी हुई रेडियो से, पुरानी, हम लोग, पापा हमारे घर में, तब तक दूरदर्शन नहीं आया था तो रेडियो पर ही सब निर्भर करते थे, चाहे समाचार हो, देवकी नंदन पांडे जी की आवाज अभी तक कानों में गूंजती है,
1: समाचार वाचक
2: कुंदन लाल सहगल, एक स्लॉट्स होते थे कि पुरानी फिल्मी गाने जिसमें कुंदन लाल सहगल,
1: भूले बिसरेगी आज भी प्रसारित होता है।
2: हाँ, और वो सुनते थे और भी मजा आता था। बिना का गीत माला, कैसे पता लगता था कौन गाना इतना पॉपुलर है
1: जी।
2: और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में पापा और मेरा भाई और मैं भी, क्योंकि वो लोग देखते थे तो क्रिकेट के एंथुजियास्टिक थे सब के सब। तो मैं आज भी ये मानती हूँ, जबकि आज तो खैर आईपीएल वगैरह इतना है, आज भी मेरा मानना है कि जो रोमांच रेडियो में कमेंट्री सुनने से आता था वो टीवी तो मैच ही नहीं कर सकता। हालांकि मैं खुद टीवी के मीडियम से हूँ, लेकिन इस तरह से ये लोग समा बांधते थे कि मतलब

0: हमको लगता था कि हम वाकई में ग्राउंड में है, क्रिकेट ग्राउंड में। तो इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं
1: जी
0: रेडियो के साथ, हमारे बचपन का अभिन्नंग था। और बचपन क्या आजकल, जब
1: जहाँ
0: खासकर
1: बहुत
0: जब
1: सारे
0: हम,
1: चैनल्स हैं।
0: बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन रेडियो का भी अभी भी बहुत ही अहम भूमिका है। कि हम लोग जब मुंबई में, आपको मुंबई या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप क्या करते हैं कि रेडियो तो साथ में रहता ही है आपके,
1: जी
0: गाने
1: बिल्कुल।
0: बजते रहते हैं। तो आई फील कि जो ट्रैफिक की जो धक्का मुक्की है, उससे अगर कोई बचाता है तो वो रेडियो ही
1: क्या
0: बचाता
1: बात
0: है।
1: है, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और ये जो क्रिकेट कमेंट्री की बात कही है, तो हमें भी याद है कि आंगन के मुंडेर पर एक रेडियो रखा
0: रेडियो
1: जाता
0: रखा
1: था, और
0: जाता
1: गांव के कई लोग, यहाँ तक कि साइकिल से दूर दूर से लोग चल के आते थे कि फला के यहाँ रेडियो है, चलो हम क्रिकेट कमेंट्री
0: क्रिकेट
1: सुनने
0: कमेंट्री
1: चलते हैं।
0: सुनते हैं।
1: तो ये याद तो आपने बड़ी तिलिस्मी साझा की है। बताइए कि क्या आपने भी क्रिकेट के चौके छक्के लगाए, या सीधे आप देहरादून से दिल्ली की ट्रेन पकड़ लिया आपने? बताइए हमें।
0: नहीं, क्रिकेट में मैं तो ज्यादातर किताबी कीड़ा थी बचपन में, और नाटकों में भाग लेती थी, डिबेट्स करती थी, डांस करती थी। क्रिकेट के चौके छक्के तो मेरा भाई लगाता था, पर चूंकि हम घर में ऐसा माहौल था, और मुझे अभी भी याद है कि क्रिकेट के बारे में जो फैनेटिसिज्म था हमारे टाइम, तो सुनील गावस्कर वगैरह तो भगवान मंदिर में जाके पूजा करते थे, हाय मतलब सुनील गावस्कर सेंचुरी बना
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाथ जोड़ के प्रार्थना किया
0: हाँ, और
1: करते
0: जैसे
1: थे।
0: कोई भी भारत पाकिस्तान का या भारत इंग्लैंड का
1: तो
0: कोई
1: भारत
0: भी
1: जीत
0: मैच हो, तो
1: जाए।
0: भारत जीत जाए, मतलब प्रे कर रहे हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: कमेंट्री सुन रहे हैं। तो मतलब क्रिकेट का पैशन उस टाइम भी उतना ही था जितना कि अब है।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुन लें, उसके बाद फिर हम
0: जरूर
1: और
0: जरूर।
1: आपकी यादों के गलियारों में चलते हैं और ढेर सारी यादें खंगालेंगे। तो एक गाना बधाई देने वाला गाना है, हम सुनते
0: जी
1: हैं।
0: जी
2: तक लो।

0: तो हिमानी जी, ये बधाई हो बधाई गाने में था, और हमारे श्रोताओं की ओर से बधाई संदेश की बाढ़ सी आई हुई है, और हमारे बहुत सारे श्रोता आपके लिए लिख रहे हैं कि हिमानी जी आई हैं, चार चांद लग गया है विविध भारती के स्टूडियो में। और आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि रेडियो से इतना पुराना नाता है, ऐसा लग रहा है कि मायके, जैसे बचपन में हम लोग रेडियो सुनते थे, लगता है कि अपने मायके आ गई हूँ।
0: सही बात है।
1: और ऐसा भी नहीं, मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 बार आ चुकी हूँ, और दिल्ली हो, दिल्ली में भी करें, देहरादून में भी, जब भी जाती हूँ तो रेडियो प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि रेडियो से नाता मुझे नहीं
0: बड़ा
1: लगता
0: गहरा है,
1: बहुत गहरा
0: और
1: नाता।
0: आपसे भी बड़ा गहरा नाता है हमारे श्रोताओं का। हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपके अभिनय के कायल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि

0: हिमानी जी अपनी सशक्त अभिनय प्रतिभा, सहज व्यक्तित्व और कला के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। हमने आपको फिल्म हम आपके हैं कौन देखी, उसमें आपको देखा, और भी कई फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं। और इन्होंने सवाल भी किया, हिमानी जी आजकल आप क्या करती हैं और आपकी एक्टिविटीज क्या हैं। तो अभी हम ये पूरी आपकी जर्नी के बारे में जब बात करेंगे तो पता चली जाएगा हमारे श्रोताओं को। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली बहनों का त्यौहार है आज तो, और इसमें भाई का प्यार भी है तो सखा भी शामिल है। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को सखाओं का प्यार भी इस प्रोग्राम को मिलता है, और हमारे सखा बहुत लंबी तादाद में सुना करते हैं। एक श्रोता लिखा है कि कभी उलझा सखी सहेली, हे सखी सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो कहलाती हो नित नवेली, किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल, यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम हो सबकी प्यारी न्यारी दुलारी सखी सहेली। बहुत बातें लिखी हैं हमारे श्रोताओं ने, लेकिन अब हिमानी जी आई है तो हमारे मन में भी सवाल और बातों का ज्वार सा आया हुआ है। तो चलिए आपको हम उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं कि देहरादून से आपने दिल्ली का सफर कैसे तय किया, और गर्मी की छुट्टियां, इस समय गर्मी बहुत तेज है पूरे देश भर में, तो गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताइए, क्या नॉस्टैल्जिया होता है जब आप गर्मी की छुट्टियों में रेडियो सुनते हैं, आइसक्रीम और वो इकड़ दुखड़ का खेल, वो बचपन के संसार में आप गोते लगाइए और साझा कीजिए कुछ यादें।
1: बचपन में तो मुझे याद है कि गर्मी, सिंस मैं देहरादून से हूँ तो देहरादून का मौसम अभी भी वैसे बहुत अच्छा है कि जहाँ दो तीन दिन गर्मी होती तुरंत बारिश आ जाती है, तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है कि
0: जी।
1: और हम लोग जब गर्मियां होती थी तो स्विमिंग पूल में ही पड़े रहते थे, और पापा हमको पापा पहाड़ी थे तो हमको देहरादून वैली में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा जमुना तो है ही, हमने जमुना में राफ्टिंग भी करी है, गंगा में भी नहाने जाते थे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, करीब 20-25 मिनट में एक लक्ष्मण झूला, वो होता लक्ष्मण झूला तो ऋषिकेश में लक्ष्मण सिद्ध होता था, और सोंग रिवर होती थी, तो हम लोग नदियों में जाके नहाते थे। पापा तो सीधे, हमने स्विमिंग पूल में भी था क्योंकि पापा डून स्कूल में पढ़ाते थे तो वहाँ स्विमिंग पूल था, लेकिन हम लोग नदियों में भी, मतलब प्रकृति से
0: जुड़ाव
1: बहुत जुड़ाव था। और जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो पापा मसूरी ले जा लेते थे, और तब हम पैदल चल के, अब तो खैर कार से जाते, पैदल चल के देहरादून से मसूरी जाते थे, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बड़ा घुमाव होता है तो बहुत चक्कर आते हैं, मोशन सिकनेस होती है, तो हम लोग प्रेफर करते थे और पापा लेके जाते थे हमको पैदल रास्ते से, बीच में रास्ते में रुकते थे, चाय और पकौड़ी खाते थे,
0: क्या बात
1: फिर
0: है?
1: मसूरी पहुंचते थे, एक बहुत फेमस दुकान थी। और बाद में तो खैर जब कार या उससे तभी भी एक वो टोल आता था, टोल टैक्स होता है, वहां की पकौड़ियां बड़ी प्रसिद्ध है, पहाड़ी पकौड़ियां बहुत अच्छी होती, चाय और पकौड़ी, तो वो खा के हम लोग मसूरी जाते थे। और मसूरी में भी बड़े एडवेंचरस थे, मेरे पापा भी एडवेंचरस थे, भाई भी, और मैं भी लगभग लड़का ही थी, तो हम लोग गन हिल पैदल चलते थे। और जब हम कैमल्स बैक में भी रहते थे, मसूरी का एक तो माल रोड है और कैमल्स बैक, तो हम ऊपर चढ़ने के, मैं और मेरा भाई ना बहुत शैतान थे, ऊपर अच्छा। चढ़ने के नए नए रास्ते ढूंढते थे इधर से, मतलब एक्सप्लोरर्स थे हम, अपने को सोचते थे कि हम बहुत बड़े एक्सप्लोरर हैं।
0: लग नहीं रही कि आप शैतान थे, बहुत सीधी साधी लग रही है देखने में,
1: बहुत शैतान थे, मतलब हम लोग स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे जब देहरादून में होते थे, और मतलब और क्या करते थे, और बच्चों को छत से जैसे पेड़ों में, दून स्कूल बहुत ही हरा भरा और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है वहां पर, क्योंकि एक बार वो FRI का भी पार्ट होता था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इतने खूबसूरत पेड़ हैं, तो हम लोग पेड़ों में चढ़े रहते थे बंदरों की तरह, मतलब ज्यादा मतलब मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि हमारा बचपन इतना अच्छा बीता, और आजकल के बच्चों को देखती हूँ तो इतनी दया आती है कि वो बेचारे फोन पे, मोबाइल पे, अपने कमरे में या टीवी में, हम बिल्कुल पहाड़ चढ़ रहे हैं, नदियों में तैर रहे हैं,
0: क्या बात है,
1: बंदरों की तरह पेड़ों में, आम आजकल के बच्चों
0: जामुन
1: ने
0: खाना।
1: आप लोग को मतलब या तो
0: हाँ
1: ठेले पे फ्रूट्स दिखते हैं या आप सुपर मार्केट या ऐसी जगह जाए, हमने तो पेड़ से तोड़ के लीची, आम,
0: क्या बात
1: जामुन,
0: है,
1: अमरूद खाए हुए हैं,
0: क्या
1: उसका मजा ही कुछ और था।
0: बिल्कुल। तो हमें लगता है कि आपकी बातें हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो खास तौर से नई पीढ़ी कुछ तो सीखेगी, क्योंकि बंद कमरों में जो

0: उन्हें आनंद मिलता है बंद कमरों से बाहर निकलें तो आज भी वो आनंद ले सकते हैं। आपने एक बात कही कि आप लड़कों की तरह रहती थीं और बहुत बिंदास बेबाकी से जीती थीं। तो हमारी बहुत सारी सखियां गांव में रहती हैं, कस्बों में रहती हैं, उनके लिए कुछ कहिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उत्तराखंड से दिल्ली जैसे महानगर में आना आपके लिए, अपने
1: हाँ
0: माता पिता को समझाना। तो कुछ संदेश दीजिए, बताइए।
1: मैं रंगमंच करती थी, लेकिन क्या था उस टाइम, मतलब 50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप थिएटर को, और आजकल तो इतने सारे लोगों के पास
0: साधन है, माध्यम
1: साधन
0: है।
1: भी है, और दूसरी इतनी सारी वो है, क्या कहते हैं कि ओपनिंग्स है, आप ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे सिर्फ दो ही थे कि जो पढ़ने में होशियार होता था वो साइंस लेता था, और जो थोड़ा सा पैदल था दिमाग में वो आर्ट्स में जाता था। तो मैं होशियार थी तो मैं साइंस,
0: जी
1: और साइंस का ही आईएससी में वन ऑफ द टॉपर्स थी, मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, लेकिन रंगमंच करती थी। तो जो मजा रंगमंच में आता था ना, वो साइंस का बड़ा ड्राइव था, एमएससी का, मतलब 9 से 5 बजे क्लास और लैबोरेटरी में, और जो शाम को अव्यावसायिक रंगमंच करती थी, शाम को जो थिएटर करती थी उसमें बड़ा मजा आता था। लेकिन आप सोचिए, उस टाइम तो उत्तराखंड भी नहीं बना था, वो यूपी था,
0: उत्तर प्रदेश था,
1: उत्तर
0: बिल्कुल।
1: प्रदेश था, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप रंगमंच में, मैं तो रंगमंच ही देखा, फिल्म तो खैर बहुत बुरा मानते थे। मुझे याद है कि हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल की, मिस्टर मार्टिन, ज्यादातर ब्रिटिशर्स ही थे डून स्कूल में, तो मिसेस मार्टिन मुझसे कहती थी, हिमानी यू शुड गो इन टू फिल्म। तो मैंने कहा नहीं, हमारा नॉर्थ में एक बड़ा वैसा आइडिया था, फिल्म बिल्कुल नहीं, मैं 50-55
0: एक
1: साल पहले की बात कर रही
0: अलग
1: हूँ।
0: ही दुनिया थी,
1: हाँ, नहीं
0: बिल्कुल।
1: सोच ही नहीं सकते थे।
0: जी
1: तो खैर, मैं आपको बता रही थी कि थिएटर में रुचि थी, और मैं एमएससी कर रही थी और एक नाटक कर रही थी मैं, ब्रेक्ट का, थ्री पेनी ऑपेरा। इतने में एनएसडी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ स्नातक आए, कुछ छात्र आए, तब पता चला कि एनएसडी भी ऐसी एक संस्था है हिंदुस्तान में। उस टाइम एनएसडी थी, अब तो खैर
0: जी
1: काफी सारे स्कूल्स खुल गए, मध्य प्रदेश में खुल गया है, कलकत्ता में
0: पुणे में
1: है,
0: है, और
1: पुणे
0: पुणे
1: में
0: में।
1: है, और लखनऊ में भी अब खुल गया
0: जी
1: है, भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो उस टाइम सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय था, तब पता चला ऐसी एक जगह है जो आपको थिएटर में ट्रेनिंग देती। तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली, तो मैंने तय किया मैं यहाँ जाना चाहती हूँ।
0: क्या बात
1: उसी
0: है।
1: दौरान मेरे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं पढ़ने में होशियार थी, तो मुझे एमएस अब्रॉड करने की स्कॉलरशिप मिली।
0: वाह वाह।
1: तो मैं वीजा का इंटरव्यू देने गई दिल्ली, साथ में चुपके से एनएसडी का भी इंटरव्यू दे दिया,
0: ओहो, किसी को बताया नहीं आपने
1: किसी
0: घर
1: को
0: में?
1: नहीं बताया घर में। और जब लेटर आया एनएसडी का सिलेक्शन का, तो मैंने घर में बम फोड़ दिया कि भाई मैं तो जा नहीं रही हूँ अमेरिका, मैं तो दिल्ली जा रही
0: हाँ, एनएसडी
1: हूँ
0: करूंगी।
1: एनएसडी में। तो उसमें मतलब पूरा छोटे शहरों में तो हर एक कोई एक दूसरे को जानता है, और मुझे तो खैर मैं सबकी लाडली थी, कि पढ़ने में होशियार थी, डिबेट करती थी, डांस करती थी, प्लेज करती थी, और अभी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। उस टाइम बहुत बड़ी बात थी, अमेरिका पढ़ने जा रही है लड़की को स्कॉलरशिप मिली है। तो सब कहती कि भटजी, भटजी की नौनी, नौनी पहाड़ी शब्द है लड़की का,
0: बिटिया।
1: बेटी
0: हाँ
1: का,
0: जी।
1: भटजी की नौनी तो बहुत
0: हाँ
1: होशियार है। अब जैसे लोगों को पता चला भटजी की नौनी तो वहां जा रही है, सबने कह रही है भटजी की नौनी तो पागल हो गई, बताओ इसको समझाओ। मेरे पापा के पास आए कि भटजी आप समझाओ, इसका लड़की का दिमाग खराब हो रहा है, इतना अच्छा इसका करियर, इसको स्कॉलरशिप मिली है। और मेरे सारे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में, नाटक का पर्यायवाची था नौटंकी,
0: नौटंकी।
1: तो मुझे सब बोल रहे क्या तू नौटंकी करेगी, भांड, या तो भांड कहते थे,
0: बहुत बुरा
1: भांडगिरी
0: माना
1: करेगी,
0: जाता था,
1: बहुत
0: बिल्कुल।
1: बुरा। तो पापा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा काफी ब्रॉड माइंडेड थे, वो खुद ही अपने आप में लेखक थे, डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश, वो
0: जी
1: वहां के सब जाने माने साहित्यकार हैं उत्तराखंड के। तो पापा ने समझाने की कोशिश की कि बेटा तू अमेरिका हुआ हो, अगर तुम में वो रहा, मतलब बाद में आके कर लेना, शौक है ना तुम्हारा। तो मैंने पापा से एक बात कही, पापा देखो हो सकता है 40 साल, अब तो मैं सोचती हूँ बड़ी हंसी आती कि मैंने ऐसी, कि मैं 40 साल की हो जाऊंगी, पापा मेरे पास बहुत पैसा रहेगा, लेकिन मेरे दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा वो मैं पूरा नहीं कर पाई। तो मेरे पापा फिर कुछ नहीं बोले, मम्मी वगैरह सब मेरे रिश्तेदार सब खिलाफ, मेरे पापा खुद मुझे एनएसडी लेकर गए,
0: क्या बात है।
1: वहाँ मेरा एडमिशन कराया और वहाँ से मेरा करियर चेंज हो गया। 3 साल की ट्रेनिंग, फिर

0: रेपर्टरी ज्वाइन करके, रेपर्टरी इसलिए ज्वाइन करी कि वापस तो आ नहीं सकती थी, कि अपने पैरों पे खुददारी,
1: जी
0: 250
1: जी
0: की स्कॉलरशिप से मैंने कहा घर से एक पैसा नहीं मांगाऊं,
1: क्या
0: क्योंकि
1: बात
0: सबके
1: है,
0: खिलाफ
1: उसमें बहुत बड़ी
0: ढाई
1: बात
0: सौ
1: थी।
0: की स्कॉलरशिप मिलती थी, उसके बाद मैंने रेपर्टरी ज्वाइन किया, वापस तो नहीं आ सकती थी, कैसे करें, क्योंकि उस टाइम भी वो था उत्तर प्रदेश ऐसा माहौल नहीं था कि आप अपना आजीविका उससे चला सके थिएटर से। तो मैंने एनएसडी रेपर्टरी ज्वाइन किया, 600 रुपए पहले मिलते थे, उसके बाद 1,000, 2,000, 3,000 हाईएस्ट जो होता था एक ग्रेड
1: उसमें
0: आर्टिस्ट,
1: बहुत बड़ी रकम थी।
0: बहुत बड़ी रकम
1: बहुत
0: थी।
1: बड़ी
0: तो
1: रकम
0: उसी
1: थी।
0: में गुजारा करती थी और थिएटर करती थी। तो ऐसे मैं, ये मेरा सफर रहा दिल्ली से,
1: जी,
0: मतलब देहरादून से
1: देहरादून
0: दिल्ली
1: से
0: तक।
1: दिल्ली तक का, और बहुत ही प्रेरणादायी सफर रहा। हमें लगता है हमारी जितनी सखियां सुन रही हैं, जब कई कई बार वो उदास होती हैं और वो परेशान हो जाती हैं, तो उस समय उन्हें इस बात से इंस्पायर होना चाहिए। अब हिमानी जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
0: जी।

0: कोई बात नहीं
1: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और ये है कार्यक्रम सखी सहेली और हमारे सामने हमारी विशेष सखी विशेष अतिथि हिमानी शिवपुरी जी बैठी हैं और बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं कि गाने की बारी ही नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर हम गाना सुनवाते हैं जिसमें हिमानी जी खुद अभिनय किया है। हिमानी जी ने वैसे उनकी फिल्मों की फेहरिस्त गिनाने चलेंगे तो वक्त कम पड़ेगा, तो पहले हम गाना सुन लेते हैं। ये फिल्म हम आपके हैं कौन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हम आपके हैं कौन में हिमानी जी बड़ी अच्छी लग रही हैं। सुनते हैं ये गाना समधन।

0: हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, और चूंकि हिमानी जी की बातें आज बड़ी दिलचस्प लग रही हैं और हिमानी जी आई हैं तो गाने तो हम आपको रोज सुनवाते ही रहते हैं, तो गानों के अंश हम सुनवाते चलेंगे, हिमानी जी से बातें करते रहेंगे और आपकी टिप्पणियां भी बीच बीच में हम शामिल करते रहेंगे, आपके सवाल भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली शब्द सुनते ही एक सुकोमल भावना मन को छूने लगती है। मुझे याद है जब ये कार्यक्रम नया शुरू हुआ था और मेरे शहर में विविध भारती बहुत साफ नहीं सुनाई देता था। मेरी किचन एक खुले एरिया में थी जहां की खुली खिड़की से सटाने पर थोड़ी साफ आवाज आती थी। मैं 2 बजे किचन से फुर्सत होकर, जो मेरे रेस्ट का टाइम होता था, मैं फिर रेडियो लेकर किचन में पहुंच जाती और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठकर सखी सहेली सुनती थी। मेरी सासू माँ मुझे किचन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह बैठा देखकर रेडियो सुनते हुए देखती तो कहती, ये अजीब पागलपन है तुमको रेडियो सुनने का। पर आज 20 साल हो गए, मैं आज भी सखी सहेली उतनी ही तन्मयता से सुनती हूँ। हिमानी जी आज इस कार्यक्रम में मंच पर आई है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपनी आंखों से जीवंत अभिनय करती हैं और इसी तरह वे अपने जीवन में सक्रिय रहें। हिमानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, हम बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। तो हिमानी जी, अब हम एक बार फिर आपकी जर्नी की ओर चलते हैं। आपने बहुत सारी बातें एनएसडी की साझा की, अपने बचपन की साझा की। हमें बताइए कि आपका जो बचपन का गाँव है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का जो भटवाड़ी गाँव है,
1: भटवाड़ी, हाँ,
0: वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके विकास के लिए उस गांव को आपने गोद ले लिया है, एक बड़ी बात है ये, इसके बारे में बताइए ना, क्या है कहानी है?
1: नहीं, मैं आपको बताती हूँ ममता जी, शुरू से ही मेरे मन में ये था, क्योंकि मैं लगभग आप कह सकते हैं पहली महिला थी जिसने
0: अपने गांव से निकली,
1: जिसने मतलब उत्तराखंड से जो निकली फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर रंगमंच में पदार्पण किया। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, लेकिन उस वक्त मैं पहली थी
0: जी।
1: लेकिन मेरे मन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम कारण जी, बीवी कारण जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहती, तो मेरा ये उत्तर था कि मैं अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ
0: जी।
1: तो ये मैं क्या, जब एनएसडी में पढ़ती भी थी, स्टूडेंट थी, तभी भी जब छुट्टियां होती थी तो मैं आती थी और मैं जो वहाँ के हमारे जो थिएटर के एंथुजियास्टिक लोग थे, काफ़ी सारी संस्थाएं थी, उनके साथ वर्कशॉप लेती थी, जो मैंने सीखा था वो उनको सिखाती थी और आके नाटक भी करती थी, देहरादून सहारनपुर, बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप करती थी। मैं हमेशा कुछ काम करती रहती हूँ, मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं अपनी क्षेत्र के लिए कुछ करूं। अभी फिलहाल जब मैं आई 3-4 साल पहले, एक कॉन्क्लेव हुआ था जो प्रवासी उनको कहते हैं, जो बाहर रहते हैं उत्तराखंड से, तो उनसे कि आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे उत्तराखंड, जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, मतलब गांव के गांव ऐसे खाली हो गए हैं,
0: निकल जाते हैं लोग शहरों की ओर,
1: क्या करें, और उनको लोगों का ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आजीविका के साधन ही नहीं है और पहाड़ में रहना बड़ा कठिन
0: जीवन है।
1: अभी भी मैं 3 बार देहरादून गई लेकिन अपने गांव नहीं जा पाई क्योंकि सड़क ही खराब हो चुकी थी। अब सड़क नहीं है तो कैसे जाएंगे, और गांव में सिर्फ मैं अपने जब गांव में गई, जो मैंने गोद लिया, तो वहां सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर रहते हैं, महिलाएं हैं 30-35 बूढ़ी महिलाएं और 3-4 मतलब आई थिंक 10-15 वृद्ध पुरुष थे, क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की तब वो आते हैं महीने में एक बार गर्मी की छुट्टियों में, तो गांव एकदम खाली, घर खाली पड़े हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं बचपन में जब जाती थी तो खेतियां होती थी,

0: खेत खाली पड़े हुए, कोई है ही नहीं खेती करने के लिए, और वो है। तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए अपने गांव के लिए, तो मैंने इसलिए गांव अडॉप्ट किया। ये एक सपना है, बहुत जाइगेंटिक टास्क
1: बहुत ही ये
0: है।
1: बड़ा
0: हाँ
1: सपना देखा है मानी जी। यहां
0: हाँ
1: पर हम आपको रोक रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती और आज है विशेष सखी सहेली 2 जून सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ और हमने आमंत्रित किया है जानी मानी अदाकारा हिमानी शिवपुरी जी को। हिमानी जी, आप बता रही थी अपने उस गांव के बारे में जो अडॉप्ट किया है आपने, गोद हाँ। लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, तो वो बताइए फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो मैं फिर काफी साल के बाद जब गांव में गई, इस मतलब घूमने के इरादे से नहीं, ये कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने सब औरतों से मुलाकात की कि क्या है, तो मैंने उनसे पूछा भाई खेत क्यों खाली है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक महिला ने मुझे बताया कि दीदी जी, दीदी बुआ जी ऐसे ही बोलते हैं गांव में ना, कि मतलब मेरे को बुखार हुआ तो मुझे सीधा देहरादून, 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून, पहाड़ी रास्ता है, कभी सड़क सही रहती है नहीं रहती है। आप लोगों ने कुछ इंटरनेट में और उसमें सोशल मीडिया में फोटोज भी देखे होंगे, कोई बीमार पड़ रहा है तो चारपाई में लेकर जा रहे हैं, बल्कि मैंने अभी एक सीरीज भी करी है, वेब सीरीज, उसमें की चारपाई में जा रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है कुछ, तो कि मुझे देहरादून आना पड़ा बुखार आने के चक्कर में, तो मुझे बड़ा
0: दुख हुआ होगा फिर आपको।
1: और जान, मैंने कहा खेत क्यों खाली पड़े हैं, और मुझे बचपन की यादें में माल्टे बहुत हुआ करते थे, अब एक तो सीजन चेंज भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब आम के आम लग रहा है, बताओ पहाड़ों में आम लगते ही नहीं थे कभी, पहाड़ में आम लग रहे हैं, माल्टे गायब हो गए, और श्रोते ज्यादातर, हमारे गांव का श्रोता तो शुक्र है चल रहा है, लेकिन काफी सारे श्रोते भी सूख गए हैं, तो और बंदर का है, भालू का, ये सब का मिनेस है, वो सब ये लोग कहते हैं हम कुछ भी उगाते हैं, दीदी जी बुआ जी कुछ भी उगाते हैं, सब
0: खा जाते हैं,
1: खा जाते हैं, भालू आते हैं, बंदर आते हैं उखाड़ के, लंगूर आते हैं, चूहे होते हैं, तो क्या हो करे। तो फिर मैंने लोगों से पूछा जो वहां पे कृषि जो करते हैं, तो कहते हैं कि इनको बीज दे सकते हैं आप, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गई, तो मैंने ये मुहैया गांव के लोगों को दिलवाए, हल्दी और अदरक, वो उन्होंने उगाया, अच्छी फसल हुई, और एक मैंने कोशिश की कि एम्बुलेंस भी जाए किसी तरह से, तो ताकि बड़े खुश हुए, मतलब उनको लगा कि आसपास के गांव के लोग भी आ गए, कोई अपना बीपी टेस्ट करा रहा है, कोई शुगर टेस्ट करा रहा है, तो धीरे धीरे, और मेरे को यही कहना है ममता जी कि बहुत, ये मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है, और मैं
0: सच में
1: अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरी मदद करें, ताकि पहाड़ के जो गांव हैं जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है वो फिर से बस जाए, वहाँ पे आजीविका के साधन हो। और एक मेरा, मैंने बात की है सरकार से, वहाँ पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसमें मेरे पापा भी कभी पढ़ते होते, उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं, और बल्कि जो स्कूल के टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद वहां नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वहां वो साधन ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश मीडियम के अलावा कुछ करता ही नहीं है, वो संस्कृत महाविद्यालय है। तो मेरा एक सपना है कि उस स्कूल को मैं थोड़ा सा बेहतर करूं, जिसमें एक सेंटर भी बने औरतें, क्योंकि औरतें ही बची हैं कि वो कढ़ाई बुनाई और कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनको आजीविका मिले, और जैसे कुछ गाँव में हो भी रहा है पहाड़ों में, कुछ औरतें काम कर रही हैं, तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग स्वावलंबी बने, उनको नीचे ना उतरना पड़े, पलायन ना करना पड़े, वो घर बैठ के कमा

0: सके, तो ऐसे ये एक लंबा सा सपना है। और
1: ये सचमुच बहुत बड़ा सपना है और हम विविध भारती परिवार की ओर से इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें ताकि इतनी सारी लड़कियां खास तौर से जुड़ पाएं। और क्योंकि पहाड़ों पर लड़कियों का जीवन ज्यादा कठिन है, हमने तो
0: बहुत
1: ये भी
0: कठिन है सारा काम,
1: हाँ
0: लड़कियां और औरतें ही करती है,
1: करती
0: घास
1: हैं,
0: काटने से
1: हाँ
0: लेके जानवर चुगाने से लेके सब
1: सब
0: काम।
1: कुछ। हमने तो ये भी सुना है कि वहां पर पुरुष वर्ग, बहुत सारे पुरुष वर्ग गांव छोड़कर शहरों में आजीविका के लिए चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती हैं घरों में। और जानवर जो आते हैं, भालू बंदर जिसका जिक्र भी किया, शेर तक आते हैं तो अकेले फाइट करती हैं, लड़ाई करती हैं उनको अपने बचाव के लिए। तो ये पहाड़ों की महिलाओं को हम सलाम करते हैं।
0: बिल्कुल
1: सलाम
0: बिल्कुल,
1: तो हम आपको भी कर रहे हैं
0: अरे
1: कि आप
0: थैंक यू।
1: कहां
0: नहीं
1: से
0: मैं भी पहाड़ियों,
1: आई।
0: पहाड़ी महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं,
1: जी जी
0: और जितने भी मैं आपको बताऊं आंदोलन पहाड़ में चले हैं उनमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा है, चाहे वो चिपको आंदोलन जो हमारे भगुना जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चलाया, शराबबंदी आंदोलन महिलाओं ने ही उसका आगे बढ़कर, सारे पेड़ों से कौन चिपकी थी, महिलाएं चिपकी थी।
1: क्या बात है सचमुच। तो हम
0: हाँ
1: इसी बात पर आज आपके हाथों एक पौधारोपण भी करेंगे अभी इस
0: जरूर
1: प्रोग्राम के बाद, 4 बजे जब हमारा प्रोग्राम सजीव प्रसारण खत्म होगा यहाँ विविध भारती के परिसर में। और उस पौधे का नाम हम सखी सहेली हिमानी शिवपुरी रखेंगे। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी
0: ये मेरे
1: यहाँ।
0: लिए भी बहुत गौरव की बात है, और धन्यवाद। और पेड़ लगाना ये आपने मुझे कहा, मैं बहुत
1: जी
0: खुश हूं, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये जो
1: जी
0: एनवायरनमेंट, इसके इसमें सुधार होने का, क्योंकि हम ये सोच रहे कि सरकार सरकार ही क्यों करे, सरकार को भी करना चाहिए, जरूर हम टैक्स दे रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन हमारा भी कर्तव्य
1: निजी
0: बनता
1: स्तर
0: है
1: पर
0: निजी स्तर पर, कि
1: बिल्कुल।
0: हम जो आगे पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रहने लायक तो रहे।
1: बाप दादे ने जो पेड़ लगाए हैं आम
0: हाँ
1: जामुन के, बस वही हम खा
0: वही
1: रहे हैं।
0: हम खा रहे, वो भी कट चुके हैं।
1: जी बिल्कुल। तो आज आपने बहुत अच्छा संदेश और बड़ा संदेश दिया है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं। हालांकि हमारे लिए आपकी फिल्मों से गाना चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिल्मों की लंबी फहरिस्त है, खामोशी द म्यूजिकल, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन का गाना सुनवा ही दिया, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी। तो यहाँ पर हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना सुनवाते हैं।
0: जी जरूर।
1: बस इससे पर्दे पर हिमानी जी को देखिए और महसूस कीजिए। वैसे तो फेसबुक लाइव में आप देख ही रहे उन्हें।

0: विविध भारती से ये है विशेष सखी सहेली कार्यक्रम और हिमानी जी के अभिनय यात्रा बहुत बड़ी और बहुत समृद्ध है और मुकम्मल है। बहुत सारे श्रोता भी सवाल पूछ रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं हिमानी जी को, हमराही की देवकी भौजाई बहुत मशहूर हुई थी देवकी भौजाई से, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में नाम रखने लगे थे भाभी को भौजाई देवकी भौजाई, है ना, याद है आपको?
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ससुराल सिमर का रज्जो द्विवेदी, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं मिसेज लाजवंती और राधा जी, सुलक्षणा हसरते की सुलक्षणा, जाने कितने किरदार आपने निभाए हैं। तो हमारे श्रोताओं की ओर से सवाल है कि आपको कौन सा वाला किरदार ज्यादा अच्छा लगता है?
1: देखिए ये तो बहुत ही कठिन सवाल है क्योंकि ये ऐसा है कि क्योंकि मैंने तो 250 से ऊपर फिल्में करी है तो मैं गांधारी का ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि आजकल तो पहले तो 10-12 बच्चे होते थे, फिर आजकल तो एक एक भी होता है मुश्किल से दो। तो गांधारी से कोई पूछता कि कौन सा तुम्हें सबसे प्रिय है, ऐसे मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब मुझे प्यारे हैं। क्योंकि जैसे माँ को अपने बच्चे, क्योंकि हमारे क्रिएशन होता है, लेकिन जैसे कि आपने अभी जिक्र किया देवकी भौजाई, इसलिए कुछ खास, कुछ किरदार, सारे किरदार बहुत प्यारे हैं लेकिन कुछ किरदार जैसे कि देवकी भौजाई क्योंकि वो पहला किरदार था। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं जब दिल्ली में थिएटर करती थी ना तो एनएसडी रेपर्टरी, वो गवर्नमेंट जॉब था ना, तो वो नॉर्मल टाइमिंग वो ही होता था 9 to 5, और जब शोज होते थे हमारे प्लेस तब हम शाम को प्ले करके लेट लौटते थे, नहीं तो चार्टर्ड बसेस। अब गरीब जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते, थिएटर पैसा नहीं होता, तो जमुना पार रहते थे मयूर विहार में। आजकल तो मयूर विहार एशियाड के बाद बड़ा पॉश कॉलोनी बन गई है, तो उस टाइम वो थी स्ट्रगलर्स की। तो मैं चार्टर्ड बस से जाके मंडी हाउस आती थी और शाम को जैसे होता था ऑफिस वाले लोग जाते थे तो जैसे बैठे रहते, अब रोज देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे एक महिला आ रही है, तो ऐसी जैसे बात हो रही कि आप क्या करती हैं, तो मैं बोलती थी थिएटर करती हूँ। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है लेकिन वैसे क्या करते
0: हैं, क्या हो,
1: मैं की आदमी ये औरत रोज सुबह कुछ तो करती होगी। लेकिन जब मैंने हमराही किया देवकी भौजाई का, तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ, कि पहले से ही लोग बोलने लगे अरे देवकी भौजाई, क्योंकि हम कैरेक्टर आर्टिस्ट ना, हम लोग कैरेक्टर के नाम से हमको जानने लगते हैं। और जो लोग उस टाइम देखते थे, आज भी कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग, आजकल के यंग लोग ने तो नहीं देखा दूरदर्शन के टाइम पर उन्हें आज भी देवकी भौजाई याद है। और वो मैं एनएसडी से फ्रेश निकली थी तो इतनी मेहनत से वो तैयार किया था कि वो कैसे बात करेगी, कैसे, मैंने थोड़ा सा राजस्थानी पुट डाला था, मुझे तो नहीं पता था पर मेरे हस्बैंड जयपुर रह चुके थे तो रोज मैं उनको परेशान करती थी अपनी स्क्रिप्ट ले जाके कि इसमें राजस्थानी पुट डालो, क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी कम थी। तो मैंने डायरेक्टर के साथ बात करके, प्रोड्यूसर के साथ, कि जो पढ़े लिखे कम होते तो उनकी जो अपनी रीजनल भाषा है वो आ जाती है और वो किस तरह से आंखें, खूब मेहनत से तैयार किया। वैसे तो जो भी मैंने रोल किया पूरी मेहनत से किया, लेकिन उससे मुझे पहली बार ख्याति मिली थी ऐसी, अगर कहें तो हम आपके कौन, क्योंकि वो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, तो वो भी मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैंने कहा सारे
0: कुछ कुछ होता है और
1: कुछ कुछ होता है कि रिफत भी और दिलवाले दुल्हनिया की भी रज्जो बुआ बहुत फेमस है, हीरो नंबर वन की बुआ और परदेश की बुआ और बंधन, बहुत सारे किरदार।
0: उमराव जान में भी आपने काम किया,
1: उमराव जान में भी काम किया और ये मेरा जो धारावाहिक है आपने सब बोला, वो सुलक्षणा उस टाइम जो मैंने रोल किया था हसरते में, जी तभी आया था, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था उस टाइम का सुलक्षणा, और ससुराल सिमर का की जो था। और इन दिनों मेरा एक धारावाहिक चला 7 साल हप्पू की उल्टन पलटन,
0: जी जी जी, वो बहुत
1: किरदार कटोरी अम्मा, वो भी बहुत लोगों ने आज तक उसको सराहा है, पसंद किया है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए, चाहे वो फिल्म थिएटर में तो खैर करे ही हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच्योर हैं तो आप माँ के रोल करनी, और एक तरह के रोल होते थे, लेकिन मैं बड़ी इस मामले में लकी हूँ कि मैंने माँ का रोल भी किया। तो बंधन में जो

0: मेरी माँ है और मुझे कुछ कहना है, या मैं प्रेम की दीवानी हूं या बीवी नंबर
1: जी
0: वन की माँ, ये बिल्कुल अलग है. ऐसी बुआ का, आई स्टार्टेड विद बुआ या चाची जान, तो बुआ का कैरेक्टर हीरो नंबर वन में बुआ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परदेश की बुआ या अपने DDLJ की बुआ. तो इस मामले में मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी भी किया है मैंने, नेगेटिव भी किया है, सीरियस भी किया है.
1: जी, और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा,
0: सूरज के
1: जो
0: सातवां घोड़ा,
1: कि कला
0: मम्मो
1: मम्मो
0: मम्मो.
1: कला
0: हाँ
1: फिल्म है, इसमें आपने बहुत सशक्त अभिनय किया है, और हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात लिख रहे हैं। और उसके बाद ये कमर्शियल फिल्में, तो वहां एक तरफ कला फिल्म, एक तरफ ये कमर्शियल फिल्में, तो कैसा आप कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं? हमारे श्रोताओं की ओर से ये सवाल है कि आप जो विविध किरदार निभाती हैं, तो रोने का, हंसने का, फिर नेगेटिव किरदार, ये सब कैसे एक साथ कर लेती हैं? ये बताइए, राज की बात है ये
0: कोई राज की बात नहीं.
1: तो।
0: ये क्या कहते हैं, हम किरदार करते हैं तो क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं ना, उस किरदार में घुस जाते हैं, उसको जीवंत करते हैं. और हर किरदार, जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे आप इतने अलग अलग एक साथ कैसे, क्या हम जिंदगी में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी हमारे मन में गुस्सा भी होता है तो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं. तो ये सब हम में है. और हम, ये जिंदगी इतनी बड़ी, मतलब एक थिएटर ही है.
1: जी
0: शेक्सपियर ने
1: जी
0: भी कहा है कि ऑल
1: एक
0: वर्ल्ड
1: रंग
0: इज अ स्टेज,
1: जी रंगमंच है ये
0: रंगमंच
1: दुनिया
0: है
1: जी।
0: जिंदगी. तो आप देखिए, सारे किरदार आपको, आप आसपास मिलेंगे. तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वही कर देते हैं. ये
1: बिल्कुल
0: तो जिंदगी सिखाती है.
1: जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक गाना सुने, या
0: जरूर.
1: फिर श्रोताओं की कुछ टिप्पणियां भी आ रही हैं, हालांकि हमारे श्रोता भी आज कुछ ज्यादा उत्साही हैं और लगातार बधाइयां दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक कलाकार के रूप में सफलता और एक इंसान के रूप में संतोष, इन दोनों में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं? हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है।
0: दोनों तराजू अगर एक साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर दोनों में से चॉइस करने की बात आएगी तो मुझे लगता है इंसानियत ज्यादा बड़ी है, वो सब ज्यादा बड़ी चीज है.
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक गाना सुनवाते हैं, जिसे जिसकी फरमाइश आपने ही की है, गाइड फिल्म का गाना,
0: जी
1: एक अंश सुनते हैं।

0: गाइड फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया हिमानी जी की चॉइस पर। और हिमानी जी बताइए कि आज की युवा पीढ़ी जो खासकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने तो भाई NSD किया और बिल्कुल छलांग लगा दी आपने, लेकिन उन लड़कियों के लिए कहिए जो गाँव में, छोटे शहरों में, कस्बों में रहती हैं, क्या तैयारी करें, कैसे आए?
1: एक तो ये कि मैं कहना चाहूँगी कि जो ये अभिनय की दुनिया है ये इतनी ग्लैमरस नहीं जितनी लगती है। ग्लैमर है ज़रूर, लेकिन आपको प्रिपेयर करना होगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए और सिंसेरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि किसी भी प्रोफेशन में करने के लिए होता है, लेकिन इसमें खासकर बहुत। और टाइमिंग्स, घंटे बहुत है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो हीरोइन है टॉप पे पहुंच के, दीपिका पादुकोण है, 8 घंटे या 6 घंटे के लिए लड़ रही हैं, उनको उनको काम कम मिल रहा है, या मतलब जो लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे लंबे आवर्स होते हैं, और खासकर जो नए लोग आते हैं तो उनके तो बहुत लंबे आवर्स होते हैं, संघर्ष बहुत होता है। तो अगर आप में संघर्ष करने का मादा है, क्योंकि
0: लियाकत है,
1: हाँ,
0: प्रतिभा
1: और
0: है,
1: सिंसेरिटी है, सिर्फ ग्लैमर की वजह से मत आइए, क्योंकि ये आसान प्रोफेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि अगर आप में अदम्य प्रेम है अभिनय करने का, या आजकल तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, अभिनय कर सकती हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर सकती हैं, कैमरामैन, आजकल औरतें कैमरामैन भी हो रही हैं, साउंड इंजीनियर्स, इतनी सारी विधाएं हैं। तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो जरूर आइए। लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए, तो सॉरी, फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खानदान से होना पड़ेगा या शाहरुख खान के खान होना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल,
1: आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अगर आप में टैलेंट है और सिंसेरिटी है और आप मेहनत करने को तैयार है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आउटसाइडर्स भी आए हैं, सक्सीड हुए हैं।
0: बिल्कुल, और आपने खुद नाम लिया शाहरुख खान, तो कहीं आप
1: शाहरुख खान भी आउटसाइडर था, अक्षय कुमार जी आउटसाइडर थे,
0: बहुत संघर्ष था इनकी जीवन में भी, और कहीं आप सलमान खान की माँ बनती हैं, कहीं किस कहीं इन बड़े जो हीरो हीरोइन हीरो है इनकी भाभी बनती हैं, चाची बनती हैं, इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं। अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं, बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह के संघर्ष करने पड़े, किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी?
1: देख, महिला के रूप में मुझे लगता है कोई भी महिला जो घर से बाहर निकलती है तो उसको मर्दों, पुरुषों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कि उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं है, उसमें टैलेंट है, उसमें अकल है, चाहे आप आपकी फील्ड में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे टीचिंग में हो, तो महिला को डबल प्रूव करना चाहिए। और लोग तो ये समझते हैं कि मतलब मैं जब क्लास में मुझे अच्छे नंबर आते थे, अच्छा बिकॉज यू आर, लोग ये सोचते हैं अच्छा बिकॉज यू आर हिमानी भट्ट, मैं भट्टी तो मतलब आप लड़की हैं, आप देखने में खूबसूरत हैं, तो इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिल गए। क्यों, हमारी मेहनत कहाँ गई, हमने क्या पढ़ाई नहीं करी, या हम जो रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमको डबली प्रूव करना चाहिए, करना पड़ता है। और महिला के साथ और साथ में जिम्मेदारी भी आती है कि महिला कि अगर शादी होती है, शादी तो होगी और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला माँ बनती है, तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है, तो एक ये सब
0: दोहरी तेरी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है बताओ हिमानी शिवपुरी?
1: स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो स्त्री है, शक्ति का रूप है।
0: बिल्कुल, और अपनी शक्ति को तलाशे, और आपकी इस लंबी
1: शक्ति
0: यात्रा
1: है और किसी भी चीज का सामना कर सकती है, वो सब औरतों ने प्रूव किया है।
0: जी, अब गाना सुनवाए एक
1: जरूर।
0: कौन सा गाना? खामोशी द म्यूजिकल।
1: जी,

0: हिमानी जी, बहुत सारे श्रोता कमेंट भेज रहे हैं, तो हम सबके शामिल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मिले जुले कमेंट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भट्ट जी तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में भी थे, अब पता नहीं वो आपके परिवार से थे या कोई और थे, और आपने जिक्र भी किया अपने पिताजी का, तो शायद इसलिए उन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी सादगी, मधुर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार किरदार दिए हैं। विविध भारती पर आपको सुनना अत्यंत सुखद लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चार चांद लगा दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हिमानी जी के लिए एक वाक्य याद आ रहा है, मेरी मम्मी बिल्कुल हिमानी जी जैसी ही लगती हैं, तो उनका नाम भी हम लोगों ने हिमानी मम्मी, एक मामी, हिमानी मामी रखा है। तो हिमानी जी को देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए दी है। कुछ श्रोताओं ने पूछा है कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्रोताओं का करना चाहती हूँ, और मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, 40 साल से ऊपर हो गया है। ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता है, आज रेडियो के द्वारा मिल रहा है। मैं सड़क पे चलती हूँ, लोग आते हैं और मिलते हैं और मेरी पुराने किरदारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं जिन्होंने थिएटर, तो ये आपका प्यार है, प्रोत्साहन है, इसी की वजह से मैं आज ये काम
0: जी
1: कर रही
0: जी जी हिमानी जी, आपकी अभिनय यात्रा और आपकी निजी यात्रा इतनी दिलचस्प है, हमें तो लग रहा है कि अब ये बातचीत खत्म ना करें, तो बस अब ये आपसे हम वादा करते हैं, और आप वादा कीजिए कि आप विविध भारती के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगे।
1: जरूर हम जरूर आऊंगे।
0: अब आपने सबके सामने वादा कर दिया, हाँ। तो हमारा वादा पक्का रहा। अब बिल्कुल वक्त नहीं, अब चलने से पहले हम बता दें कि आज के फेसबुक लाइव की कमान जुबैर खान और तनिष्का नाइक ने संभाली, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक का था, और हमारे उद्घोषक साथी मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और हमारी बहुत सारी सखियां सहेलियां जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष जाधव की प्रेरणा और सहयोग से यह प्रसारण सफल हुआ, और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग राजेश बेलदार सर, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी सोपान तायडे जी, और साथ में किशोर, किशन, एकता और हमारी विविध भारती की पूरी टीम, हमारी जो सखियां हैं इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आया करती हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपसे अभी थोड़ी देर बाद मुखातिब होंगी, तो विविध भारती के फेसबुक पेज को आप का दामन थामे रखिए। फिलहाल अब हम इजाजत ले रहे हैं, आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माई गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार, जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
1: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की। चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूजिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का। जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ, और बहुत सारे इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना। और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का, 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का, तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, और दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में, जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहां पे बहुत सारे लद्दाख से लोग आते हैं,
0: अच्छा
1: आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। वहां हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की है वहां पे।
0: वाह वाह।
1: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचिन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरणजी जहूजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी,
0: जी
1: और जसपाल मुनी जी, हरि ओम जी और पंडित ज्वाला प्रसाद जी, और बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी, पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े

0: बड़े सिंगर्स हैं, सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के।
1: जी
0: और जौहर बट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं, और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा, मैं माफी चाहता हूँ। तो पिताजी का भी अपना एक अलग
1: दर्जा रहा
0: वर्चस्व रहा है दिल्ली
1: जी।
0: में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था। आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान, और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है। एक बहुत बड़े सम्मान की बात है।
1: वाह।
0: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया, और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
1: अच्छा
0: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
1: जी।
0: वो भी बांसुरी वादक हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं।
1: जी।
0: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में और डिवोशनल म्यूजिक में, और कुछ कुछ गजल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज किया। तो ये इस तरीके का रहा सफर
1: ये सफर इस तरह से चलता
0: जी
1: रहा।
0: दिल्ली में।
1: हमारी बातचीत के सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं, तो
0: जरूर,
1: आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
1: अच्छा देखिए, आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूं,
0: जी
1: और वो है तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे। ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं,
0: जी जी जी
1: है ना
0: जी जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूं ना,
1: जी?
0: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है और
1: क्या बात
0: पिताजी
1: है,
0: के साथ।
1: वाह
0: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पर रियाज कर रहा हूं। आप
1: वाह
0: देख रहे होंगे इस पे ये निशान,
1: जी जी जी जी
0: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
1: हाँ, उंगलियों
0: तो
1: के,
0: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी।
1: वाह
0: और ये जो थ्रेडिंग है, ये
1: जी।
0: देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
1: अच्छा
0: तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी, मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को, और अपने संगीत को, और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज किया, वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं,
1: बिल्कुल
0: जहाँ से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए और आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहां से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ,
1: जी,
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना है मुझे।
1: क्या बात है
0: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
1: वेणु
0: और वेणु, क्योंकि मांसुरी को वेणु भी बोलते हैं,
1: जी।
0: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोवर का, तो हमारे हमने यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जलोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों,
1: जी
0: और श्रेया घोषाल जी से लेके, सलीम सुलेमान जी से लेके, विशाल शेखर जी से लेके, सब सब सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया
1: वाह
0: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की,
1: जी,
0: और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था, तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शहनाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
1: बिल्कुल
0: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले
0: ये आप चाहेंगे। क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा। आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है।

0: और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है,
1: बिल्कुल
0: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सकें। अब उसमें पंडित प्रवीण गुरखिंडी जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने
1: वाह
0: आशीर्वाद दिया मुझे, उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया। पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया
1: जी
0: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया
1: जी
0: एंड नवीन अन्ना जी ने किया। ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं,
1: जी जी
0: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं। और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
1: अच्छा
0: हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त
1: जी
0: किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं,
1: जी जी
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं, वो एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं।
1: जी जी
0: और फिर और भी काफ़ी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफ़ी देवोप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफ़ी आर्टिस्ट जुड़े थे। फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें,
1: वाह
0: उन्होंने राग मालकोस बजाया था,
1: जी
0: मेरे भाई ने राग हंसुधनी बजाया था, और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ वेणु का बनाया हुआ बांसुरी है
1: वाह वाह वाह
0: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूं।
1: जी, क्या बात है
0: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी,
0: जो मैं आपको सुनाऊंगा,
1: जरूर
0: उनके बारे में भी बताऊंगा।
1: जी।

0: जी, बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर, और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले शहर की तरफ आए?
1: जी, मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए,
0: जी
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे। दिल्ली के जो नामचिन काम करने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था, तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे, तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले। वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते हैं। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को

0: मुंबई आप ज़रूर भेजिए, वहाँ से फिर घड़ी बनी मुंबई की आने की।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो इस तरह से एक
0: मुंबई
1: तरह
0: आना
1: से
0: हुआ।
1: जसपाल मोनी जी
0: हाँ
1: ने,
0: वो इतना आसान जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं, बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता। बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड, बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
1: त्याग करना पड़ता
0: त्याग
1: है।
0: करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
1: जी
0: उस चीज में मेरे लिए।
1: बिल्कुल। एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है, मुंबई और दिल्ली दो अलग-अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
0: बिल्कुल
1: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे,
0: जी
1: लेकिन किन-किन फिल्मों में जिनका आप जिक्र करना चाहें,
0: जी
1: आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए।
0: जी वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है
1: जी
0: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
1: जी जी
0: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो,
1: ओ माय
0: बस
1: गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
0: जी जी
1: हैं,
0: जी
1: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी
0: जी
1: पीसेस हैं।
0: जी
1: जी
0: जी
1: और
0: और ऊंचाई एक पिक्चर आई थी,
1: जी
0: ऊंचाई
1: जी राजश्री प्रोडक्शंस की,
0: जी,
1: अमिताभ बच्चन थे।
0: एक मिली पिक्चर आई थी, केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
1: वाह वाह,
0: मुन्ना भाई MBBS रिटर्न है,
1: क्या बात है,
0: दबंग 3 है, दृश्यम है,
1: ये तो बहुत लंबी
0: सरबजीत
1: फहरिस्त
0: है, फितूर पिक्चर है,
1: है। जी
0: नोटबुक पिक्चर है, गुडबाय है, मनमर्जियां है,
1: वाह वाह,
0: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
1: हाँ दोनों पार्ट,
0: हाँ दम लगा के हईशा, जॉली LLB,
1: वाह वाह
0: बहुत सारी पिक्चरें हैं
1: जी
0: और भी
1: बिल्कुल।
0: बहुत सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है
1: हाँ
0: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है,
1: जी जी बिल्कुल,
0: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट सो इट्स माई पार्ट ऑफ जर्नी।

0: एक तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं,
1: जी
0: तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है,
1: जी
0: तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है, और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: इंजॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज्यादा करता हूँ,
0: जी
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूँ, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं एंजॉय करता हूँ।
0: जी जी
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं।
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती
1: वो, हाँ वो नहीं चलता है वहाँ पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे।
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्त सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है। क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंटेशन
1: एक्सपेरिमेंट
0: है।
1: और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी,
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम,
0: जी जी
1: तो वो जो लोकप्रियता है, लोगों तक घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका, और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हम विविध भारती में बैठे हैं, जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि
0: जी
1: मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहाँ हमेशा हूँ आपके साथ।
0: हम बिल्कुल बिल्कुल हैं। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है,
1: जी
0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है?
1: जी पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो एक
0: हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है,
1: वो एक वो पीस है। और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है।
0: वाह।
1: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा जो हमारे इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री के,
0: मेटल फ्लूट बजाया करते थे।
1: मेटल फ्लूट हो, नहीं ये मेटल फ्लूट है सर,
0: जी बिल्कुल,
1: दिस इज सिल्वर प्लेटेड।
0: वाह,
1: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है।
0: जी जी
1: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम
0: डिफरेंट है,
1: अलग है,
0: बिल्कुल।
1: सो

0: एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
1: ये भी
0: मुझे
1: बजाना होता है
0: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ.
1: जी
0: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते
1: जी
0: हैं, और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं.
1: जी
0: सो ये इसका

0: तो ये
1: वाह,
0: इसका
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकेरिनो है।
1: जी,
0: ये आप देख रहे होंगे इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ, ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो।
1: जी,

0: उसका ऐसा साउंड है।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड
0: अच्छा,
1: है।
0: ये इसकी एक खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था।
1: अच्छा
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन हैं, उनके पास में गया था इटली में, वो
1: जी
0: एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वॉज नॉट ओपन जब मैं था वहाँ पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज़ मेरे लिए मुझे दीजिए क्योंकि मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर
0: और
1: था।
0: ये आप देख रहे हैं सर, दिस इज कॉल्ड कजू,
1: जी,
0: ये इसमें हम गाते हैं,
1: हाँ ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही आपको।
1: जी,
0: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गा ही रहा
1: जरूर
0: हूँ।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
0: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है,
1: हाँ
0: रहमान साहब के गाने का है।
1: हाँ हाँ हाँ

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात
1: इसका
0: है।
1: एक ऐसा खुद से ही जुगलबंदी कर लेता।
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र हो
1: अब सर
0: गया।
1: एक मैंने जब मैं फ्लूट मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना।
0: जी जी जी
1: मैं बहुत घूमा हूँ, मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूँ, लंदन घूमा हूँ, यूरोप घूमा हूँ। जैसा मैंने कहा इटली में था, इटली स्पेशली एक जगह जब मेरा फ्लोरेंस में एक प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने। तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा हूँ। अच्छा, आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का,
0: बिल्कुल
1: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस हैं
0: जी,
1: और बहुत अलग अलग चीज़ें मैंने इंजॉय की हैं जिंदगी में।
0: क्या बात है।
1: अब जैसे ये बांसुरी है एक, तो
0: ये
1: एक
0: तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है।
1: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है, ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है
0: कहां से लाए?
1: नॉर्मल जहां से मैं, ये तो मेरे खुद बनाई हुई है।
0: अच्छा,
1: अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो

0: उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो मैंने बहुत साल पहले एक मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटर्नल विंड्स। तो उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज़ किया है 2011 में।
1: जी
0: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था क्योंकि रिलीज़ करने में तो और 2 साल लगे थे।
1: जी जी
0: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है,
1: बिल्कुल
0: इसका साउंड में सुनाता हूँ आपको।
1: जरूर।

0: अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इन टू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाय मी।
1: जी
0: अब ये एक है, और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है,

0: ये इसका बाज नहीं है। हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल बाकायदा
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाली नहीं बजा सकते उसमें।
1: बिल्कुल
0: साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें
1: जी बिल्कुल,
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है।

0: पूरा साउंड चेंज हो गया,
1: पूरा प्लेइंग चेंज हो गया ना।
0: जी जी,
1: अब वैसे ही जो ये जो साउंड है अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है,
0: हाँ क्या बात है,

0: ये स्टाइल है इसका,
1: वाह।
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने,
1: और ये फिल्म म्यूजिक
0: जो
1: में
0: मैं
1: बहुत सुनाई दे रही है
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: सुनाई।
0: बजाया मैंने इसको
1: जी
0: फिल्म
1: जी
0: म्यूजिक में। मैंने अपने एल्बम में भी बजाया,
1: जी
0: एल्बम में जो कंपोजिशन था

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है,
1: बिल्कुल।
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे,
1: बिल्कुल,
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली
0: आइए
1: जी।

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है।
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना,
0: जी
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए।
0: जी
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको,
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने।
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या?
0: जी
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं,
0: हम
1: तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर दे तो मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक।
0: जी जी जी
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर,
0: हाँ तो
1: तो
0: रख लेंगे,
1: रख लेंगे, बजाएंगे।
0: वाह।
1: पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको, अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है जी।
1: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले।
0: जी जी।
1: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा। पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
0: बिल्कुल, एक अलग पहचान।
1: सारे गामा पादा निसा आप सेम बजा रहे। अभी मैं आपको एक चीज, एक दो उदाहरण देता हूं।
0: जी
1: सपोज कीजिए सुबह कर आगे तोड़ी है।
0: जी जी।
1: अब सारे गामा ऐसे भी बजता है थोड़ी, पर सिर्फ सारे ही गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है।
0: वाह,

0: ये भी सारेगामा है,
1: जज्बात आ गए
0: पर इसमें प्यार है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी
1: जी,
0: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता तो, तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है। मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो

0: तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है, मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है वो
1: जी
0: नहीं होती है, तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा, तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए,
1: जी
0: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
1: यस,
0: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
0: क्या बात
1: तो आपके साथ जो महफिल है वो
0: है
1: कभी खत्म होती ही नहीं है।
0: जी
1: तो इस महफिल को यहां रोकते हुए,
0: आपका आपका और इस जगह का जादू ऐसा
1: अच्छा
0: है कि
1: जी,
0: मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का, बट क्योंकि समय का भाव ऐसा रहता है,
1: मैं समझ सकता
0: आपका भी
1: हूं
0: कार्यक्रम है आगे
1: जी।
0: और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना, सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ
1: जी
0: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रण किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा मैंने हमने शुरुआत की, दिस इज
1: जी
0: होम कमिंग बैक फॉर मी,
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने दिया जाता।
0: नहीं
1: एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
0: तो
1: और एक
0: मैं
1: गाने की फरमाइश कीजिए।
0: हीरो,
1: देखिए, फरमाइश भी आ गई
0: ये
1: है।
0: तो फरमाइश नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट है।
1: अच्छा, कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश आ
0: हाँ
1: गई।
0: हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूं उनको शायद।
1: अच्छा, क्या बात है, क्या बात, तो
0: ठीक है,
1: कॉम्प्लीमेंट आया। जी
0: कॉम्प्लीमेंट है ये
1: जी जी जी
0: तो
1: हमारी टीम
0: एज
1: ने हीरो के गाने की फरमाइश की
0: जी
1: और आपको भी हीरो कह दिया है।
0: मुझे निःशब्द कर दिया आपने।
1: जी
0: सो ये हीरो धुन
1: जी
0: स्पेशली डेडिकेशन टू यू
1: शुक्रिया,
0: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको, एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: थैंक यू सर। क्या आपको मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माई गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम।
1: कृष्णा थीम
0: जरूर।
1: सो दिस अगेन वंस अगेन दिस डेडिकेशन डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
0: जी
1: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को।
0: बिल्कुल।
1: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है, ये उन प्यारे लिसनर्स ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
0: बिल्कुल, शुक्रिया।
1: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
0: जी।
1: सो बहुत गुणी आदमी हो, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग विद सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरीवादक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो रिकॉर्ड करते करते रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना, तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में, तो उन्होंने परेशान हो गए वो। फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया। तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे सपोज हो रहा है ना, ये कंपन जो हो रहा है, इसको हम विब्राटो कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब जो उनको विब्राटो जैसा सुनाई दे रहा था, वो साउंड गाने में कैसे दे रहा था मैं बताता हूँ आपको
0: जी।
1: विब्राटो इतना दिल से आ रहा था,
0: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था।
1: ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो
0: जी।
1: जब उन्होंने सुनाया तो मैं पागल हो गया था।
0: अरे बाप।
1: खैर, ओ माई गॉड कृष्णा थीम फॉर
0: जरूर
1: एवरीवन।

0: शानदार, क्या बात है।
1: अच्छा क्या है, दो तीन पीस है
0: जी,
1: कुछ
0: जी
1: फेमस, जिसको लोग बोलते हैं कि मैं, मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है।
0: जी
1: कभी कभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन
0: जी
1: सिंगर गा
0: जी
1: जाते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: ऐसी कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है,
0: अच्छा,
1: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया, फिर उसको रखा है। अब
0: जी
1: जैसे एक वो है, एक कलर्स चैनल का जो थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था, उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है।
0: ओके,
1: तो ये एक थीम है। और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है, मोमो
0: जी
1: के धागे वाले का
0: वाह वाह,
1: गाने में
0: बहुत
1: मैंने
0: शानदार
1: बजाया
0: पीस है ये।
1: आपके लिए स्पेशली, मोमो के धागे।

0: क्या बात है, अद्भुत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया पारसजी विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच,
0: बहुत शुक्रिया।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोधरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेश

0: कल्याणपुर कल्याणपुर कोटबहरा घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया महावीरगंज शिवपुर कनक पुर टकिया मेंढारी भगवानपुर नवापारा इकनारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर लुंड्रा उदयपुर सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो किशुनपुर गंगरी कुल्हाड़ी कंचनपुर पड़ोली जमीरा मसगा डांडपारा सायर कुमडेवा लक्ष्मणगढ़ उदरबसवार केदमा जगरना नाथपुर ढोड़ा गांव कठबुड़ा शिवनाथपुर घासीडी दातीढाप गढ़गांव बरडाण चोरकी पानी कंडराजा पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी पत्थल गांव तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर जामचुआ बिलासपुर रानी कोम्बो कुंजारा लोटापानी मयूर चुंदी बरटोली खड़ामाचा चट्टान पारा महुआ डी खुटसेरा पतेबहाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ और कापू में हाथियों की कुल संख्या 124 है। ये आमगांव पोटिया ओंगना चैनपुर रुपुंगा बोजिया बनहर औरानारा बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी सलिहा भाटा बांधापारा लालडी झुनकीडी जुनवानी कुकरी कादर फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये छर्रा टांगर बंगूरसिया जुनवानी चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल दादर पकरीद नवागांव कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिहार छिंदौला लूठापारा नारीपानी डूमरघाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी।

किसानवाड़ी कार्यक्रम के सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला महंगू भैया की राम राम जय जोहार। किसान भाई हो, ऐसे देखे जाए तो गांव मन मा हर घर मा कुछ न कुछ पौधा जरूर पाए जाते और कतको जगह में तो होम हर्बल गार्डन यानी घरेलू औषधि बगीचा असन बना दे जाते और बनाए रहते। घर मा औषधि पौधा जौन हर प्रायः देखे जाए तो प्रमुख रूप ले तुलसी है, एकर बिरवा तो जरूर पौधा

0: आप ये घर में जरूर मिल पे करी। कतको घर में एलोवेरा है, पुदीना है, गिलोय है, अजवाइन है, लेमन ग्रास जैसन पौधा जरूरत परे में आसानी ले मिल जाते। दूसर स्वास्थ्य लाभ कतको औषधि पौधा सर्दी है, खांसी, पाचन ले संबंधित जो भी समस्या है और सामान्य स्वास्थ्य देखभाल में ये सहायक होते। रासायनिक पदार्थ ले बचाव, घर में उगाए गए जो भी पौधा है वो सामान्यतः ताज़ा और सुरक्षित रहते, यू बात है जिमा रासायनिक अवशेष कम होते या नहीं के बराबर होते। आर्थिक बचत, छोटे मोटे स्वास्थ्य आवश्यकता पर बार बार बाजार ले जड़ी बूटी खरीदे की जरूरत नहीं पड़े। पर्यावरण संरक्षण घड़ा होते, पौधा वायु यानी हवा ला शुद्ध करते, यू बात है हरियाली बढ़ाते और जैव विविधता ला प्रोत्साहित करके मदद करते। पोषण और अगर बात करबो ये सबके तो वृद्धि पर खाद वृद्धि पर पुदीना है, धनिया है जैसे कहे जाए तो कड़ी पत्ता है जैसे जड़ी बूटी भोजन के जो स्वाद ला बढ़ाते पौष्टिकता ला बढ़ाते। कम जगह में खेती करे जा सकत हवे जैसे गमला में आप कर लगा सकत हो, कुछ ला छत में लगा सकत हो, बालकनी में या घर के अंगना में घला आसानी ले एला उगाया जा सकत हवे। अगर देखे जाए शिक्षा और जागरूकता लैकन और परिवार के सदस्य ला औषधि पौधा के महत्व के जानकारी एकर ले मिलते, यू बात हर है ये पौधा रही तभी तो चिन्ही है ना भाई। ये प्रकार ले होम हर्बल गार्डन बर प्रमुख पौधा तुलसी, एलोवेरा, गिलोय, पुदीना, लेमन ग्रास, अजवाइन, कड़ी पत्ता और अदरक जैसन हर हवे। एकर उपयोग हमर किसान भाई मल्ला करना चाहिए और लगाना चाहिए। कतको राज्य में हर्बल गार्डन औषधि बगीचा ला बढ़ावा दे बर समय समय में सहायता दे जाते, फिर ये योजना हर राज्य में एक जैसे नहीं होए, अलग अलग रही थे। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा औषधि पौधा खेती ला प्रोत्साहित दे जाते। दूसरी बात यह थे कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राज्य उद्यानिकी विभाग के कुछ योजना में पौध सामग्री या फिर प्रशिक्षण की सुविधा मिल सकत हवे। कृषि विज्ञान केंद्र है केवीके और वन विभाग द्वारा घला कभू कभू औषधि पौधा के पौध वितरण घर कर जाते, एला लेके आप बढ़िया ढंग से ये गार्डन ला बगीचा ला घर में लगा सकत हो। ये तो हुई आज के बाद। अब अगोरा थे स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम के आज मंगलवार के दिन किसानवाड़ी गांव में ग्राम परसापाली विकासखंड बमनीडे जिला जांजगीर चापा के किसान मनसो जौन गोड़ बात हुई वो रिकॉर्डिंग के प्रसारण आप ला सुनात हन। संपादन और रिकॉर्डिंग हवाए रुपेश कंवर पंचू भैया की और संयोजन और प्रस्तुति हवाए डॉक्टर सुप्रिया भारतीन के। तो ले सुनो ये किसानवाड़ी गांव में।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। मैं हूँ अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रुपेश कुमार कंवर। आज ये मंगलवार और हर मंगलवार के आपन के बीच मलाथन किसानवाड़ी गांव में। आज हमन गए रहें जांजगीर चांपा जिला के विकासखंड बमिंडी ग्राम पंचायत परसापाली। वहाँ हमन प्रगतिशील किसान भाई मन के गोड़ बात संगे संग विशेषज्ञ मन के गोड़ बात आपन के बीच में परोसत हमन किसानवाड़ी गांव के अंतर्गत। कार्यक्रम ला संयोजन प्रस्तुति करे हवाए डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और संपादन रिकॉर्डिंग हवाए अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रुपेश कुमार कंवर।
2: संगवारी स्थल रिकॉर्डिंग के अंतर्गत आज हमन ग्राम पंचायत परसापाली आए हैं और यहाँ हमारे बीच में पहुना हवाए विशेषज्ञ है वरिष्ठ प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर के डी महन। आप अपन के स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। राम राम, जय जोहार।
3: धन्यवाद। राम राम, जय जोहार पंचू भाई। और बड़ा अच्छा अवसर है कि आज ऐसी जगह में आज हम उपस्थित हन जहाँ पे प्रकृति से जुड़े बातचीत होते और आकाशवाणी और के जो किसानवाड़ी गांव में जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से बड़ा ही सौभाग्य के विषय है कि कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा आकाशवाणी के साथ किसान मन के साथ और गांव जमीन

0: आज की जो आवश्यकता है ओकर के बारे में बात करे के अवसर आप मन देता, हम मतलब मंच देता है, मैं आप मतलब बहुत धन्यवाद देता हूँ।
1: जिसे शुरुआती में अपन कहे कि प्राकृतिक जगह में बैठे होंगे
0: जी,
1: शुरुआत करा था वही मेले कि प्राकृतिक खेती होते का एला बताता आप।
0: प्रकृति और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, रहैया एक चीजें जो हमन दादा परदादा मन जो पहले करत रहीन, आज हमन वो रिवर्स गेयर लग गए है। अब आज जो जो दौड़ है, आज जो विषय है, आज जो हमला जो चुनौती, आज जो रिस्क हमला होते है, चाहे वो खाद के समस्या हो, पानी के समस्या हो, तापमान बढ़ा थे, हमार कर संसाधन रहते हुए भी हमन वाला उपयोग नहीं कर पाथन। एकर लिए हमला आज खुद के, आज जो हमारे संसाधन है, चाहे पानी के संसाधन ला, गाय गरुआ के संसाधन ला, गोबर खाद के ला, कैसे प्राकृतिक ढंग से उपयोग करना है, कैसे हमला अपन मिट्टी के स्वास्थ्य ला बचाना है, कैसे प्रकृति ला उकर से सीख लेते हुए आज हमला कैसे बात करना है विषय पर, आज हम प्राकृतिक खेती और जो जैविक खेती है जो आज की आवश्यकता है, यह बहुत आज गंभीर विषय ले थे, बहुत ही आवश्यकता होते आज के समय पर कि प्रकृति से जुड़े हुए ऐसे खेती के पद्धति ला हमला अपनाना पड़ी, जेकर माध्यम से आज हमला जो डीएपी की समस्या होते, आज हमला यूरिया के समस्या होते, आज किसान भाई मन परेशान हुए थे तो परेशान हुए के जरूरत नहीं है। प्रकृति में हमार ऐसे ऐसे तकनीक है, ऐसे ऐसे हमार करा खेती के तरीका ला हमन पुराना ढंग से अगर थोड़ा सा रिवर्स स्थिति में अगर आ जाबो तो हमार जो खर्चा है और हमारा जो रिस्क के जो सबसे बड़े समस्या है कि आज किसान मल्ला हमार बीच में ओकर उपाय, वो उपाय में जैसे आप मन प्राकृतिक खेती के बात करा, प्राकृतिक खेती आज हमन जो वही चीज है जो हमन पहले हमार दादा परदादा मन करत रहिन, लेकिन आज हमन थोड़ा सा हमन भुला गए रहिन, भुलाए के साथ साथ हमला एक जो है कर दुर्व्यवहार भी हमार अपन शरीर में भी, अपन प्रकृति में भी और मिट्टी में भी हमला देखे बर मिली से। तेकर बर चाहिए कि हमार प्रकृति से जो निकला थे, प्रकृति से चीज जैसे हमन गोबर है, गौमूत्र है, बेसन है, गुड़ है, अनेक प्रकार के जो हमारे बीच में उपलब्ध है, पत्ता है, कवच है, मल्चिंग है, पेड़ के पत्ता है, ओला हमन कैसे उपचारित, कैसे संसाधित करके खुद के बीज है, ओला हम ज्यादा समय तक कैसे हमन लंबा समय तक अकर प्रयोग करबो, एकर छोटे छोटे हमला प्रयोग करके मछली के खाद है, हड्डी के खाद है, कई प्रकार के हमारे जो फास्फोरस देते जेकर से नाइट्रोजन मिलते, जेकर से हमला सब पोषक तत्व मिलते, ओला ओकर थोड़ा से अगर हमन जानकारी लेके अपन खेती करबो तो हमार प्रकृति से हमला अतका संसाधन दी, अतका हमला ऊर्जा दी, अतका हमला फायदा दी, जेकर जो है लाभ लंबे समय तक हम ले सकते हैं। वही क्रम में जैसे आप मतलब बताना चाहता हूँ कि जो हमारे धरती के जो बनावट है, मिट्टी के बनावट है, वो निश्चित रूप से हमला प्रेरणा भी देती कि हमारे 17 से 18 प्रकार के जो पोषक तत्व है सबके अलग अलग संरचना है, सबके अलग अलग काम के अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग ओकर उपयोग है, वही चीज ला हमला प्राकृतिक ढंग से वाला तैयार करके, चाहे जीवामृत हो, बीजामृत हो, घन जीवामृत हो, और चाहे बीज के उपचार प्राकृतिक ढंग से कैसे करना है, ओकर बाद ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, दसपर्णी है, छोटे छोटे प्रयोग ला करते हुए हमला जो रासायनिक जो आज निर्भरता हमन बना डाल रहे हैं अपने ऊपर, रासायनिक खाद के ऊपर, रासायनिक दवा के ऊपर, ये ला कम करे के सबसे बढ़िया तरीका हमारा प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती है। तो पंचू भाई, मैं आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से किसान भाई मतलब बताना चाहता हूँ कि जो गौमूत्र है, गाय के गोबर है, बेसन है, हमारे करा ऐसे संसाधन है, चाहे आप मतलब छोटे छोटे जो हमला जानकारी है, जैसे जैसे घर के जो हमन चावल बनाथन ओकर पसिया ला कैसे उपयोग करना है, चोरहन पानी ला कैसे उपयोग करना है, ओला गुड़ के माध्यम से बढ़िया वेस्ट डिकम्पोजर और हल्का सा बेसन डाल के वेस्ट डिकम्पोजर एक हफ्ता 10-15 दिन में तैयार करके, कोई भी पैरा ला सड़ाना है, मुर्गी खाद ला ओकर टेम्परेचर ला कम करके सड़ाना है, ओला कैसे हम उपयोग में ला सकथन, इसे और हमन करीब जाए के प्रयास करथन। तो एकर जो है सबसे बढ़िया जो उदाहरण है, आज हमन गौ पालन ना निश्चित रूप से हमला आगे बढ़ाए पर पड़ी। किसान भाई मला निवेदन कर, गौ के गाय के जो हर एक चीज है जो हमारे खेती में काम आते, ओकर बर किसान भाई मला चाहिए कि गौ पालन ज्यादा बढ़ाए देना है, ओकर गौमूत्र के प्रयोग ला बढ़ावा देना है, देसी गाय के हर एक चीज है, कथे कि एक देसी गाय जो है लगभग 1 एकड़ खेती पर, खेती के साथ साथ अगर 1 साल से चालू करबो तो हम धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे जो है खेती ला जैविक और प्राकृतिक ढंग से अगर गौ आधारित खेती करबो तो हर हमार कई एकड़ खेती ला हमन 3 से 4 साल में हमन प्राकृतिक और जैविक ढंग से हमन परिवर्तित कर सकत हन, जो अतिरिक्त दबाव है वाला हमन कम कर सकत हन। और आवश्यकता भी है, सरकार के आह्वान भी है, सब वैज्ञानिक मन, सब विभाग के अधिकारी मन, माननीय जिलाधीश महोदय, कलेक्टर साहब, आदरणीय हमर महोबे सर भी विशेष रूप से हमारा कृषि विज्ञान केंद्र के जतका वैज्ञानिक मला बोलते कि हर जगह एकर प्रचार प्रसार करना है, कृषि विभाग के माध्यम से भी अनेक योजना चला जाते कि हरी खाद के प्रयोग पर अब ज्यादा से ज्यादा किसान मल्ला जागरूक करे बर है। तो मैं जागरूकता पर मैं निवेदन कर रहा कि जब भी आप मल्ला मौका लगी कृषि विज्ञान केंद्र आके देखिया,

0: पाली जैसे जो किसान काम करते हैं प्रकृति से जुड़े हैं, प्राकृतिक खेती लाए मन एक बार उदाहरण के रूप में देखे बार आप मन बिल्कुल आ सका था। और कृषि विज्ञान केंद्र में जतका वैज्ञानिक काम करते हैं अलग अलग क्षेत्र में काम करथन वो किसान मन के हित बर किसान मन नए नए तकनीक के बारे में जानकारी दे बर हमन प्रयास करथन जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, जय जोहार।
0: धन्यवाद, जय जोहार।
1: प्रगतिशील किसान उहिल कहे जाते जे हा एकेटक भुइयां में आनी मनी खेती सेनी करके दोहरल दोहरा आमदनी कमाते। राम राम,
2: जय जोहार, श्री राम राम राम राम। मोर नाम बद्री प्रसाद पटेल है, मैं परसापाली के रहैया हूँ, एकरा बमढ़ीडी हमारे विकास खंड है। पहली बार तो मैं आप मल्ला आकाशवाणी सहित और कृषि विभाग के सर मल्ला और प्रोफेसर मल्ला ला करके हम तो आत है नतका दिन 30 साल हो गए और 30 साल में ये भी ऐसे प्रकार से रही से जे बंजर से डरावना से जेमा हम समझेन कि कुछ पौधा लगा दिया जाए। थोड़े जमीन में ज्यादा प्रकार से पैसा अगर लेना है तो मैं जैसे आम है, नींबू है, नींबू लगा सकते हैं, नींबू लगा करके बढ़िया रोजगार पा सकते हैं। और कम खातू के नाम से भी कम खातू में यूरिया कम डालें, कम डाल करके अपन बढ़िया मंजा करके ये जो उपजाऊ जमीन ला बनाएं, गोबर खाद दे करके गैया पालन करें, गैया बछरू जो भी है गाय पालन करके ओमा के जो गोबर खाद है ओला उपयोग कर ही था आदमी है, यूरिया की ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, थोड़ा बहुत हो जाही। नैनो यूरिया सरकार अभी बिल्कुल माने अपन तरफ से दे थे, जो भी भाव में दे थे ओला लेकर के अपन फायदा कर सकते हैं, तो ये लाभ ला उठा सकते हैं और लाभ उठा करके बहुत सारा पैसा ये पौधा के बीच बीच में घलो कुछ लगा करके ओमन आगे भविष्य ला बढ़ा सकते हैं। पारे के माध्यम से मैं जतका भी संगवारी है मोर जतका भी और हमें किसान भाई है ते मतलब ये भी कहूँ मैं कि भाई ओमन गोबर खाद के उपयोग ज्यादा करें, ज्यादा यूरिया के उपयोग मत करें, डीएपी को उपयोग मत करें, मन नुकसान है। और ऐसे प्रकार से रही ता किसान ला हमला बढ़िया स्वस्थ भी रहो और पैसा भी मिल ही। बस किसान मतलब मैं यही भी मैं दे सकत हूँ, यही ला अपनाए ऐसे प्रकार से ढंग से रहे में फायदा है। गाय सब रखें तो ये ला मत त्यागे, ये गाय ला अपन घर में कम से कम एक ठ गाय दूध दही खाए भर मिल ही और स्वास्थ्य भी अच्छा रही।
1: आज कहीं कहीं देखो तो जैसे गरुआ पालन करते घर में गाय गरुआ के हाँ? तो कर से गोरस मिला था वे
2: दूध मिला थे हाँ?
1: और अगर हम खेती किसानी करते ना गौ पालन नहीं करते तो हमारे खेती किसानी अधूरा,
2: खेती किसानी अधूरा है जी, है ना भाई। एक लिए हमला गाय बछरू रखना जरूरी है, काबर गाय से गोरस मिल जाही, हमला भैंस बर रखबो तो गोबर के हमला मिली, गोबर खाद से धान हमार उपज होही और धान जब गोबर खाद से उपज होही तो हमार यूरिया जो है तैयार बहुत कम हो जाही, वो छूट जाही, धीरे धीरे छूटते छूटते हमार यूरिया की जो मात्रा है तैयार बिल्कुल माने बहुत कम मर रही जाही और गोबर खाद के हमला उत्पन्न ज्यादा हमला फायदा मिल जाही। तो ऐसे किसान भाई मतलब सब कोई करें और गरुआ के पालन गाय पालन है ये मतलब बिल्कुल माने अपन ले हर घर में गाय बछरू रखें ताकि किसान भाई मतलब सब फायदा होए और बहुत सुंदर रहें। जय जोहार, जय किसान।
1: राम राम
2: राम राम
1: राम राम
3: राम राम राम।
1: क्या नाम है आपके?
3: सविता पटेल मोर नाम है।
1: से बात करें किसान वाड़ी गाँव में अंतर्गत आपके गाँव में आए हैं, बहुत अच्छा लगा था वह आपके गाँव में लगभग सभी किसान भाई मन अभी बेरा में बारी बकरी लगा के दोहरा आमदनी कमाते, आप मन का साग भाजी लगाए हैं बताता?
3: हमन चेज भाजी लगाए हन, करमंदा भाजी लगाए हन, कांदा भाजी लगाए हन और रोपा भाजी लगाए हन और साथ साथ मशरूम के भी काम करथन।
1: अच्छा अच्छा।
3: तो अब हमन पहली जब रहें ना जब उद्यान विभाग से नहीं जुड़े रहें तो हमला कुछ भी चीज की जानकारी नहीं थी, हमला फायदा कम मिल पाए।
1: अच्छा अच्छा।
3: लेकिन जब से उद्यान विभाग से जब सर मैडम से हमन जुड़े, सर मैडम मन की हमला बताइस कि ऐसे काम करना है तो ऐसा ज्यादा फायदा मिली, ऐसे काम करना है तो ऐसा ज्यादा फायदा मिली, उसका दिन ले हमन भाजी पाला में ही बहुत सारा फायदा मिल जाते हैं। रोज के मतलब 500-1000 रुपया चेज भाजी ले थोड़ा सा ले जाथन, रोपा भाजी थोड़ा सा ले जाथन, तो ये सब चीज हमन बेच के रोज के 1000 रुपया हमला पैसा मिल जाते हैं। अब मशरूम की खेती भी करथन, मशरूम की खेती करथन तो ओमा भी जैसे भी चालू होते मशरूम हम रोज के 1000 रुपया 2000 रुपया 3000 कभी 5000 तक हमन बेच लेथन। और मशरूम की खेती में भी सर मैडम वन विधान विभाग से जुड़े हैं ता ओमा भी बहुत सहायता मदद करते और हमला सपोर्ट भी करते और कृषि के माध्यम हम बताते कि कैसे करना चाहिए।
1: एक माध्यम से आप कहीं कहीं से लाभ मिला थी दो। तो मुनगा की खेती कब लेकर था हुआ और मुनगा के बारे में बताता आप?
3: मुनगा की खेती हमारा 3 साल हो गए, पहली हर घर में मुनगा रहे तो हम लगे कि हम घर में मुनगा रहती, लेकिन मैं कृषि विज्ञान केंद्र में मैं जब ट्रेनिंग लेन ना तो कि मुनगा की भी अचार बनते ये सब चीज बताइस कि मुनगा भाजा की पापड़ बनते तो मतलब ज्यादा और लालसा लगीस कि महू हाँ घर में मुंगा भाजी रहतीस कि मोर घर में मुंगा भाजी मुंगा के पेड़ रहतीस तो फल भी मिलतीस।

0: भाजी भी मिलतीस ऐला मोला आने कर खरीदे बर नहीं लागे। खुद के घर में रही तो मुनगा के मैं अचार भी बना सकत हूँ और बेच भी सकत हूँ और पापड़ भी बना सकत हूँ मुनगा भाजी के। एकर लिए मन में लालसा है कि मैं मुनगा के पेड़ लगाऊं।
1: पहले बेरा आपके बेरा का परिवर्तन आज परिवार में बताता।
0: परिवार चलाए बा, लइका मन के खर्चा उठाए बा, कुछ चीज बा मतलब हाथ में पैसा नहीं रहे। लेकिन जब ले हमन उद्यान विभाग से हमन के जुड़े हन ओकर बाद में हमन के हाथ में चार पैसा हाथ में हमेशा रहे रहते। जब तक नौकरी के हाथ में पैसा नहीं होता तक किसान आदमी के हाथ में पैसा रहते।
1: बढ़िया जानकारी बताए कर बात आप बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय जोहर।
0: राम राम जय जोहर।
1: देश के विकास के बात करी संगवारी तो कहीं न कहीं अगर हम अच्छा शिक्षा नहीं पाबो तब तक हम अपन देश के विकास या समाज के विकास या परिवार के विकास बिल्कुल नहीं कर पान। काबर अभी के बेरा में शिक्षा सबसे ज्यादा आवश्यक और शिक्षा के उद्देश्य नहीं रहे संगवारी की हम पढ़ लिख गए तो केवल हम नौकरी के पीछू भागी। शिक्षा के उद्देश्य होते कि हम गांव के विकास और अपने स्वयं के विकास कौन प्रकार से करें। आज हमारे बीच में गांव के गुरुजी हवे और इनका अगर गोड़ बात करबो तो शिक्षा के जो धारा हवे ग्राम पंचायत परसापाली में कौन प्रकार से बहावत हवे तेला। राम राम
2: जय जोहार।
1: बात करी शिक्षा के आज कहीं कहीं शिक्षा के माध्यम से आज हमारे गांव की जो विकास है सबसे पहली प्राथमिकता माने जाते हैं। गांव में कौन प्रकार से आप शिक्षा के जो विकास के धारा बहा था इसलिए बताता।
2: मैं यहां प्राथमिक शाला में 2021 ले पदस्थ हूं और यहां मतलब विद्यार्थी बहुत ज्यादा है मतलब प्राइवेट में जाके ना सरकारी में ही ज्यादा एडमिशन लेते हैं। तो इस सत्र कुल 72 बच्चे रहीन, पिछले साल तो 84 रहीन। तो ये मतलब पढ़ा के काम करता हूँ।
1: गांव के जनसंख्या हिसाब से लेकिन की जनसंख्या ज्यादा है कि दो?
2: हाँ ये जनसंख्या के हिसाब में मतलब बच्चा मन के बहुत जनसंख्या है।
1: बात करिए आज हम कहीं कहीं आप एक किसान परिवार से हवा आज हम क्या करते हैं फसल के लालच मानी बनी के रासायनिक खातू मटी छिड़काव करते हैं। किसान भाई मतलब कौन प्रकार से आप संदेशा देना चाहते जिस प्रकार से अपन लेकिन मतलब संदेशा देता कि शिक्षा हमारे जीवन में कौन प्रकार से हमारे उजाला लाते हैं तो उसने किसान भाई मतलब का संदेशा देना चाहता कि हमन रासायनिक खातू रासायनिक कीटनाशक छोड़ के जैविक खेती डहर चली एला बताता।
2: जैसे कि समय के साथ साथ नया नया तकनीक प्रयोग किया जाते नया नया रसायन प्रयोग किया जाते ये सब कुछ समय के लिए तो फायदा मिल सकते है लेकिन एकर लिए क्या है जो है एकर परिणाम जो है ये पर्यावरण के लिए अच्छा ना होते ये मिट्टी प्रभावित होते जमीन प्रभावित होते। तो रासायनिक चीज के प्रयोग कम से कम किया जाए जैविक खाद के प्रयोग बहुत ज्यादा करना चाहिए। पहले भी जैसे गोबर ओबर खाद से ही जब खेती वेती किया जाती है तो फसल शुद्ध होती रही। पहले के जो खान पान रही सो मतलब शुद्ध रही मिलावट विलावट कुछ नहीं रही। मैंने पहले के इंसान मन भी ज्यादा दिन तक जीवित रहे अब अभी क्या होते कि इंसान के ये जीवन काल भी कम हो जाते। ये सब कारण क्या है कि यही सब रासायनिक प्रभाव कीटनाशक वगैरह के प्रभाव से। तो मैं किसान मतलब निवेदन करना चाहता हूँ कि रासायनिक चीज मन के कम प्रयोग करें जैविक खाद के ज्यादा प्रयोग करें हर्बल युक्त ज्यादा प्रयोग करें।
1: इतना बढ़िया जानकारी बताए कर बार आप बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय जोहर।
2: जय जोहर धन्यवाद।
1: राम राम।
3: राम राम।
1: क्या नाम है आपका?
3: पद्मा भाई पटेल।
1: बात करी अभी बेरा में हमारे किसान भाई मनानी बनी खेती से निकल के दोहरा आमदनी कमाते का कबूतर काम करा था अभी बेरा में बताता।
3: अभी हमन बारी उरी के बस काम करा था भिंडी लगा था डोरका तरोई लगा था और मिर्ची लगाए हैं।
1: कते के भुइया में लगाए हैं?
3: 40 हो।
1: किसान भाई मन अगर मिर्ची की खेती करना चाहता है कैसन है भुइया में मिर्चा खेती करे बताता।
3: थोड़ा सा कन्हरा भुइया रहते ना वो वाला में ज्यादा होते।
1: तैयारी करी भुइया के
3: जोतवा देवा तेल जोतवा के बढ़िया डुहरू परिया बनवा देवा जो ढाल अभी बरसात के समय में जो पानी मत मार है पानी अच्छा से जो नाली बना देवा तेल निकल जाए।
1: ये प्रकार से हमन उकर खेती कर सकते
3: से हमन खेती करता।
1: बाजार हाट कहाँ जाता बेचे पर?
3: बस ये आसपास जो सारा गांव है बारा द्वार है चोरिया है। हाँ बस।
1: राम राम।
3: राम राम।
1: का नाम है आपके?
3: अनु पटेल।
1: अभी बूता काम करा थे बताता आप।
3: हमन आज खेती बाड़ी करा था भिंडी बोया है गर्मी में और बैंगन भाटा बो रहे हैं उजार के है मतलब और अजीब मुरई लगाए हैं और भाटा तरह दे हैं और डोड़का तरोई लगे झुंगा करेला।
1: खेती से बूता काम करत हन और हमर घर में अगर गाय गरु नहीं रखे तो हमर खेती से बूता काम अधूरा है। कते कन घर में गाय गरु रखे हवे बताता आप।
3: हमन घर 5 गरुआ है।
1: का फायदा होते गाय गरु रखे एकर से
3: दूध दही मिलते और गोबर खाद बनते जो खेत बाड़ी में काम आते खेत में लगाता बाड़ी में लगाता।
1: इतना बड़ी जानकारी बताए कर बार आपन बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय जोहर।
4: राम राम।
2: राम राम।
1: का नाम है आपका?
2: रमा शंकर पटेल।
1: खेती किसानी की बात करी जब तक हमारे घर में 2-4 गाय गरु नहीं रही तब तक हमारे खेती किसानी बूता काम नहीं हो पाए। नहीं घर में कते गाय गरु रखे हुआ बताता।
2: गरुआ तो मैं 2 गाय है और 2 मतलब बच्चे है और दोनों दूध देते। अब हमार करा खाद नहीं रही गरुआ नहीं रही तो खाद कहाँ से पैदा हुई। गाय भैंस रखबो तो खाद बनाबो तब तो बनाबो गोबर मिले तो खाद बनाबो तब जब तक खाद हमारे

0: करनी बनी तो अभी काला खाद है, जैसे अभी खेती मान के चला धान बोआ थन तो एक एकड़ तीन बोरा यूरिया डारा थन, दो बोरा डीएपी डारा थन, दो बोरा सुपर फास डारा थन, तो हमन धान थोड़े खावा थन, चावल थोड़े खाते, हमन खाली खातु ल खावा थन। ओकर लिए हमारे का होते 10 प्रकार के शरीर में बीमारी, कहूँ ला गैस का प्रॉब्लम है, तो कहूँ ला हार्ट का प्रॉब्लम है, कहूँ ला किडनी का प्रॉब्लम है, कहूँ ला बबा सिर है, और कहूँ ला मान के चले कि मतलब अनेक प्रकार के पूरा शुद्ध नुकसान है। आज हमारे बाबा पुरखा मन पहले एक एकड़ मान के चले 5 बोरा पातरी से का रासायनिक गोबर खाद से अब खेबूघान खातु माटे नहीं चले, तो वो मन की जिंदगी 100 साल 105 साल जिए है, और आजकल हमार 50 साल की उम्र नहीं है, का बा खातु में खाते हैं तो कहाँ ले जीबो, और जब खातु ला खाबो तो हमारी उम्र तो घट बेच कर ही, और उम्र घटिस मान के चला तक लाइफ खत्म, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमन गाय बछरू ला पाली और खाद के तैयारी करी और बाड़ी में करी, कब 2 ट्रैक्टर एक एकड़ में मान लीजिए ट्रैक्टर में फैला देते हैं खाद ला, तो धान हमारे बढ़िया हुई वो मन जे जगह में 2-3 बोरा डाल थे ते जगह यूरिया डीएपी ला हमन आधा बोरा डाल बो, जेमा कि जैसे मैं सुनसुने भाजी बोथ हूँ एमा गोबर ला फेंकथो मैं, हमारे गाँव में लगाते सुनसुने भाजी वो मन हफ्ता में 2 बार डालते यूरिया एक टोरान में, मैं मात्र एक कम में 5 किलो डालता हूँ 40 डिसमिल में, और 20 किलो डालते मोर कर भाजी के लेवाल घोल मस्त रहते, कब भाजी में स्वाद है,
1: मतलब एक प्रकार के ही तो मतलब अपन जैविक खेती ज्यादा महत्व देता
0: है। हाँ, जैविक खाद आज के डेट में सबसे बढ़िया है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, जय जो
0: राम राम, जय जो।
2: जांगीर चांपा जिला के कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे जी मन के बीच में होय गोड़ बात ला आवा हमन सुनत हम।
3: आकाशवाणी को लगभग 90 वर्ष हो रहे हैं और मैं सबसे पहले तो आकाशवाणी से जुड़े सभी जितने भी लोग हैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और बरसों से आकाशवाणी हमारे जितने कृषक साथी हैं, कृषक भाई हैं, उनको किसी न किसी तरीके से उनसे जुड़ा हुआ रहा है, चाहे खेती किसानी का समय हो, फर्टिलाइजर से संबंधित जानकारी देना हो, कीटनाशकों का प्रयोग करना हो, बारिश का मौसम का अनुमान लगाना हो। एक समय था जब हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के कृषक हैं आकाशवाणी पर ही निर्भर किया करते थे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सूचना का साधन हमारे पास आकाशवाणी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से लोगों को प्राप्त होता रहा है। और जांजगीर ज़िले के संबंध में बताना चाहूँगा, अभी भी यहाँ के कृषक जब शाम को बैठते हैं तो आपके जो कार्यक्रम आते हैं कृषि से संबंधित उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं और उस पर चर्चा भी होती है। विभिन्न कार्यक्रम में मैं जो अटेंड किया तो लोगों को पता है, और आप सभी जानते हैं कि जांजगीर ज़िला एक कृषि प्रधान जिला रहा है और यहाँ पे 89 से 90% इरीगेटेड एरिया है। मुख्य फसल यहाँ पर धान है, धान के अतिरिक्त यहाँ के कृषक आज की स्थिति में सुगंधित धान का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें किसी भी तरह के उर्वरक जो केमिकल उर्वरक हैं उसका प्रयोग ना हो, और साथ में कीटनाशक ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जो खासकर जैविक तरीके से बनाई गई हो, तो इसमें काफ़ी उनको कीमत भी अच्छी मिल रही है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर में भी आम सब्जी उत्पादक किसान हैं जो बहुत अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग में अब धीरे धीरे समय आ रहा है कि क्योंकि हमारी सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट है, यदि मान लो हमारी जो मिट्टी है उसकी क्षमता घटेगी तो कृषक का उत्पादन कम होगा, तो धीरे धीरे लोगों को इसमें जाने की आवश्यकता है। अपने कुछ पोर्शन में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की ऐसी फसलें लगाएं जिसको जैविक तरीके से जिसमें उत्पादन हो, और आप सभी जानते हैं कि आजकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कितना करना है वो बहुत तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो आपकी आकाशवाणी और कृषक जो हमारे एक्सटेंशन ऑफिसर है वो उनको बताते हैं। किंतु फिर भी मैं चाहूँगा कि ऐसे किसान जो जांजगीर ज़िले में इस तरह के जैविक उत्पादों के माध्यम से अपनी कृषि करना चाहते हैं तो शासन की विभिन्न योजनाओं का उनमें लाभ दिया जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे यहाँ हैं जिसमें लोग कृषक इसमें जुड़ रहे हैं और अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। मैं सभी को शुभकामना देता हूँ और आकाशवाणी को भी शुभकामना देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजित करके किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, और इतने वर्षों तक 90 वर्षों तक किसानों को अपनी राय और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उनको क्षमता विकास करने की जो कार्यक्रम आयोजित करते रहे उसके लिए धन्यवाद भी देंगे। इसी तारतम्य में जो कृषकों के साथ आकाशवाणी ने कार्यक्रम आयोजित किया था परसापाली में वो बहुत अच्छा और उत्कृष्ट कार्यक्रम रहा है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे ज़िले में इस तरह के कार्यक्रम और आयोजित हो और कृषकों को इसका लाभ मिले।
2: संगवारी हो अवैया बेरमा फिर नवा जगह में जाबो, नवा किसान भाई मन के अनुभव ला आपन के बीच में परोसबो। अब एक कार्यक्रम के संयोजन प्रस्तुति रही हवाए डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के, संपादन और रिकॉर्डिंग रही हवाए आपन के संगवारी पंचू भाई रूपेश कुमार कंवर के। तो यही कार्यक्रम के संग पंचू भिला दो विदा, जय जोहार, राम राम।

0: अभी सुने स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम किसानवाड़ी गांव में ग्राम परसापाली विकास खंड बमनीडी जिला जांजगीर चापा के किसान मनसो ये गोट बात सुने संपादन रिकॉर्डिंग रही सब रूपेश कंवर पंचू भैया के और संयोजन प्रस्तुति रही सब डॉक्टर सुप्रिया भारतीन के। अब आवाओ प्रोमो एफसीटी ला सुन ले जाए।
1: अरे अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: अरे सुन तो।
5: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
4: किसको?
5: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
4: अच्छा ये बात है?
5: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
4: अब तो झट से बात हो जाती है।
5: ऐसा क्या?
4: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
5: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
4: हाँ।
5: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
6: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

0: आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान मदद में जारी।
1: तो होइस किसानवाड़ी कार्यक्रम जाके बे रहोगे मंगू भैया दो आज्ञा। राम राम, जय जोहार।

कार्यक्रम किसान वाणी अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

कार्यक्रम महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी प्रभा कश्यप का प्यार भरा नमस्कार, जय जोहार। सखियों, आप सभी कैसी हैं? हमारी आशा तो यही है कि हमारी सभी सखियां स्वस्थ और मनमस्त होंगी और अभी शाम के वक्त दिनचर्या के कार्यों से थोड़ा रिलैक्स होकर आकाशवाणी के कार्यक्रमों का आनंद ले रही होंगी। सखियों, क्यों ना आज हम बात करें अपने बचपन की उन सुनहरी यादों की।

0: जब गर्मियों की छुट्टियों में हम खूब खेला करती थी अपनी सखियों के साथ। फिर खेल चाहे खो खो हो, गिल्ली डंडा हो, या रस्सी कूद, फुगड़ी या लंगड़ी जैसे कई खेल हम खेला करते थे। खेल न केवल मनोरंजन के साधन थे बल्कि हमें स्वस्थ, सक्रिय और मिलजुल कर रहने की सीख भी देते थे। और सखियों, जब हम बातें बचपन की करें तो हमारा साइकिल चलाने का जिक्र कैसे छूट सकता है। साइकिल चलाना सीखना हम सभी के लिए एक खास अनुभव रहा है। कभी गिरना, कभी संभलना और फिर आत्मविश्वास के साथ साइकिल चलाना। सखियों, जीवन का पल ऐसा ही होता है। कभी हमें असफलता मिलती है, हम फिर से संभलते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। अच्छा सखियों, क्या आपने कभी साइकिल रेस की है अपनी सखियों के साथ? हमने तो स्कूल से वापस आते हो वक्त हमेशा तो साइकिल रेस करते हुए बहुत मजा किया है। ये यादें आज भी चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ जाती हैं। और सखियों, मजे के साथ ही हमारी शारीरिक गतिविधियां भी हो जाती थी जिससे शरीर फिट और स्वस्थ रहता था। सखियों, साइकिल चलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत लाभदायक है। पहला तो सखियों, साइकिल सरल, सस्ते और पर्यावरण अनुकूल साधन है जो न केवल हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। साइकिल चलाना एक बेहतरीन व्यायाम है। नियमित रूप से साइकिल चलाने से रक्त संचार बेहतर होता है, शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वजन भी नियंत्रित होता है और हम कई प्रकार की बीमारियों से भी दूर रहते हैं। और सखियों, साइकिल केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता और ईंधन की भी बचत होती है, इसलिए साइकिल को ग्रीन ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। और सखियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और सखियों, इस दिवस को मनाने का यही उद्देश्य है कि हम सभी साइकिल के महत्व को समझे, जाने और इसका उपयोग करें ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके और पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में अपना कर्तव्य निभा सके। तो सखियों, आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान में रखकर थोड़ी साइकिल जरूर चलाएं। साथ ही कहीं आसपास जाना हो तो सरल सुलभ साधन साइकिल का उपयोग करें और अपने बच्चों को भी पारंपरिक खेलों और साइकिल चलाने के लिए उत्साहित जरूर करें और उनके साथ भी आप भी खेलें, साइकिल चलाएं ताकि वे स्वस्थ खुश रह सके और पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में का प्रयास कर सके। अब सखियों, आइए सुनते हैं कुछ सूचनाओं को।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सखियो, अब आइए चलते हैं आज के क्रम महिला मंडली की ओर। सखियो, जब महिलाएं एकजुट होकर आगे बढ़ती हैं तो न केवल उनका जीवन बदलता है बल्कि पूरे परिवार और समाज की तस्वीर भी बदल जाती है। और सखियो, आज ऐसे ही सखियों से हम बातें करेंगे जिन्होंने स्वसहायता समूह के माध्यम से एक साथ जुड़कर कार्य कर अपने जीवन को नई दिशा दे रही हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं संपूर्ण स्वाद स्वसहायता समूह की बहनें श्रीमती मोहिनी गौराहा, श्रीमती सुलेखा तिवारी और श्रीमती राही दुबे जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
6: नमस्कार।
0: सबसे पहले आप सभी हमारी बहनों को, हमारी श्रोता सखियों को अपना और अपने समूह का परिचय दे देंगे।
7: नमस्कार सभी श्रोता बहनों को, मेरा प्यार और बड़ों को प्रणाम। मैं सुलेखा तिवारी बिलासपुर बंधवापारा में रहती हूँ और हमारे समूह का नाम सस्वाद है, संपूर्ण स्वाद, और हम सब बहनें जुड़ी हुई हैं उनसे।
8: मैं मिसेस मोहिनी गौराहा, मैं रतनपुर के पास छोटा सा गांव है सिंगरी, मैं वहां से बिलोंग करती हूं। हमारा जो समूह है 25-30 बहनें हम इस समूह में काम कर रही हैं और हमारे समूह का गठन जो है 2016 से रजिस्टर्ड हुआ है और हम सभी बहनें यहां पे एक साथ आगे मिलकर आगे बढ़ रही हैं ना।
9: मेरा नाम राही दुबे।
0: जैसे कि स्वसहायता जो समूह है उसका नाम संपूर्ण स्वाद है, तो आप लोगों ने यह नाम किस उद्देश्य से रखा संपूर्ण स्वाद?
8: मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो स्वस्वाद समूह है संपूर्ण

0: स्वाद है। हम लोग सभी बहनें अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं, अलग अलग जगहों से आती हैं, अलग अलग वातावरण, अलग अलग पहनावा, अलग अलग बोलचाल और बहुत सारे परिवर्तन रहते हैं। उसमें हम साथ मिलकर, जैसे एक खट्टा मीठा आम का अचार होता है, उसका स्वाद हमको बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत प्रकार के मसाले मिले होते हैं, उसी तरीके से हमारी बहनों का जो संगठन है अलग अलग विचारों का, इसी उद्देश्य से हमने हमारा जो समूह का नाम है वो संपूर्ण स्वाद रखा है।
1: हम आप लोगों से ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों को जो समूह बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिले कि आपने सोचा कि अब हमें एक समूह बनाना है और हमें बिल्कुल आगे बढ़ना है, इस बारे में आप बताएं।
0: हम सभी बहनें अचानक ऐसी बैठे थे, फिर मन में एक विचार आया कि हम तो घर का काम करते ही हैं, क्यों ना हम एक और ऐसा काम करें, कुछ गठन करें और हम महिलाओं को साथ मिलकर खुद भी आगे बढ़ें और लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करें। इस विचार से हमने एक समूह का गठन बनाया जिसका नाम संपूर्ण स्वाद।
1: तो उसकी शुरुआत कैसे की आपने वो बताएं।
2: शुरुआत में हमने जैसे बड़ी बिजौरी जो सूखे आइटम है ये सब बनाया।

0: साथ मिलकर खुद भी आगे बढ़ें और लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करें। इस विचार से हमने एक समूह का गठन बनाया जिसका नाम संपूर्ण स्वाद।
1: तो उसकी शुरुआत कैसे की आपने वो बताएं।
2: शुरुआत में हमने जैसे बड़ी बिजौरी जो सूखे आइटम है ये सब बनाया। फिर और बहनों ने अपना अपना सजेशन दिया कि मैं ये अच्छा बनाती हूँ, मैं वो अच्छा बनाती हूँ, तो फिर उसको हम लोग आगे बढ़ाते गए। तो इस आज के समय में पूरे हर प्रकार के उसमें व्यंजन बनते हैं, जैसे बड़ी है, बिजौरी है, अचार है, पापड़ है, और जैसे खाने का अरसा है, जितने भी छत्तीसगढ़ी व्यंजन है या बाहरी भी, वो सब हम लोग बनाते हैं अलग अलग बहनों के द्वारा। किसी को कुछ अच्छा आता है, किसी को कुछ अच्छा आता है, तो सबसे मिलजुल कर ये सब करते हैं।
1: और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज आप समूह के द्वारा कौन कौन सा कार्य व्यवसाय आप कर रही हैं।
3: आज हमारे समूह में तो अनेकों व्यवसाय हैं जिन्हें आज सभी महिलाएं मिलकर हम कर रही हैं। सिलाई का है, कढ़ाई का है, जैसे कि बहन ने हमारी बताई है कि पापड़, बिजौरी, अचार का है, और रागी का है, और ज्वार का है, कोदो का है, जिसको हम आसपास के एरिया में पता करते हैं कि कहाँ हमें अच्छा सा कोदो का चावल मिलेगा, जिसे हम लाकर उसकी साफ सफाई करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, फिर उसे हम ऑनलाइन से लेकर घर बैठे सेवा से लेकर हम घर पहुंच सेवा तक देते हैं। और सभी बहनें उसका आज बहुत अच्छी से फायदा उठा रही हैं, और घर से भी आकर लेते हैं, और मार्केट में भी इसकी बिक्री होती है, और आसपास के एरिया में भी हम इसको भेजते हैं। और रागी और ज्वार का है, कोदो का है, आटा भी बनाते हैं उसका, चावल भी बनाते हैं, और उसका एक दलिया भी बनाते हैं। ये सब तरह से बनाते हैं हम लोग।
0: जैसे मिलेट को हम पोहा की तरह यूज कर सकते हैं। पोहा में जैसे हम वेजिटेबल मिक्स करके बनाते हैं, जैसे ओट्स का होता है, उसी तरीके से हम उसको बनाकर हम उसको यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिट होता है, और डायबिटीज के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है।
3: रोटी भी बनाते हैं, कॉर्न भी बनाते हैं, आटा भी बेचते हैं, ज्वार का ब्रेड भी बनता है, बिस्किट भी बनता है। ऐसे अनेक बहुत फायदे हैं जो आज हमारी सभी बहनें मिलकर ये एकजुट होकर ये काम कर रही हैं आगे बढ़कर।
2: और इसके अलावा हम लोग सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का, ये सब का भी काम करते हैं। और जो इच्छुक महिलाएं हैं या बच्चियां हैं जो सीखना चाहती हैं, या जिनके पास साधन नहीं है, पैसे नहीं है, तो उनको हम लोग निःशुल्क इसका प्रशिक्षण देते हैं और उसको व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे स्लम एरिया है या ऐसी बच्चियां हैं जो सीखना तो चाहती हैं पर उनके पास साधन नहीं है सीखने का, तो उनको हम लोग फ्री सिखाते हैं और उनको कहते हैं कि आप लोग ये करके अपने घर का आर्थिक स्थिति सुधारिए या अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, प्रेरित भी करते हैं उनको।
1: और अगर आप अपने कुछ अनुभव हमसे साझा करना चाहेंगे।
2: मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैं शुरू में स्लम एरिया में जाती थी बच्चियों को सिखाने के लिए कुछ, तो उन लोग आगे नहीं आती थी। फिर दो चार बच्चियां इंटरेस्टेड रहती थी पर थोड़ा सा डरती थी, पर मैं उनको बुलाई, सिखाई, तो आज वो लोग अच्छे से सीख के और उसको व्यवसाय के रूप में कर रही हैं। तो पहले उनके पास बिल्कुल साधन नहीं था, एकदम गरीब थे, तो वो लोग ये सब काम करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधार के और अच्छे से रह रही हैं। तो उनको देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो मैंने जो किया तो कुछ तो मेरी मेहनत सफल हुई, और वो लोग भी बहुत खुश होती हैं मुझे देख कर कि दीदी आपने सिखाया, तो देखिए आज हम लोग इसे व्यवसाय के रूप में अपना के अपने आप को इंडिपेंडेंट भी बनाए हैं और अपने घर की आर्थिक स्थिति भी सुधारे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है,
1: बहुत ही अच्छा प्रयास है।
2: जी जी।
1: और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब आप लोगों ने समूह चलाना चालू किया तो उस समय आप लोगों ने क्या क्या चुनौतियों का सामना किया होगा, उसका समाधान कैसे किया आप बताएं।
0: सबसे पहले तो चुनौती घर से ही शुरू होती है कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे, कैसे काम कर पाएंगे, घर से ही हमारी शुरुआत पहले होती है। फिर लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, फिर अगर सामान को कैसे बाहर भिजवाना है, वहां से कैसे उसको करना है, ये सारी चीजें होती है। फिर उसके बाद उसको सामान को बेचवाना भी है, ये सब तो आया ही चुनौती सामने में।
1: हम आप लोग से ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो कार्य चालू किया है वो बिल्कुल अब अच्छा से चलने लगा है, उसमें बहुत सारी महिलाएं बहनें जुड़ी हुई हैं, तो इसके जुड़ने के बाद, ये कार्य करने के बाद आप लोग के जीवन में क्या बदलाव आया है आप बताएं।
0: सबसे पहले बदलाव तो यह है कि खुद में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हुई है, और हम उन महिलाओं को जो आत्मविश्वास में कम होते थे उनको हमने बढ़ाने का प्रयास किया और उनका भी आत्मविश्वास हमने बढ़ाया,
2: और आर्थिक सहयोग भी दिए घर में। जैसे पहले लगता था कि एक ही है उसी में ही सब मैनेज करना, अब लगता हम भी कुछ सहयोग कर रहे हैं, और अपनी कुछ छोटी मोटी इच्छाएं जो लगता था कि जाने दो जाने, तो वो हम लोग आज खुल के पूरा कर पा रहे हैं। अपने बच्चों को भी जैसे प्रेरित करें, उनको भी लगता है कि हाँ हमारी माँ कुछ कर रही है, तो उनको भी लगता है कि हाँ हमको भी करना चाहिए, आर्थिक सहयोग देना चाहिए, तो ये सब फायदा मिला हमको।
3: महिलाओं को भी इसमें से बहुत फायदा मिली है और आप महिलाएं अपने घर की भी ताकत बनी हुई, खर्च चलाने में भी आज कदम से कदम मिलाकर अपने घर का खर्च भी चला रही हैं और आज अपने घर कदम से कदम मिलाकर महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं और महिलाओं को इसमें चार पैसा फायदा भी हो रहा है।

0: जी बिल्कुल, वाकई में आत्मविश्वास से बढ़ना और आत्मनिर्भर बनना दोनों एक महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा जज्बा है। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो इस समूह से जुड़ना चाहती हैं या समूह बनाकर आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: उन्हें यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आगे बढ़िए, बाहर घर से बाहर निकलिए और जो आप में हुनर है उसे आप लोग व्यवसाय के रूप में आपको आगे बढ़ाइए। लोग 10 लोग का समूह बनाइए और जिसको जो आता है, जो जिसमें रुचि है, उसका ही व्यवसाय के रूप में आप लोग उसको आगे करिए।
2: संगठन में शक्ति है, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी अगर एक संगठन होता है तो वो लोगों को भी आगे बढ़ाता है और खुद भी आगे बढ़ता है। तो संगठन मजबूत बनाइए, आगे बढ़िए।
3: महिलाएं आज आत्मनिर्भर बन रही है इस समूह की माध्यम से, यही सबसे बड़ी बात है।
0: और हम भी बिल्कुल कहेंगे कि जो महिलाएं चाहती हैं कि हम घर का भी कार्य करें और हम कुछ करना भी चाहते हैं, तो बिल्कुल वो एक स्वसहायता समूह बनाकर 10 बहनें महिलाएं इकट्ठा होकर वो अपने कार्य को बिल्कुल आगे बढ़ा सकती हैं और अपना आत्मनिर्भर भी बनेंगी और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
3: बिल्कुल।
0: और हम ये भी जानना चाहेंगे आप लोगों से कि भविष्य में समूह को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोग की क्या योजनाएं हैं, आप बताएं।
2: अभी हमारी यही योजना है कि आज के डेट में आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया जो है, और सोशल मीडिया में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बहनों तक पहुंच सकते हैं और उनको ये योगदान दे सकते हैं ताकि वो अपना स्वयं का एक व्यवसाय करके वो आगे बढ़ सके।
3: समूह को और आगे बढ़ाना, सभी महिलाओं को एकत्रित करना, जनसंपर्क करना और सभी महिलाओं को साथ में लेकर चलना और कदम से कदम एक दूसरे का ताकत बनकर समूह के लिए आगे काम करें, यही हम सभी महिलाओं से चाहते हैं। लोगों तक पहुंचने के लिए आकाशवाणी के माध्यम से आज हमारा जनसंपर्क हुआ है ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंचे और सभी को इस स्व सहायता समूह से फायदा मिले, जिसके लिए मैं आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसमें हम लोगों को आने का अवसर मिला और आज जन जन तक हमारी बातें पहुँचेगी और सभी महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा, जिसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप लोगों ने इतना समय दिया और अपने अनुभव हमसे साझा किए हैं, और आप चलते चलते हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: सब सहेलियों को यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग अपना आत्मनिर्भर बनिए, साथ साथ पर्यावरण के लिए भी आप लोग कुछ काम कीजिए और आसपास की सफाई रखिए और लोगों को प्रेरित भी कीजिए। और मैं अपनी बहनों के लिए कुछ 2 शब्द बोलना चाहूंगी कि बहनों का समूह है, मिलकर करते काम, मेहनत से सस्ता सारा उनका सुंदर धाम, एकता की डोरी में बंधे सभी के हाथ, हंसी खुशी से चल पड़े लेकर नए प्रभात, कोई सीखे कोई सिखाए बढ़ता जाएगा, संगठन की शक्ति से मिलता सबको मान, स्वावलंबन की राह पर बढ़ते उनके कदम, मेहनत साहस और लगन से पाते नए मकान। बहनों का यह समूह है प्रेरणा का नाम, मिलजुल कर जो आगे बढ़े रोशन करे जहान, मेरी सभी बहनों को समर्पित है ये।
2: मैं जाते जाते सखियों को बस यही संदेश देना चाहूंगी, कुछ संगठन में शक्ति हो तो इस चीज को सभी बहनें समझे और आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़े।
0: मोहिनी जी, सुलेखा जी और राही जी, आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपने कार्य से, अपने अनुभव हमसे साझा किए और समूह के महत्व के बारे में जानकारी दी, हमारी सखियों को बताया कि किस प्रकार से वो रुचि अनुसार अपना कार्य करके आगे बढ़ सकती हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: सखियों, अभी आप सुन रही थी क्रम महिला मंडली में संपूर्ण स्वाद स्व सहायता समूह की महिला बहन सुलेखा तिवारी, मोहनी गौराहा और राही दुबे को।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: सगियो, अब आप अपने मनपसंद गीत फरमाइशी गीत सुन सकते हैं। फरमाइशी गीत सुनने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है mahilasabha@gmail.com। कॉम पर सखियो, अब हम आपको ले चलते हैं संगीत की मधुर बेला में और सुनवाते हैं जब प्यार किसी से होता है फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है जतिन ललित का और स्वर है अलका याग्निक और कुमार सानू के।

सखियो, अभी मैं आकाशवाणी आ रही थी तो तेज हवाओं के साथ पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ रही थी, कितना सुकून लग रहा था। पर सखियो, अभी मौसम जरूर बदला है, परंतु अभी ग्रीष्म ऋतु ही चल रही है। दोपहर को तेज धूप पर अभी ठंडक है, लेकिन सखियो इस मौसम में भी हमें अपना और अपनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने का बहुत बहुत ही जरूरी है। और गर्मी के इस मौसम में हम कैसे अपने आप को गर्मी से बचा कर रख सकते हैं, हमें बता रही

0: हमारी सखी चित्रा पांडे जी।
1: नमस्कार साथियों, मैं चित्रा पांडे। कैसे हैं आप सभी? इस गर्मी में अपना ध्यान तो रख रहे हैं ना, कहीं ऐसे तो नहीं सोच रहे हैं कि मौसम तो अब चेंज हो गया है तो हमें अपना ध्यान नहीं रखना है? तो आप गलत हैं, अभी भी गर्मी है, लू का प्रकोप है, हमें अपना और खासकर अपने बच्चों का, बुजुर्गों का ध्यान रखना है। तो आप सभी समय समय पे पानी पीते रहें, पूरा ध्यान रखें, पानी की कमी ना हो, कोशिश करें कि इस धूप में बाहर ना निकले, अगर जाना पड़ रहा है तो आप सूती के कपड़े पहने, सूती के कपड़े से अपने फेस को अच्छे से कवर करें, चश्मा लगा के टोपी लगा के धूप में निकले ताकि सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारी बॉडी पे इफेक्ट ना करे। अभी भी लू लग रही है, गर्मी लग रही है, इस लू से बचने के लिए आप घर में पना बना के रख लें, आम का पना पीते रहें, नींबू पानी, सत्तू का शरबत, दही, छाछ, लस्सी, नारियल पानी, ये सब का सेवन करते रहें, बेल का शरबत पिए क्योंकि बेल जो है शरीर को बहुत ही ठंडा रखता है। अगर आपको लगता है कि लू लग गई है तो आप मेडिकल से कोई भी दवा लेके ना खाए साथियों, आप डॉक्टरी सलाह से ही मेडिसिन ले। कोशिश करें कि आप कम से कम धूप में बाहर निकलें, अपना घर पर ही ध्यान रखें। आप इसके लिए खानपान में विशेष ध्यान दें, इस गर्मी में मसालेदार खाना, तला भुना हुआ खाना से परहेज करें, आप सादा सिंपल खाना घर पर खाएं। इसके लिए आप लौकी का सेवन करें क्योंकि लौकी में भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है, आपके शरीर में संतुलन बनाए रखता है, साथ ही पाचन क्रिया के लिए लौकी बहुत अच्छा है। आप लौकी की सब्जी बना सकते हैं या लौकी का रायता। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लौकी का रायता हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आप एक लौकी लीजिए, उसे कद्दूकस कर लीजिए, थोड़ा सा उबाल लीजिए गर्म पानी करके, जब तक वो नरम ना हो जाए उसे निचोड़ के अलग से रख लीजिए और ताजे दही में उसे डाल के अच्छे से फेंट लीजिए। उस दही में आप काला नमक, जीरा पाउडर और पुदीने की पत्तियां पीस करके डाल दे, स्वाद अनुसार नमक डाल दे, आपका लौकी का रायता तैयार। अपना ध्यान रखें, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।
0: सखियों, अभी आप सुन रहे थे गर्मियों के मौसम में सुरक्षित रहने के उपाय, बता रही थी चित्रा पांडे। सखियों, अब आइए आनंद लेते हैं इस गीत का जिसे हमने लिया है झूम बराबर झूम फिल्म से। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत है शंकर एहसान लॉय के और स्वर है महालक्ष्मी अय्यर और राहत फतेह अली खान की।

0: ये देखो ताजमहल,
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
0: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी मोहब्बत जितना

0: गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सर ढक लेते हैं।
1: दरगाह में भी।
2: सखियो, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें पत्रों के माध्यम से जरूर बताएं। हमारे कार्यक्रम चिट्ठी मिली में हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 49 आकाशवाणी बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन नंबर है 495006। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं पत्र ईमेल bsp@gmail.com पर। तो सखियो हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा आपके ईमेल का इंतजार रहेगा। और सखियो इन्हीं बातों और गीतों के साथ अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी प्रभा कश्यप को। नमस्कार।

कार्यक्रम महिला सभा भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हो रहे हैं। आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी अब आपसे साझा कर लेते हैं कार्यक्रम विवरण में। कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने, आप सुनेंगे 6:20 और 7:00 भी। 7:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विशेष श्रृंखला, जिसका विषय होगा किसान कल्याण। 7:45 पर आप आनंद लेंगे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। रात्रि 8:00 सुनना न भूलिएगा कार्यक्रम अमृत धारा। अमृत धारा में योग और मधुमेह से बचाव के विषय पर डॉक्टर अरिहंत जैन से बातचीत सुनेंगे आप। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। रात्रि 8:20 पर आप आनंद लेंगे अपने पसंदीदा कार्यक्रम रजनीगंधा का। 9:15 पर हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा का समापन किया जाएगा। कल यानी बुधवार 3 जून 2026 प्रातः 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे 6:05 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बात। सामयिक सुझाव में कल का विषय होगा टमाटर की वैज्ञानिक खेती। वाचक होंगे अभिनव गौरहा। श्री रामचरितमानस गान आप सुनेंगे 6:35 पर। 6:45 पर फ्लैगशिप कार्यक्रम नवविहान।

0: कार्यक्रम में कल का विषय होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। कार्यक्रम आज सुबह आप सुनेंगे 7:05 पर और यादों के झरोखे से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। चतुर राम और साथी और अनुराग ठाकुर, साधना यादव और कविता हिरकने के गाए लोक गीतों का आनंद लेंगे आप कार्यक्रम अमराई में सुबह 8:30 पर। फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद आप सुनेंगे सुबह 10:00। प्रादेशिक समाचार 9:55 और 11:55 पर आकाशवाणी रायपुर से रिले किए जाएंगे। 12:00 से शाम 5:00 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे। कल शाम 5:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, 5:05 पर कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें बेरा के गोट का विषय होगा तिलहनी फसल बर बिजहा के चुनाव और सफल कृषक से भेंट क्रम में आप सुनेंगे कृषक श्री कंवर सिंह भंवर सिंह कंवर और चैत कुंवर कंवर, ग्राम केरा झरिया विकासखंड कोरबा, जिला कोरबा से बातचीत सुनेंगे आप। पंचू भैया की भेंट वार्ता रहेगी। युवा जगत आप सुनेंगे 5:35 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा मेरा बाइसिकल और क्रम समसामयिकी और सवाल जवाब। ईमेल करें गीत सुने आप सुनेंगे 6:20 और 7:00 भी। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष में विशेष श्रृंखला, जिसका विषय होगा मध्यम वर्ग कल्याण, ये कार्यक्रम कल 7:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। 7:45 पर आप आनंद लेंगे चित्रपट संगीत का और हर दिल की आवाज आकाशवाणी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात्रि 8:00, सुनना ना भूलिएगा। रात्रि 8:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। 9:15 पर हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। कल रात्रि 11:10 पर हमारी कल की सभा का समापन किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
1: प्रादेशिक समाचार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून के हो ही मतगणना, यही दिन पंचायत चुनाव के परिणाम घलो घोषित करे जाही। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बीजापुर जिला के कुंडापल्ली गांव पहुंचिन। ये दौरान उमनहा जन चौपाल के माध्यम ले लोगन संग गोठ बात करिन। और धमतरी हा देश के पहली ऐसा जिला बन गया है जिहां सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला ड्रोन स्प्रेयर के सुविधा देवाई जाही। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा कहिन है कि शिक्षा सशक्तिकरण के एक ठन शक्तिशाली साधन है। शिक्षा लोगन ला आत्मनिर्भर जागरूक और सक्षम बनाते। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी मनला संबोधित करत राष्ट्रपति हा कहिन कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सब वर्ग आर्थिक और शैक्षिक रूप प्रगति करें। राष्ट्रपति हा कहिन कि युवा मन हा राष्ट्र के शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतिनिधित्व करते। ओमन हा युवा मन ले विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवा मन ले करिन कि ओमन हा जड़ ला सुरता रखें। राज्य में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उप निर्वाचन पर मतदान काली शांतिपूर्ण ढंग ले होइस। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकाय में अध्यक्ष और पार्षद पद पर हुए मतदान में 84.8% मतदाता मनहा अपन मताधिकार के प्रयोग करिन। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद सदस्य सरपंच और

0: पंच के पद पर 78.61% मतदान दर्ज करेगी। आयोग है बताइस की मतदान के दौरान कोनो भी क्षेत्र ले अप्रिय घटना के सूचना नहीं मिले है। नगरीय निकाय के मत के गिनती 4 जून के करे जाही। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत भर हुए मतदान के बाद मतगणना मतदान स्थल में ही कराएगी, जिसका परिणाम के घोषणा 4 जून के करे जाही। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिला के कोंडापल्ली गांव पहुंचीन। ये दौरान उमनहा जन चौपाल के माध्यम ले लोगन के समस्या सुनीन। मुख्यमंत्री हा अधिकारी मनला निर्देश दिन की जन चौपाल मा मिले सबो आवेदन के समय सीमा मा निपटारा करे जाए। श्री साय कहिन की सुशासन तिहार सिर्फ एक ठन प्रशासनिक अभियान नहीं है, फिर यह सरकार और जनता के बीच विश्वास ला और ज्यादा मजबूत करे के माध्यम है। मुख्यमंत्री हा ग्रामीण मनला भरोसा देवाइन की समस्या के निपटारा बर सरकार हा पूरा जिम्मेदारी ले काम करत है। जन चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री हा आने आने विभाग मंडहा ले लगाए गए स्टॉल के अवलोकन करीन। उन्हें हितग्राही मनला वन अधिकार मान्यता पत्र, जातीय निवास प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रम कार्ड, किसान हितग्राही योजना संग्रह, दूसर योजना मन के बारे में जानकारी दीन। मुख्यमंत्री हा आत्मसमर्पित माओवादी दंपति मंडहा ले संचालित किराना दुकान घलो पहुंचीन और उनकर जीवन में आए सुघर बदलाव के तारीफ करीन। एकर पहले मुख्यमंत्री श्री साय काली नारायणपुर जिला के अबूझमाड़ क्षेत्र के गारपा और कोंडा गांव जिला के बड़े कनेरा पहुंचीन। गारपा में राखे गए जन चौपाल में मुख्यमंत्री हा ग्रामीण मनले सोझे गोठ बात करके उखर मन के समस्या सुनीन और क्षेत्र भर स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और सुरक्षा ले जुड़े कतकोन विकास काम के घोषणा करीन। उन्हें बड़े कनेरा में राखे गए समाधान शिविर में उमनहा कोंडा गांव जिला भर 152 करोड़ रुपया ले ज्यादा के 43 ठन विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करीन। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारी मनला आर्थिक रूप ले मजबूत बनाए बर 1 ले 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले आयोजन करे जावत थे। प्रशासन और विकास विभाग दहार ले राखे गए ये अभियान में स्ट्रीट वेंडर्स मनला ऋण सुविधा, यूपीआई और क्यूआर कोड जैसन सेवा देवाए जाही। संगे संग उमनला जनधन, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा बीमा और दूसर जन कल्याणकारी योजना मनले घलो जोड़े जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: औ अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। धमतरी जिला हा देश के पहली ऐसन जिला बन गया हवे जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति यानी पैक्स के माध्यम ले किसान मनला ड्रोन स्प्रेयर के सुविधा देवाए जाही। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के अगुवाई में 10 ठन पैक्स समिति मा ये सुविधा शुरू करेगी है। भर्ती में राखी गई कार्यक्रम में ये पहल के शुरुआत करेगी और प्रशिक्षित ड्रोन पायलट मनहा ड्रोन स्प्रेयर के प्रदर्शन करें। अधिकारी मन के अनुसार ड्रोन तकनीक ले उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव कमती बेरा और कमती लागत में करे जा सकी। राज्य में यात्री बस के किराया में बढ़ोतरी लाले के परिवहन विभाग हा बस संचालक मन संग्रह बैठका करके उनकर समस्या और मांग के बारे में गोठ बात करें। बस संचालक मन हा बताएं कि बच्चर 2021 के बाद ले किराया में नहीं हुए है, फिर डीजल के कीमत में सरलग बढ़ोतरी हुए है। उमनहा डीजल के दाम के अनुसार किराया तय करे बर स्थायी व्यवस्था बनाए के मांग करें। परिवहन विभाग हा कहे है कि दूसर किराया दर के अध्ययन करके जल्दी फैसला करे जाही। विश्व पर्यावरण दिवस के मौका में देहरादून में राखे गए कार्यक्रम में नारायणपुर के लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र ला पर्यावरण चैंपियन अवार्ड ले सम्मानित करेगी है। लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान ले पाछू बछर में जैविक खेती ला बढ़ावा देबर वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण गतिविधि, नशा मुक्ति जन जागरूकता कार्यक्रम, किसान और विद्यार्थी मन बर प्रशिक्षण और जैव

0: विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सुघर काम करेगे हे। उन्हें गौरेला पिंडरा मरवाही जिला के सेमरा के स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय लाघलो राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरण चैंपियन अवार्ड दे जाही। ये विद्यालय के चयन पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छता ले मां सुघर प्रदर्शन भर करेगे हे। उन्हें विश्व पर्यावरण दिवस में 5 जून के रायपुर में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल डहरले पोस्ट प्रतियोगिता आयोजित करे जाही। प्रकृति से प्रेरित होकर जलवायु और भविष्य का संरक्षण करें विषय में हुवैया ये प्रतियोगिता में 4 आयु वर्ग के प्रतिभागी मन भाग ले सकें। रेलवे प्रशासन हा यात्री मन के सुविधा पर रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव 1 अगस्त ले हर दिन चलाए के फैसला ले है। उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बिलासपुर और यलहंका बेंगलुरु के बीच 3 जून ले 2 जुलाई तक 5-5 चक्कर पर समर स्पेशल ट्रेन घलो चलाए जाही। अब पेश है मौसम के हाल। अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में 1-2 जगह में हल्का वर्षा होए के या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक ठन ऊपरी हवा के चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी मध्य प्रदेश और ओखरे लगे छत्तीसगढ़ के ऊपर विस्तारित है। उन्हें एक ठन दूसर द्रोणिका मध्य पाकिस्तान ले तटीय पश्चिम बंगाल तक छत्तीसगढ़ होवत बने है। एकर असर ले प्रदेश में काली 1-2 जगह अंधर चले के अवकाशीय बिजली गिरे के आशंका है। अब थोरकुन समाचार सार मा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बीएसई हा बताए है कि उत्तर पुस्तिका मा पाए गए गलती के सत्यापन और ओखर पुनर्मूल्यांकन बर पोर्टल आज ले शुरू हो गए है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रही। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में काली मंत्रालय में मंत्रिमंडलीय उप समिति के बैठक हुई। बैठक में पाछू खरीफ विपणन बछर में समर्थन मूल्य में खरीदे गए धान के निष्पादन और अवैया खरीफ सीजन में धान खरीदी के तैयारी के बारे में चर्चा करेगी। रायपुर जिला के दिव्यांग युवा मंडला रोजगार ले जोड़े पर रोजगार कार्यालय रायपुर डहरले 5 जून के बैरन बाजार के शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में विशेष रोजगार मेला के आयोजन करे जाहे। और कोरबा जिला के पाली थाना क्षेत्र में भीमसेनिया जंगल तीर पाछू संझा होए एक ठन सड़क हादसा में फटफटी में बैठे एक जन युवक के मौत हो गई। उन्हें एक जन दूसर युवक गंभीर रूप ले घायल हो गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून के हो ही मतगणना, यही दिन पंचायत चुनाव के परिणाम घलो जाही। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिला के कोंडापल्ली गांव पहुंची। ये दौरान उमनहा जन चौपाल के माध्यम ले लोगन संग गोठ बात करें। धमतरीहा देश के पहले ऐसा जिला बन गया है जिहां सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला ड्रोन स्प्रेयर के सुविधा दिवाए जाही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी रायपुर से। एफएम बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए प्रस्तुत है फिल्म अकीरा से। सुनिधि चौहान की आवाज में मनोज मुंतशिर गीतकार हैं, संगीतकार हैं विशाल शेखर। और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी ईमेल लिख भेजा है नरगोड़ा से कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि शीतल राजेश, मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, बिलईगढ़ से खिकराम देवांगन, रेणु रजनी, प्रियंका देवांगन, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबीहे, राधिका अनिष्का और तन्मय गजबी है, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन, पौड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल, वसुंधरा चंदन, प्रांजल चंदन, मदनपुर से श्रवण कुमार।

कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा और प्रतीक्षा चंदन, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन, धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष, विनीत और क्रिस्टी पटवा, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विनी शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र शाह, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, निवृत्ति उड़ेकार, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ राम, सहोदर नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे का भी हमें ईमेल आया है, यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता लोखंडे का भी हमें ईमेल आया है, महसोल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां नाज, तलहत फरहत, नुजहत साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूर नाज का भी हमें ईमेल आया है, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू का भी हमें ईमेल आया है, देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, यवतमाल से राहुल, मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी मनवर और प्रियांशी, महाराष्ट्र से ही रुपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य, मेघा मस्कीन, तिवर्ता डबरीपारा जिला कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहिनी सिंह, सहुद्री बाई, मनमोहन सिंह, गिरजा बाई, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम, दमन और अभिजोत, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, पीयूष कुमार, रोहित राज, जगराओं से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, पांडर कौड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री बुरांडे का भी हमें ईमेल आया है, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित गर्व और हिमाक्ष का हमें ईमेल आया है, पटियाला से मुकेश बत्ता और नीलम बत्ता का भी हमें ईमेल आया है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

फिल्म अकीरा का गीत अभी आपने सुना सुनिधि चौहान की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए प्रस्तुत है फिल्म युवा से अदनान सामी और अलका याग्निक की आवाज़ों में। महबूब हैं गीतकार, संगीतकार हैं अल्लाह रखा रहमान यानी AR रहमान। और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी ईमेल लिख भेजा है बरका काना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्लीम, निप्पी सहनी, मोहम्मद अफजल मलिक, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोखड़े, नंदा, हनुमान बोखड़े, पलेरा, टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, टुरवाल, नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी। मुंबई से हमें ईमेल भेजा है आदिबा नाज, फातिमा नसरीन अंसारी और आलिया के साथ में हैं सबा अंसारी। पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत।

अरुणा, सुलोचना भगत, चेतन भगत, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया, पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी, अन्नपूर्णा वर्मा, पुतली कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, गांव फ्रांसी हिसर से राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र सिंह दूधी, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोमल, नानक चंद मल्होत्रा, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी, धुरा बांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन और युवराज साहू, मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, हांसी से राजू मिगलानी, डब्बू बब्बू बबीता मिगलानी और सुभाष योगी, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई, यामिनी उमा तिवारी, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, बुल्ढाणा वडशिंगी, महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, जमशेदपुर से हैं अपूर्ण सिंह, अनुपम और राकेश कुमार, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल और पूजा परिहार, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी चौधरी और मालती चौधरी, भाटापारा से बचका मल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवा राम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरी, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू, नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नाव नौहारकर, निर्मला, विशाल और इनका संपूर्ण परिवार इस गीत की फरमाइश कर रहा है। गांव हीरा वाली फाजिल्का, पंजाब से सुभाष गोदाना, बिमला इंदु पार्वती हिमांशु गोदाना की फरमाइश पे आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म दबंग से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। जलीस शेरवानी गीतकार हैं, संगीतकार हैं साजिद वाजिद, और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी ईमेल लिख भेजा है रायपुर से नीलू मेघ वंदना कुमार बिट्टू कुमार ने, वार्ड नंबर 1 पुफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत और अर्पिता राजकोट से, जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी तखतपुर से, मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नाजिर और साजिद शाहिद का भी हमें ईमेल आया है, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, मलोड पंजाब से राजकुमार मीना, योगेश विवान, सौरभ शाइना और मैडी शर्मा, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून, गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव, भानु, प्रिया, माधुरी, किरण, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजक, मन्नू भाटिया और मयंक भाटिया, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सदोहर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री देवांगन, ऋषभ और रिचा देवांगन, दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नगमा अजीम का भी हमें ईमेल आया है, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित वयाला, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद देशमुख और सानवी देशमुख, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा, कांकेर जिला भानबेड़ा, मुंगवाल से भारत राम पडोटी, जयंती हेमंत उमंग मोक्ष पडोटी, तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा और सुजाता पोहरकार, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा, रोजी पर्ल और विलिस डिकोस्टा, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, कुरमंत और कौर मनु, और बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गौहाड़कर, टुक टुक गौहाड़कर, प्रिंस एकांश, सुमित ध्वनि गौहाड़कर, निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा।

0: फिल्म दबंग का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। इसी गीत के साथ कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का ये अंक यहीं समाप्त होता है। शाम 7 बजे ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही देर में हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र प्रादेशिक समाचार के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21 उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर कर जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
10: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
11: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो

0: लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्ट। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर के कोंडापल्ली गांव पहुंचे। निकाय चुनावों के लिए मतगणना 4 जून को होगी। इसी दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। और धमतरी देश का पहला ऐसा जिला बना जहां सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
4: भारत सरकार जनजाति के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
3: राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिले के कोंडापल्ली गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन चौपाल में प्राप्त सभी आवेदनों और समस्याओं का समय सीमा में निराकरण। श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत माध्यम है।
5: कोई प्रमाण पत्र होगा, आय, जाति, निवास, ये सब, कोई आप लोगों का जमीन बारी का दस्तावेज चाहिए तो सब देने का काम करेंगे और आगे खेती बाड़ी को भी बढ़ाएंगे। इधर इमली महुआ सब बहुत है, उसका वैल्यू एडिशन करा के हमारे बेटा बेटियों को रोजगार से जोड़ने का काम, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये बकरी पालन, ये सबको बढ़ावा देंगे।
3: मुख्यमंत्री समर्पित माओवादी दंपत्ति द्वारा संचालित किराना दुकान भी पहुंचे और उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की सराहना की। राज्य में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए हुए मतदान में 84.5% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए 78.61% मतदान दर्ज किया गया। आयोग ने बताया कि मतदान के दौरान किसी भी क्षेत्र से अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। नगरीय निकायों के मतों की गणना 4 जून को की जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना मतदान स्थल पर ही कराई गई। इसके परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सुविधा, यूपीआई और क्यूआर कोड जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही उन्हें जनधन, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा बीमा और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि अभियान का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मान जनक जीवन के अवसर उपलब्ध।

0: उपलब्ध कराना है। राज्य में यात्री बसों के किराए में वृद्धि को लेकर परिवहन विभाग ने बस संचालकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। बस संचालकों ने बताया कि वर्ष 2021 के बाद से बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने डीजल के दामों के अनुसार किराया तय करने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की। परिवहन विभाग ने कहा है कि अन्य राज्यों की किराया दरों का अध्ययन कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। बैठक में अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस को 1 अगस्त से प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया है। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बिलासपुर और यलहंका बेंगलुरु के बीच 3 जून से 2 जुलाई तक 5-5 फेरों के लिए समर स्पेशल ट्रेन भी चलाई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के की ओर। धमतरी जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों यानी पैक्स के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले में 10 पैक्स समितियों में सुविधा शुरू की गई है। लोहरसी में आयोजित कार्यक्रम में इस पहल का किया गया और प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों ने ड्रोन स्प्रेयर का प्रदर्शन किया। अधिकारियों के अनुसार ड्रोन तकनीक से उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कम समय और कम लागत में किया जा सकेगा। इससे किसानों को आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती अपनाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून में आयोजित समारोह में नारायणपुर के लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र को पर्यावरण चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र द्वारा बीते वर्षों में जैविक खेती को बढ़ावा देने, वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण गतिविधियों, नशा मुक्ति जन जागरूकता कार्यक्रमों, किसानों और विद्यार्थियों के प्रशिक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को देहरादून में होने वाले समारोह में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सेमरा में स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर का पर्यावरण चयन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इस विद्यालय का चयन पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य के लिए किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रायपुर में पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रकृति से प्रेरित होकर जलवायु और भविष्य का संरक्षण करें विषय पर होने वाली इस प्रतियोगिता में 4 आयु वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। रायपुर के पास मंदिर हसौद स्थित मिवान स्टील लिमिटेड संयंत्र में आज सुबह भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आग की का गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलते ही रायपुर तथा आसपास के क्षेत्रों से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवात पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे लगे छत्तीसगढ़ के ऊपर विस्तारित है। वहीं एक अन्य द्रोणिका मध्य पाकिस्तान से तटीय पश्चिम बंगाल तक छत्तीसगढ़ होते हुए बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है।
1: आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा और वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तेज हवा का गतिविधि लगभग 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। ये मेघ गर्जन का जो है 4 जून से बढ़ने की संभावना है और अधिकतम तापमान में आज और कल में लगभग 1 से लेकर 2 डिग्री का हल्की वृद्धि होने की संभावना है और तत्पश्चात कोई विशेष परिवर्तन होने की तो संभावना नहीं है।
0: इस बीच आज दोपहर बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। रायपुर के दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा 5 जून को बैरन बाजार स्थित शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में अस्थि बाधित, बौने, कम सुनने और देखने में कठिनाई वाले

दिव्यांगजन भाग ले सकेंगे। और कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में भीमसेनिया जंगल के पास बीती शाम हुए एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर घायल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिले के कोंडापल्ली गांव पहुंचे। नगरीय निकाय के लिए मतगणना 4 जून को होगी। इसी दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। और धमतरी देश का पहला ऐसा जिला बना जहां सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी रायपुर से, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर टी डी पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ फसलों के उन्नत किस्मों का चयन एवं उत्पादकता प्रति हेक्टेयर। और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा बीज एवं पौध उपचार का महत्व। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 2665 92। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 4 जून 2026 और 5 जून 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, प्रस्तुत है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा से जावेद अली साहिर अली बग्गा की आवाज़ों में। रजत अरोरा गीतकार हैं, संगीतकार हैं प्रीतम। और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी ईमेल भेजा है कैदी मोड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह ने। गांधी बाग अकोला से रमेश कनटकर, वैशाली धनंजय कनटकर। दिल्ली से सोनम सना अदीबा। मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू जाजोरिया। दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े। जलंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और मक्कार जहां। रामघाट कैंट से महेंद्र मोदी। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा और आदित्य देवांगन। बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशि कांता प्रजापति। कास्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल का हमें ईमेल आया है। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहाड़कर, सरिता प्रिंस, एकांश गौहाड़कर। पैंठण से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा।

प्रसाद, सोनल जिया जाधव कोटवा नारायणपुर बलिया से, ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखे लाल वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अलत मश खत्री, रमेश गोंड और मोहम्मद शादाब खत्री, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसौलिया, लसूड़िया पाता जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, यवतमाल से पंजाब राम टेके, यशोधरा और श्राव्या राम टेके, भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा श्याम कुंवर, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी, सहारनपुर से सैयद मसरून, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन और माही सेन, दिल्ली से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली अंसारी, जामनिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा और कौशल सेन, सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब और इरफान मोहम्मद, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची प्रवीण पुजारी, डोंडी लोहरा बलौत से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और अल कबीर, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले, लुतरा खमरिया से अकरम, अमीन, अर्श और आतिका, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल और पूजा परिहार, नागरकोहरा जिला राजनंदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दिव्यांश, प्रांजल, प्रतीक्षा, आराध्या साहू, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज चाहत, लोहारी डी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी ललिता, खुशान साहू और निशान साहू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती काजल पूर्वी, हेजल राजेश, रेशमा साहू, लुतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, लोहगढ़ ठाकुरावारा से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह का भी हमें ईमेल आया है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत।

फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा का गीत अभी आपने सुना, जावेद अली और शाहिर अली बग्गा की आवाज़ों में। इसी गीत के साथ कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का ये अंक यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला जिसका विषय है किसान कल्याण, अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: ये संभव हो पाया है?
1: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है। दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खुल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है, फिशरी में गांव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया, उसमें जब पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा, वो एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है, तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
2: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइंड सो ब्यूटीफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इवन इन द डिफिकल्ट इयर्स ऑफ कोविड द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर एरियाज वेयर द गवर्नमेंट यू feel has you know hit the bullseye and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
3: You know, for over a decade, you know, government of India under Prime Minister Modi ji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision of a plan of Viksit Bharat. So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it, and that is why over the last 10 years,

0: You have seen several schemes that have been launched, several projects. They are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part,
1: Yes.
0: and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.
1: Yes.
0: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that if India's economy is going to reach the third largest economy, that
1: Yes.
0: India should be Annadata for the entire world. See,
1: Yes.
0: that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld, उनको मदद किया गया है, उनको हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए जो भी साधन की जरूरत है वो सारी चीजें भी देते हुए भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज बिहाइंड इट. सो इन दिस ड्रीम, यू नो, टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इनटू अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग, लाइक क्लाइमेट चेंज,
1: यस
0: then ensuring market access and challenges in market access, the setting up of warehouses, setting up of cold storages, and also running green trains. You know,
1: यस
0: produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so that our
1: यस
0: farmers get a better price, has been is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support. For
1: राइट
0: instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters. Because somewhere other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, you know, that
1: यस
0: is also a big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so
1: यस
0: that, you know, it focuses on low productivity districts.
1: यस
0: Focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta in
1: यस
0: pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal vagara vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming so that the future is natural farming. We can have chemical-free agriculture. And towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
1: यस मिस्टर सिंह, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की. अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें, तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सकें.
2: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है। तभी फायदा होगा जब इनपुट कॉस्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले दो दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर, ये और पैसा।
1: जी
2: तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है। जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था।
1: जी
2: तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई
1: तो
2: गई,
1: 25 करोड़ से ज्यादा
2: जी
1: सॉयल हेल्थ
2: लगभग
1: कार्ड.
2: सभी किसानों के करा
1: जी
2: दिया गया। उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है, ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए।
1: जी
2: दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहां से खाद की उपलब्धता कहां से आ गई? ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो

0: नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को, तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी, इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है। लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है, उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की, वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30-70% तक पानी बचता है। जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया, और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी। कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं। ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए, और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए, या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है,
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता
0: है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5%, बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को। उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए, और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने, इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य अगर आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की, एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य,
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश ये होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले, यानी MSP का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है, तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर, मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। तो ये सरकार ने बहुत बेहतर
1: बिल्कुल सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है. मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो. सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड

0: value addition mechanisms, they have emerged as the central pillar of your India's farm to market strategy and have been successful.
1: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price.
0: Right.
1: And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market and a good price that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that he revised, keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan Committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsap was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. Okay. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce.
0: Yes.
1: So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore, particularly to take into account this particular problem.
0: Yes.
1: Because you need to see financial risk management. And what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
0: Yes.
1: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
0: Yes.
1: Because invariably when you hear stories of farmer in distress because the production there is like for instance a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government trust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
0: Yes. Coming to you, Mr. Singh, अभी आपने थोड़ी देर पहले cooperative model की बात करी थी कि Ministry of Cooperation बनी इन 12 वर्षों में इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है और जिस तरह का हम cooperation models कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही है
2: देखिए कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था ये सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना सहकारिता मंत्रालय जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा चाहे उसे लोन लेना हो क्रेडिट चाहिए होगा दूसरा उसे सीड चाहिए फर्टिलाइजर चाहिए या शुगर का प्रोडक्शन हो यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ सहकारिता के नाते हुआ और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है इसकी ग्रोथ बहुत तेज है डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं 2-4-5 पशु रख करके दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है हाथ के हाथ पैसा मिलता है कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है सारा इनपुट आप समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है उनके पास पहुंचता है और सब उधारी पर मिलता है सब क्रेडिट पर मिलता है किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की सीड की किसी भी इनपुट की वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है और जब उसकी खेती हो जाती है जब उसकी उपज तैयार होती है जब वो मार्केट में बेच लेता है यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं जो उनके लिए काम करती हैं अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि

0: पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25 से 28 28,000 रुपया या मैक्सिमम मान लिए 30,000 करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनसीडीसी बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए, एक साल में, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़। और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25 और 30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको केसीसी दे रखा है, आपने जो कहा ना कि सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि केसीसी आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और कि जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी केसीसी का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है, इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द पीएम किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। देन द फसल बीमा योजना यू टॉक्ड अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड नियरली अबाउट 25 लाख फार्मर्स हैव एनरोल्ड। एंड ऑल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड एनलाइटनिंग स्टेटिस्टिक इज दैट 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course, you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak. And this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. That is, for every drop that is being, you know, water that is, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments. They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem that is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. Yes. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticide, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops, you know, where the vast acreage under crop, what is the condition of the crop. So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa inhone kaha, Mr. Iyer ne ki ek parikalpana hai ki hum

0: जो विश्व है उसको भी एक्सपोर्ट करें। हम ऑलरेडी एक्सपोर्टर, मेजर एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर बन गए हैं। 2014 से देखें तो 37% बढ़े हैं हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, $51 बिलियन हो गए हैं। और इसमें जो प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स हैं उनका शेयर भी बढ़कर 20% को पार कर गया है। सो एक शिफ्ट है टुवर्ड्स हायर वैल्यू एडेड, सो एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है फूड प्रोसेसिंग की तरफ। फूड प्रोसेसिंग पर बहुत सरकार ने जो बल दिया है, PLI भी आया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, इसके बारे में आप हमें थोड़ी बता सकते हैं जो वैल्यू एडेड और फूड प्रोसेसिंग है इस पर बल दिया जाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है?
1: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रॉ फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा। हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है। अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी। इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है, अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा। तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है। यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है। इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा। कोई भी चीज टमाटर के, तो जैसे टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है, लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर। तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है। और जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं।
0: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1,185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक, और जो PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है, और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है। सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
1: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा। और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो ये जितना आपने बताया, मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं सब उसका पार्ट हैं। और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा, जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
0: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड अवर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट, प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, कोको, कैश्यू, सैंडलवुड इन कोस्टल रीजन्स एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड आमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन हिली एरियाज, दीज हैव बीन डिफाइंड एज द फोकस एरियाज। सो यू थिंक यू नो दिस काइंड ऑफ वेरी फोकस्ड अप्रोच दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग, लुकिंग एट द वेरी वास्ट एंड वेरी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड यूजिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes. You talked of the need for to going for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on

0: And this National Mission on Edible Oil and Pulses and the National Mission for Natural Farming are particularly to meet this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you
0: very much.
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: इन द स्पेशल सीरीज यू वर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट Empowering farmers through welfare and farmer-centric policies. The participants were Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
4: केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष में विशेष श्रृंखला जिसका विषय था किसान कल्याण, अभी आप सुन रहे थे, अनुप्रसारित किया जा रहा था आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म सदमा से यसुदास की आवाज में। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं इलैया राजा।

फिल्म सदमा का गीत अभी आपने सुना यशुदास की आवाज़ में। आइए सुनते हैं फिल्म हीना का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। रविंद्र जैन गीतकार हैं, संगीतकार भी हैं रविंद्र जैन।

फिल्म बॉबी का गीत अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी हैं गीतकार, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फिल्म बॉबी का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं श्रोताओं कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशु पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर TD पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ फसलों के उन्नत किस्मों का चयन एवं उत्पादकता प्रति हेक्टेयर, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा बीज एवं पौध उपचार का महत्व। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 2665592। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का STD कोड 077752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 4 जून 2026 और 5 जून 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत धारा। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग और मधुमेह से बचाव के विषय पर डॉक्टर अरिहंत जैन से बातचीत। प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की।

0: अमृत धारा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सुप्रिया का नमस्कार। श्रोताओं, आज पूरे विश्व में और हमारे देश में डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसी चुनौती बन के उभरा है जो हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, हमारे तनाव प्रबंधन से जुड़ा हुआ है और लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। क्या इस बीमारी के उपचार और बचाव में केवल दवाइयां ही हैं, या फिर हमारी प्राचीन जीवन शैली जो कि योग से निकलकर आई है उससे भी हम इस बीमारी का बहुत अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं? बहुत सारी बातें मन में उठ रही हैं डायबिटीज के प्रबंधन के संदर्भ में, और योग हमारे पास एक प्रामाणिक विधि है जिसके द्वारा हम एक संतुलित जीवन शैली बना सकते हैं और इन रोगों से बचाव कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं एसीसीएल बिलासपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरिहंत जैन। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो विषय छेड़ा है निश्चित तौर पर वो सभी श्रोताओं को बहुत ही उपयोगी रहेगा।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं मधुमेह या डायबिटीज के बारे में ही जानना चाहूंगी। सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं तक ये जानकारी पहुंचे कि इस बीमारी को वो कैसे समझें।
1: मधुमेह आज के समय बहुत ही विशालकाय रूप ले चुकी है और हम भारत को विश्व की मधुमेह की राजधानी बोलने लगे। हर 10 से 15% लोग, यदि आप 10 लोगों को भी जानते हो तो एक व्यक्ति उसमें से या 2 व्यक्ति उसमें से मधुमेह से पीड़ित है, और यदि यह नियंत्रण में रहे तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन यदि यह नियंत्रण में ना रहे तो इससे खराब कोई बीमारी नहीं है। यह ना कि सिर्फ आपकी आंखों को खराब करती है, आपके हृदय को भी खराब करती है, आपकी नसों को भी खराब करती है, आपके लड़ने की क्षमता को कम करती है, आपके गुर्दों को खराब करती है, पैरों की खून की नलियों को खराब करती है, और ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं है जिस पर यह प्रभाव नहीं डालती है। इसलिए इससे बचाव और इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी।
0: अभी के समय में डायबिटीज के इतने सारे मरीजों के बढ़ने का कारण क्या है, आपको क्या लगता है?
1: देखिए, अभी आप ये देखिए कि हमारी जीवन शैली किस हद तक परिवर्तित हो गई है
0: जी।
1: 4-5 चीजें जो कि बहुत हैं, यदि आप शहर में निकलें तो आपको वाहन बहुत ज्यादा ट्रैफिक

0: ट्रैफिक मिलता है,
1: जी
0: कोई लोग पैदल नहीं चलना चाहते हैं। खाने में तेल की इतनी ज़्यादा मात्रा हम उपयोग कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री महोदय को भी कहना पड़ रहा है कि आप 10% कम से कम अपने खाने में तेल का प्रयोग कम करें। तनाव की स्थिति, हर व्यक्ति घर में 2 से 3 सदस्य भी होते हैं तो तनाव की स्थिति बन जाती है। कार्यालयों में अलग तनाव की स्थिति है, सामाजिक संस्थाओं में अलग तनाव की स्थिति है, परीक्षाओं में इतना अत्यधिक कंपटीशन है कि इससे भी छात्र स्तर से ही आपके जीवन में तनाव पैदा हो जाता है। तो हम खाने पीने से लेके व्यायाम से लेके तनाव से लेके ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल या जीवन शैली की ऐसी हैं जिनसे कि निश्चित तौर पर हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है और हम डायबिटीज जैसी या मधुमेह जैसी बीमारी से ग्रसित हो रहे
1: बहुत
0: हैं।
1: सही। और डॉक्टर साहब, अक्सर हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में सुनते हैं। श्रोताओं को बताइएगा कि ये क्या प्रकार हैं और इसके कारण क्या है होने के।
0: देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में प्रमुखता से अंतर हम इस बात से लगा सकते हैं कि टाइप 1 में हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व बन जाते हैं जो कि इंसुलिन बनते ही उसके खिलाफ उसको नष्ट कर देते हैं।
1: जी
0: अंततः आपके शरीर में इंसुलिन रहता ही नहीं है। जब शरीर में इंसुलिन नहीं रहेगा तो उसके काम करने का प्रश्न ही नहीं होता, और इस तरह के मरीजों को हमें इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। ये टाइप 1 टाइप के डायबिटीज मधुमेह वाले होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, जो कि इंसुलिन तो हमारे शरीर में होता है पर हमारे शरीर उसकी सुनता नहीं है, ऐसा सरल शब्दों में बोल सकते हैं, जिसको कि हम मेडिकल साइंस की भाषा में ये बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है।
1: जी।
0: मोटापा उसका एक बहुत बड़ा कारण है, और भी कई अन्य अन्य कारण हैं, लेकिन इंसुलिन की मात्रा तो उसमें रहती है शरीर में, पर इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण इंसुलिन काम नहीं कर पाता और हमारे शरीर में शुगर की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। जो शर्करा हमारी कोशिकाओं तक पहुंचना चाहिए वो सिर्फ खून में ही घूमती रहती है।
1: जी
0: इस कारण से इसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज प्रायः बच्चों में होती है या 1 या 2 साल में प्रकट हो जाए, और टाइप 2 डायबिटीज 99% वयस्कों में होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि पहले जो 30, 40, 50 साल के बाद होती थी, अब वो 20, 22, 25 साल में भी होने लगी।
1: वही प्रश्न अभी आपसे पूछना चाह रही थी कि किस उम्र में ये रोग होता। आपने बता ही दिया कि जो पहले 40-50 की बीमारी कही जाती थी, वो अब छोटे बच्चों में 22-25 साल में भी देखने को मिल रही है। तो क्या हमारी जीवन शैली और निष्क्रिय शारीरिक अवस्था ही इसके लिए मुख्य कारण है या जेनेटिक कारण है?
0: निश्चित तौर पे ये ऐसे जेनेटिक डिसीज नहीं है कि अगर माता पिता में है तो बच्चों में होगी ही होगी, पर इसका जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन जरूर होता है। यदि माता पिता में है और यदि आप में मोटापा आ गया, आपने निष्क्रिय जीवन शैली अपना ली, आपने एल्कोहल स्मोकिंग ज्यादा ऑयल का सेवन शुरू कर दिया, आपके जीवन में बहुत तनाव है, तो वो जीन एक्सप्रेशन के माध्यम से, इंसुलिन रेजिस्टेंस के माध्यम से जिनके माता पिता में, उनके बच्चों को ज्यादा होने की थोड़ी संभावना हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, आपने शुरू में ही बताया कि ये बीमारी यदि कंट्रोल में रहे या हम नियंत्रण में रख सकें तो ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा आपके लिए इसमें डरने की बात नहीं है। योग को हमने आज मधुमेह से जोड़ा है। योग हमारी प्राचीन एक ऐसी विद्या है जो हमारे देश में है, पूरे विश्व में है आज, जिससे कि हम अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। एक संतुलित जीवन शैली में योग को जोड़कर कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो सीधे सीधे मधुमेह के नियंत्रण में, मधुमेह के प्रबंधन में योग की क्या भूमिका हो सकती है?
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। योग का बहुत महत्व है, और योग सिर्फ आपके मधुमेह प्रबंधन के लिए नहीं है, पूरी जीवन शैली के प्रबंधन के लिए है।
1: जी
0: निश्चित तौर पे आज हम बात मधुमेह की जरूर कर रहे हैं, पर आज अगर हम सारी विश्व की बीमारियों को 2 हिस्सों में बांटें तो एक तो वो बीमारी हैं जो किसी चीज से फैल सकती हैं, जैसे कि कोविड का काल सभी ने देखा है, या पहले के समय हैजा, मलेरिया, कोई मच्छर से फैल रही है या कोई पानी से फैल रही है, और कुछ बीमारियां हैं जो जीवन शैली के परिवर्तन के कारण हुई है। तो हमने जीवन शैली के परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियां बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई हैं, और योग एक ऐसी चीज है जो हमारे पूरे जीवन को बदल देती है। तो निश्चित तौर पर योग से ना कि सिर्फ डायबिटीज या मधुमेह नियंत्रण कर सकते हैं, बल्कि हम बहुत सारी बीमारियां जैसे कि कैंसर,

0: या इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता, ब्लड प्रेशर, या फिर आपके हार्ट अटैक हो रहे हैं, लकवा पड़ रहे हैं, ये सारी, मोटापा हो रहा है, ये सारी जीवन शैली के परिवर्तन से होने वाली बीमारियों को हम योग के माध्यम से काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं।
1: बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मधुमेह जो है वो हमारे खून में शर्करा की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, उसके बढ़ने से होता है। इस शर्करा पर हमें नियंत्रण करना है, तो योग किस प्रकार से इस खून में बह रही शर्करा को नियंत्रित कर सकता है?
0: मैं योगाचारी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे इतने सारे मरीजों में से बहुत सारे लोग योग करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि योग में तीन चीजें होती हैं, एक क्रिया होती है, आसन होता है और प्राणायाम होता है। तो जो क्रिया होती है वो सफाई की प्रैक्टिस है, या क्लीन्सनिंग प्रैक्टिस अपन बोल सकते हैं, जिसमें कपाल भाती, अग्निशार क्रिया, भवन धौती, शंख प्रक्षालन या लघु शंख प्रक्षालन, इस तरह की चीजें यदि आप करते हो तो ये अलग तरह से काम करती है। दूसरा, आपके जो बहुत सारे आसन, ज्यादातर लोग आसनों को ही योग समझते हैं, जिसमें कि सूर्य नमस्कार से लेके आपके बहुत सारे आसन हैं जो कि शुगर के या मधुमेह के मरीजों को बहुत अच्छे से उनकी शर्करा नियंत्रण करने में मदद करते हैं। तो जब हम इन आसनों को करते हैं तो बहुत सारी शरीर की फिजियोलॉजी और एनाटोमिकल क्रियाएं, एनाटोमिकल पोजीशन को जब चेंज करते हैं तो फिजियोलॉजी ऐसी बनती है कि वो बहुत सारे शरीर में इस तरह से परिवर्तन करती हैं
1: जी,
0: कि धीरे धीरे धीरे आपका जो मुख्य कारण है मधुमेह का, इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसको कम करती है, और इस तरह से हम उसको, शर्करा को नेचुरल माध्यम से नियंत्रित कर पाते हैं।
1: कौन कौन से आसनों का नाम हम ले सकते हैं जिनको मुख्य रूप से डायबिटीज के संदर्भ में लोग प्रतिदिन अभ्यास में ला सकते हैं?
0: देखिए, प्रिपरेटरी प्रैक्टिस के हिसाब से आपको 5 से 10 मिनट में 3 से 7 राउंड कम से कम आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। जब भी हम कोई जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो वार्म अप करते हैं, उसी तरह जो सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप हैं, और जिनमें से कि 8 स्टेप हैं, ये सारे आसन शरीर में कुछ ना कुछ क्रिया कराते हैं, और ज्यादातर ये इंसुलिन को स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन सिग्नलिंग के माध्यम से। तो जब ब्रेन सिग्नलिंग के माध्यम से इंसुलिन ज्यादा पैदा होता है तो वो निश्चित तौर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करके हम उसको काफी हद तक शुगर में नियंत्रण कर पाते हैं। बाकी कुछ आसन ऐसे हैं, और ये जो मैं आसन के नाम बता रहा हूँ सिर्फ संख्या नहीं पढ़ रहा हूँ, ये करीब करीब अगर आप पबमेड जैसी बहुत सारी रिसर्च वेबसाइट्स को देखेंगे तो 30,000 से ज्यादा
1: जी
0: रिसर्च पेपर पूरी दुनिया में प्रकाशित हो चुके हैं। दुख सिर्फ इस बात का है कि जब हम योग या किसी एक्सरसाइज या जीवन शैली के परिवर्तन की बात करते हैं तो इसका प्रचार करने के लिए, इसको बताने के लिए कोई दवाई की कंपनी तो आगे आएगी नहीं। इसलिए हम और आपको आज स्टूडियो में बैठ के बात करनी पड़ रही है।
1: जी
0: जो भी कम से कम लोग सुन रहे हैं वो भी इस चीज को महसूस करेंगे कि इसका प्रचार कैसे हो, कि इससे भी चीजें होती हैं। तो मैं जो आसन बता रहा हूँ वो ही आसन सारे मधुमेह के मरीजों को करना चाहिए। जैसे आप स्टैंडिंग पोजीशन, खड़े होके पोजीशन के 2-3 आसन है, त्रिकोणासन है, ताड़ासन है, त्रियक ताड़ासन है, वीरासन है,
1: जी
0: और यदि आप बैठे हुए पोजीशन में अगर चाहते हैं तो वक्रासन है, मंडूकासन है, पश्चिमोत्तासन है, योग मुद्रा है, अर्ध मतेंद्रासन है। इस तरह के आसन यदि आप चाहें तो जो बैठ के करने वाले हैं, प्रोन और सुपाइन में भी धनुर्नासन, नौकासन और मकरासन,
1: जी
0: और सुपाइन पोजीशन में सुप्त बद्रासन, सेतु बंधासन, मत्स्यासन है। इस तरह के आसनों को यदि आप 2 से 5 मिनट भी हर आसन को करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी जो मधुमेह की शुगर है और इंसुलिन है उसका बैलेंस बढ़ेगा और नियंत्रण में आएगी।
1: एक बात और मन में उठती है कि लोग जैसे ही कोई बात सुनते हैं उसको बिना किसी मार्गदर्शन के या गुरु के स्वयं ही कहीं से देखकर करना शुरू करते हैं, तो योग के संदर्भ में भी इस तरह की गलतियां होती हैं, सूर्य नमस्कार हो, इन सब के बारे में भी सही ढंग से जानकारी लेकर ही इन्हें करना चाहिए?
0: निश्चित तौर पे मुझे लगता है आज के समय जिस तरह से भारत सरकार ने और पूरे विश्व ने 21 जून को योग दिवस के रूप में स्वीकार किया है, तो योग की स्वीकार्यता भी बढ़ी हुई है और योग शिक्षक भी उपलब्ध हैं।
1: जी
0: लेकिन मेरा ऐसा मानना है यदि

0: आपको किसी तरह का गठियाबाद नहीं है या योग आसन करने में किसी तरह की समस्या नहीं है, तो बहुत अच्छे वीडियो भी उपलब्ध हैं, अच्छे शिक्षकों के वीडियो उपलब्ध हैं, आप उसको देख के भी योग आसन कर सकते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कोई बाधा है। लेकिन निश्चित तौर पे यदि आपके पास शिक्षक उपलब्ध है तो उसके परामर्श से करें तो ज़्यादा बेहतर है।
1: आपने कुछ प्राणायाम के भी नाम इस कार्यक्रम की शुरुआत में बताए थे कि इनके द्वारा भी शरीर की जो साफ करने की प्रक्रियाएं हैं वो होती हैं।
0: 5-6 तरह की ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं जिनको प्राणायाम बोलते हैं। अनुलोम विलोम है, चंद्रभेदन है, सूर्यभेदन है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है और शीतकारी शीताली है। ये अगर 5-5 मिनट भी आप 3-4-5 राउंड करेंगे तो निश्चित तौर पर इनका प्रभाव बहुत ही उत्तम रहता है।
1: डॉक्टर साहब, आप एलोपैथी के डॉक्टर हैं और दवाइयों से हमेशा आपका सरोकार रहता है। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि एक बार मधुमेह हो जाए तो वो जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो क्या योग करके हम उससे बचाव कर सकते हैं, या हमें थोड़ा डायबिटिक कंडीशन आने के बाद भी हम उससे वापस अपने को स्वस्थ जीवन की ओर ला सकते हैं?
0: निश्चित तौर पे दोनों जगह ये काम करता है। चूंकि ये जीवन से परिवर्तन से होने वाली बीमारी है, इसलिए जीवन का परिवर्तन तो आपको करना चाहिए। ये हमारे अंदर विश्वास जगना चाहिए कि हम योग करेंगे तो हमारे अंदर तनाव कम होगा। हमारा जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो वो पैनक्रियास पे मसाज प्रेशर डालता है और स्टिमुलेट करता है इंसुलिन को। जब हम कोई ट्विस्टेड पोस्चर करते हैं तो आंतों को स्क्वीज करता है और उससे भी हमारा कोलोनिक कंटेंट जो होता है, जो कब्जियत वगैरह रहती है, वो ठीक होती है। ये उसी तरह है, हम रोज स्नान करते हैं तो हम ये मानते हैं कि भाई हमें साफ रहना है तो स्नान करना जरूरी है। हम रोज अपने ब्रश करते हैं, हम ये मानते हैं कि मुख को साफ रखना है, दांतों को साफ रखना है तो ब्रश करना है। लेकिन हम योग को और शारीरिक में दूसरी क्रियाओं को उतना महत्व तो नहीं देते हैं। तो
1: जी
0: हम उसको अगर महत्व तो देना शुरू करें तो डायबिटीज जिनको नहीं हुई है उनको निश्चित तौर पे बचाव होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा नहीं हो पाएगा। और जिनको डायबिटीज हो चुकी है या मधुमेह हो चुका है, निश्चित तौर पे वो अपना दवाइयों के साथ इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अगर उनको मान के चलिए 3 तरह की दवाइयों की जरूरत है तो वो 2 तरह की दवाइयों में ही ठीक हो जाएगा। अगर 2 तरह की दवाइयों में भी किसी निश्चित डोज पे नियंत्रण नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि योग के साथ उसी तरह की दवाइयों को लें तो नियंत्रण में आ जाए।
1: क्या योग से पूरी तरीके से मधुमेह नियंत्रित हो सकता है? ऐसी भी भ्रांति है कि हम सारी दवाइयां लोग छोड़ देते हैं, और क्या ऐसी स्थितियां कुछ अस्थाई रहती हैं?
0: जब नियंत्रण का पैमाना अपने पास है तो मैं अपने सारे मरीजों को यही बोलता हूं कि आप दवाइयां भी लीजिए और योग भी कीजिए और अपनी जीवन शैली को सुधार कीजिए। आप जैसे जैसे जीवन शैली को सुधार करते जाएंगे आपकी दवाइयों का बोझ कम होता जाएगा। और चूंकि हम रोज हर हफ्ते हर तीसरे दिन या रोज जिस तरह की जैसी शुगर है उसको हम चेक करें, ग्लूकोमीटर से घर में चेक करें, यदि कंट्रोल होती जा रही है तो धीरे धीरे हम दवाइयों को कम करते जाएंगे। और 50% मरीज सिर्फ जीवन शैली परिवर्तन, अपना आहार, एक्सरसाइज, योग वगैरह अपनाएं तो 50% मरीज अपनी शुगर को नियंत्रित रख सकते हैं बिना किसी दवाई के।
1: वाह, क्या बात है। और जो आपने ग्लूकोमीटर की बात की, तो मैं ये भी चाहूंगी कि आप श्रोताओं को बता दें कि क्या हमारा स्तर होना चाहिए शर्करा का हमारे खून में, जो ग्लूकोमीटर की रीडिंग बताती है। और 2 तरीके की रीडिंग भी देखते हैं, ग्लूकोमीटर से लेते हैं और एक डायरेक्ट जो हम लैब से किसी को बुलाते हैं। क्या दोनों में फर्क होता है या दोनों एक ही बातें हैं?
0: देखिए, इसमें ऐसा है कि अलग अलग रीडिंग्स आती हैं, क्योंकि जो शरीर में शर्करा की मात्रा होती है, शुगर की मात्रा होती है, वो एक डायनामिक फेज में होती है। जब आप ग्लूकोमीटर से ब्लड लेते हैं तो कैपिलरी ब्लड आता है, जब आप इंजेक्शन की सुई से लेते हैं या कोई लैब में ले जाके आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वेन से ब्लड लेता है। और आप हो सकता है कि आपकी वेन्स भी अलग अलग वेन्स से लेता हो कोई ब्लड उसमें, इसलिए थोड़ा बहुत अंतर उसमें आता है। इसलिए दोनों रीडिंग, और सारी रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि फास्टिंग शुगर 8 घंटे यदि आप भूखे रहते हो तो उसके बाद की जो शुगर है उसको हम फास्टिंग शुगर कहते हैं। तो सुबह हम उठ के यदि फास्टिंग शुगर करा रहे हैं तो 1 से 30 से नीचे

0: आए तो बहुत अच्छा है। अगर हम खाने के बाद की शुगर ले रहे हैं जो कि ठीक 2 घंटे बाद है, तो 160 से नीचे भी आए तो बहुत अच्छा है। इससे आप, ऐसा नहीं है कि सारी शुगर 130 से ही नीचे आएंगी, हो सकता कोई 108 आए, कोई 110 आए, कोई 112 आए। इसलिए आप इस पे ध्यान मत दो कि हमने लैब से कराया कि ग्लूकोमीटर से कराया, पर ओवरऑल आपकी 10 में से 8 शुगर नियंत्रण में है तो हम मानते हैं कि वो आपकी शुगर नियंत्रण में है।
1: और HbA1c का जो काउंट रहता है सर, 3 महीने में एक बार जो लेते हैं, उससे क्या पता चलता है?
0: वो HbA1c को ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जब बहुत बड़ी हुई शुगर आपके शरीर में घूमती रहे तो वो हीमोग्लोबिन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेती है, और उस बॉन्ड को मेजर करके हम ये देखते हैं कि हाँ ये काफी दिन से पुरानी शुगर है। क्योंकि RBC की लाइफ 3 महीने की होती है, 120 दिन की होती है,
1: जी
0: पर लगभग ऐसा मानते हैं कि 100 दिन तो एक कोई से भी RBC होगी हीमोग्लोबिन से, तो इसलिए वो पिछले 3 महीने का ऐसा प्रचलन है कि 3 महीने की शुगर को हम बताता है। वो यदि 7 से नीचे है तो आप मान के चलिए कि आपकी शुगर नियंत्रण में है।
1: ठीक।
0: शुगर को पहचानने के लिए 6.5 की वैल्यू है, कि अगर 6.5 है या इससे ज्यादा है तो हम मान के चलेंगे कि नए व्यक्ति को शुगर हो चुकी है। लेकिन अगर किसी को पहले से मधुमेह है और वो दवाई या डाइट एक्सरसाइज सब कुछ कर रहा है और 7 से नीचे यदि आता है तो निश्चित तौर पर वो आपका नियंत्रण में माना जाएगा।
1: बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। एक बात और, जब आहार की हम बात करते हैं तो सभी लोगों को किस तरह का आहार लेना चाहिए, क्योंकि कई लोग मिठाइयों के बड़े शौकीन हैं और डायबिटीज शुरू होते ही अभी जैसा चला है कि आप शक्कर बिल्कुल मत खाइए, चावल मत खाइए, आलू मत खाइए। तो जिंदगी में किस तरह की जीवन शैली हो, आहार हमारा कैसा हो कि हम स्वाद है उसको भी, उसका भी आनंद ले सकें और डायबिटीज को कंट्रोल भी रख सकें।
0: निश्चित तौर पर आहार के बारे में सबसे ज्यादा भ्रांतियां हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कि परहेज करना चाहिए। आप सारी चीजें खा सकते हैं, शौक से खाइए। समस्या सिर्फ ये है कि जब हम बोलते हैं सारी चीजें खा सकते हैं तो लोग उसमें अनियंत्रित हो जाते हैं। मैं इस माध्यम से सिर्फ ये कहूंगा कि आप शक्कर और गुड़ का सिर्फ परहेज कर दीजिए, उसको आप जीरो कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शक्कर ही से ही आपको स्वाद आएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें कि मिक्स शुगर होती है, डायरेक्ट शुगर नहीं होती है। आप खजूर के 2 खजूर खा लीजिए, वो आपके 2 चम्मच शक्कर के बराबर मीठापन देगी, लेकिन उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना नहीं होता है।
1: जी।
0: तो ऐसे ही जब सारे फल, सारी दालें, सारे अनाज, सारी सब्जियां आप निश्चित तौर पे खा सकते हैं। बशर्ते जब मैं सारे फल की बात बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 किलो आम खा लें। आप एक आम खाओ, 25 अंगूर खाओ, एक अमरूद खाओ, इनमें से कोई एक, तो इस तरह से नियंत्रण मात्रा में यदि आप खाते हैं तो ऐसी कोई चीज का परहेज नहीं है। जहां तक अगर शक्कर को मैं आपको जीरो कहने के लिए कह रहा हूं, तो बहुत सारे शुगर के स्वीटनर्स आते हैं जो कि सेफ हैं, शुगर को नहीं बढ़ाते हैं। आप उनको उपयोग में थोड़ा बहुत ले सकते
1: तो
0: हैं।
1: डायबिटीज के मरीजों को खीर और मिठाइयों से तो परहेज करना ही है मतलब।
0: निश्चित तौर पे जिसमें डायरेक्ट मैं जब शक्कर को मना कर रहा हूं तो थोड़ा सा परहेज तो करना
1: जी
0: जरूरी
1: जी चलिए सर, लेकिन ये देखिए ये सारी बातें फिर से नियंत्रण पे आके जुड़ती हैं, और नियंत्रण पाने के लिए योग से बढ़िया माध्यम और कुछ नहीं हो सकता है। तो मन का नियंत्रण, शरीर के सारे यंत्रों के क्रियाकलाप का नियंत्रण, ये सभी कुछ योग से जाकर जुड़ता है। तो मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को समेटते हुए ऐसी कोई 5 बातें आप हमारे श्रोताओं को बताइएगा जिससे कि वो मधुमेह से बचाव कर सकें और अपने जीवन को स्वस्थ बना सकें।
0: 5 बातों में मैं ये कहूंगा, कम से कम हफ्ते में 7 दिन नहीं तो 5 दिन आप एक्सरसाइज करें। 4 किलोमीटर 40 मिनट का फॉर्मूला याद रखें। दूसरा, आप तनाव रहित रहने के लिए 6 घंटे की नींद निश्चित तौर पर लें। तीसरा, आप खाने में अपने आप को नियंत्रण में रखें। यदि आपको शुगर है तो आप शर्करा का बिल्कुल उपयोग ना करें और बाकी सब चीजों को नियंत्रित में उपयोग करें। प्रमुखता तेल का उपयोग नियंत्रण में रखें। चौथी क्रिया मैं बोलूंगा, ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा सुनने में, आप ब्रश रोज करें। ये भी एक रिसर्च में आया है कि ब्रश रोज करें। और 5वीं चीज, आधा घंटे की धूप जरूर लें।
1: वाह,
0: ये 5 बातें यदि आप याद रखते हैं तो निश्चित तौर पे आप नियंत्रण में भी अपने मधुमेह को कर पाएंगे।
1: बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, और इतनी सारगर्भित जानकारी इतने सरल ढंग से आपने आज हमारे श्रोताओं को दी है। कोई प्रेरक संदेश जो आपको लगता है कि अभी भी आप

0: देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से, तो क्या कहेंगे?
1: यदि जीवन शैली बदल जाएगी तो ना कि सिर्फ डायबिटीज बदलेगी, आपकी कोई सी भी बीमारियां जिसमें कि हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां जो कि भयावह रूप ले रही हैं, तो जीवन शैली बदल गई और बदल गई बीमारी, तो आप थोड़ा सा अपनी जीवन शैली को बदलें। और जो भी हमारे आचार्यों ने कई सालों से कहा है उसको हम सम्मान दें। भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको कि हम भूल चुके हैं, और नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कारण हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। दो बातें जरूर मैं इस मामले में जोड़ना चाहूँगा। एक फास्ट फूड जिसमें कि आपका फाइबर रहित चीज़ें, मैदा से बनी हुई चीज़ें या फ्राइड चीज़ें जो अत्यधिक तापमान पर पकाते हैं, उनसे बचें, जो कि प्रोटीन का डीनेचर करती हैं। और दूसरा, हम अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए एक्सरसाइज का या व्यायाम का जरूर उपयोग करें, ये दो चीजें जरूर ध्यान दें।
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, शरीर के बाहर की सफाई हम रोज करते हैं, शरीर के अंदर की सफाई योग से हो सकती है। योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, जैसे आपने बताया। इसको यदि हम अपने जीवन में लाते हैं तो डायबिटीज ही नहीं, कई सारी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो आज का विषय था डायबिटीज मधुमेह प्रबंधन में योग की क्या भूमिका है, बड़े विस्तार से और सरल ढंग से डॉक्टर साहब ने हमें बताया। डॉक्टर अरिहंत जैन आज हमारे बीच थे। इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मैडम। आप
2: कार्यक्रम अमृत धारा अभी आप सुन रहे थे। योग और मधुमेह से बचाव के विषय पर डॉक्टर अरिहंत जैन से बातचीत अभी आपने सुनी। प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम रजनीगंधा और मैं हूं आपका रेडियो साथी शांतनु कपूर। चलिए आपको ले चलते हैं भारतीय सिनेमा की उन गलियों में जहां कैमरे से कविता लिखी गई, जहां संगीत सिर्फ सुना नहीं गया, महसूस किया गया, और जहां सपनों को पर्दे पर जिंदगी मिली। आज का ये विशेष अंक समर्पित है चार महान शख्सियतों को जिन्होंने भारतीय सिनेमा को सिर्फ सफल नहीं बनाया बल्कि उसे जीवंत किया, उसे आत्मा दी। एक और वो निर्देशक जिनकी फिल्मों में बारिश भी कहानी कहती है, मणि रत्नम। दूसरी ओर वो संगीत सम्राट जिनकी धुनों में गांव की मिट्टी भी है और दिल की धड़कन भी, इलैया राजा। और तीसरी ओर वो शोमैन जिनके सपनों ने हिंदी सिनेमा को नया आसमान दिया, राज कपूर। और आवाज और धुन की जादूगर सुमन कल्याणपुर। तो आइए शुरू करते हैं यादों, संगीत और किस्सों से भरा ये खूबसूरत सफर। भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्णिम इतिहास में कुछ आवाजें ऐसी हैं जो कभी शोर नहीं करती लेकिन हमेशा दिलों में गूंजती रहती हैं। ऐसी ही एक मधुर, कोमल और बेहद सुसंस्कृत आवाज थी सुमन कल्याणपुर। आज हम याद कर रहे हैं उस महान गायिका को जिनकी आवाज में मिठास भी थी, संवेदना भी थी और भारतीय संगीत की गरिमा भी थी। सुमन कल्याणपुर ने अपने गायन सफर में हजारों गीत गाए, हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, भोजपुरी और कई अन्य भाषाओं में भी उन्होंने अपनी कला का जादू बिखेरा। उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनकी सहजता, वो कभी गीत पर हावी नहीं होती थी बल्कि गीत के भावों को अपने स्वर में इस तरह पिरो देती थी कि श्रोता सीधा उससे जुड़ जाते थे। श्रोताओं, कई बार उनकी आवाज़ को लोग सुनकर भ्रमित हो जाते थे लेकिन धीरे धीरे सुमन जी ने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने संगीतकारों और श्रोताओं दोनों का अपार स्नेह प्राप्त किया। सुमन कल्याणपुर का करियर उस दौर में चमका जब हिंदी सिनेमा संगीत अपनी ऊंचाई पर था। उन्होंने अनेक दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया।

किया और अपने मधुर स्वरों से अनगिनत गीतों को यादगार बनाया। संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, भक्ति संगीत और क्षेत्रीय भाषाओं में उन्होंने कई गीत गाए। बहुत उल्लेखनीय उन्होंने कार्य किए। उनकी आवाज़ में एक ऐसी पवित्रता थी जो सीधे मन को स्पर्श करती थी। उनके गीत आज भी रेडियो, संगीत सभाओं और श्रोताओं की यादों में जीवित हैं। सुमन कल्याणपुर का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि सच्ची कला को प्रचार की नहीं, समर्पण की आवश्यकता होती है। उन्होंने हमेशा अपने काम को महत्व दिया और अपने स्वरों से संगीत प्रेमियों के दिलों में स्थायी स्थान बनाया। सुमन कल्याणपुर का स्वर भले ही अब प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत भारतीय संगीत की धरोहर बन चुके हैं। जब जब मधुरता, शालीनता और भावपूर्ण गायन की चर्चा होगी, सुमन कल्याणपुर का नाम आदर से लिया जाएगा। आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुर का गाया ये गीत।

श्रोताओं, कुछ फिल्में देखी नहीं जाती, जी जाती हैं। और ऐसी फिल्मों के नाम आते ही याद आते हैं मणिरत्नम। उनकी फिल्मों में प्यार है, राजनीति है, दर्द है, लेकिन सबसे खास है खामोशी, क्योंकि मणिरत्नम के किरदार कम

बोलते हैं मगर बहुत कुछ कह जाते हैं। जब जब रोजा आई तब लोगों ने महसूस किया कि देशभक्ति भी बेहद संवेदनशील मुद्दा है। रोजा ने किया लोगों को देशभक्ति के प्रति संवेदनशील। फिर आई बॉम्बे जिसने प्यार और सांप्रदायिकता के बीच इंसानियत की आवाज़ सुनाई, और फिर दिल से जहां प्रेम जुनून और दर्द सब एक साथ पर्दे पर बहते नजर आए। मणिरत्नम की फिल्मों में जो बैकग्राउंड में बजती धुन होती थी वो सीधे दिल में उतर जाती थी। अब वक्त है उस गीत का जिसने प्यार को एक नई सिनेमाई भाषा दी।

श्रोताओं, भारतीय फिल्म संगीत में कुछ धुनें ऐसी हैं जिन्हें सुनते ही लगता है जैसे कहीं दूर बारिश हो रही हो, या खेतों में हवा चल रही हो, या बचपन लौट आया हो। ये जादू है इलैया राजा का।

इलैया राजा सिर्फ संगीतकार नहीं, संगीत के जादूगर हैं। उन्होंने हजारों गीतों में लोक संगीत, पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा और भारतीय भावनाओं को इस तरह मिलाया कि हर धुन अमर बन गई। कहा जाता है कि वो कई बार पूरा ऑर्केस्ट्रेशन एक ही बार में लिख लेते थे। आज के कंप्यूटर युग में भी ये बात लोगों को चौंका देती है कि उनके संगीत में इतना टैलेंट कैसे है। उनके संगीत में गांव का रास्ता भी है, मंदिर की घंटियां भी और शहर की अकेली रात भी। और खास बात यह है कि उनकी धुनों ने मणिरत्नम की शुरुआती फिल्मों को भी नई पहचान दी। दो महान कलाकार, एक कैमरे से जादू करता था, दूसरा सुरों से। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें संगीत सांस ले रहा है।

साथियों, अगर भारतीय सिनेमा का कोई चेहरा दुनिया भर में सबसे पहले पहचाना गया तो वो थे राज कपूर। राज कपूर ने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने अपने सपने बना डाले। राज कपूर की मुस्कान में मासूमियत थी और आंखों में संघर्ष। श्री 420 का वो भोला इंसान, आवारा का भटका हुआ नौजवान, आज भी लोगों को अपने जैसा लगता है। और सोचिए, उस दौर में जब दुनिया भारतीय सिनेमा को ठीक से जानती भी नहीं थी, तब राज कपूर की फिल्में रूस तक में देखी जा रही थी। उनका सिनेमा बताता था, दिल बड़ा होना चाहिए, जेब छोटी हो तो भी चलेगा। साथियों, सिनेमा तब यादगार बनता है जब कहानी दिल छू ले, कैमरा आंखों को रोक दे और संगीत आत्मा में उतर जाए। मणिरत्नम और इलैया राजा की जोड़ी ने यही किया। एक समय ऐसा था जब दक्षिण भारतीय सिनेमा का संगीत पूरे देश में गूंजने लगा था। कैमरे की दुकानों में, क्षमा चाहेंगे, कैसेटों की दुकानों में लोग फिल्मों से पहले उनके गाने पूछते थे। कई लोग फिल्म देखने से पहले उनके गीतों को सुनना पसंद करते थे, क्योंकि उसमें संगीत इलैया राजा का होता था। और मणिरत्नम की फिल्मों में गाने रुकावट नहीं होते थे, कहानी का हिस्सा होते थे। गीत शुरू होता था और कहानी आगे बढ़ती थी। आज के वायरल ट्रेंड में भी उनकी फिल्मों के कई सारे दृश्य सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं। आज राज कपूर की पुण्यतिथि है। सुमन कल्याणपुर ने 31 मई 2026 को ये शरीर त्यागा और मणिरत्नम

और इलैया राजा का आज जन्मदिन है। राज कपूर ने बड़े सेट बनाए मगर कहानियाँ आम आदमी की रखी। उन्होंने रोमांस दिखाया मगर उसके पीछे समाज की बात भी कही। तो श्रोताओं, आज का ये खास कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज के इस खास सफ़र में हमने महसूस किए मणिरत्नम के दृश्य, इलैया राजा की धुनें और राज कपूर के सपने। कुछ कलाकार समय के साथ पुराने नहीं होते।

कार्यक्रम रजनीगंधा भी आप सुन रहे थे। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या और अंग्रेजी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे।

0: आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी

0: और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2-3 branches also।
1: वही प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे

पक्षीय हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टोंटन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 3रा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: India rejects third-party involvement in resolving boundary matters with Nepal. India successfully flight tests indigenous Rudram 2 air-to-surface missile. Prasar Bharati's Waves OTT crosses 1 crore users within 2 years of launch. 21 people killed in Russian strikes across Ukraine. And in women's cricket, India to take on hosts England in third and final T20 international at Taunton tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: समाचार संध्या और अंग्रेजी में समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। अब हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अभी आपने लता मंगेशकर का गाया लिबास फिल्म का गीत सुना। बोल गुलजार के थे संगीत आर डी बर्मन का। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर की। मेरा

0: राजू।
1: राज कपूर की शुरुआती फिल्मों में से ज्यादातर फिल्मों में उनका स्क्रीन नेम राजू यही रहा है या राज रहा है, लेकिन इनके माता पिता ने इनका नाम रखा रणवीर राज कपूर। 14 दिसंबर 1924 को खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान के पेशावर शहर में इनका जन्म हुआ, पृथ्वीराज कपूर के घर में। पृथ्वीराज कपूर पहले से ही थिएटर से जुड़े हुए थे, आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में भी अपनी एक अलग जगह बनाई और ऐसा ही कुछ करना चाहते थे राज कपूर। जब बड़े हुए तो उनका ध्यान फिल्मों में ज्यादा लगता था। कुछ लोगों का कहना है कि उस समय राज कपूर को देखकर पृथ्वीराज जी अक्सर कहा करते थे कि राज जीवन में कुछ कर नहीं

राज कपूर का ज्यादातर वक्त फिल्मों के इर्द गिर्द ही घूमता। अब ये सब देखकर पृथ्वीराज जी, जिन्हें की पापा जी कहा जाता था, उन्होंने उस दौर के सफल निर्देशक केदार शर्मा जी से मुलाकात की और कहा कि भाई राज बहुत कुछ कर नहीं रहा है और मुझे इसकी बड़ी चिंता है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास भेज दीजिए, देखता हूं क्या कर सकता हूं मैं उसके लिए। इस तरह से राज कपूर साहब केदार शर्मा साहब के पास पहुंच गए और उन्होंने उन्हें अपना सहायक बनाकर रख लिया और वहां शुरुआती जो उनका काम था वो क्लैब दिया करते थे केदार शर्मा जी के प्रोडक्शन में। यहां से उनकी जिंदगी की जो शुरुआत है, यानी करियर की जो शुरुआत है, एक तरह से कही जा सकती है। लेकिन फिल्मों के काम में जिस तरह से राज कपूर ने मन लगाकर काम करना शुरू किया, ये देखने के बाद पृथ्वीराज जी थोड़े अचंभित हुए और फिर उन्होंने अपने किसी जानने वाले से ये कहा था कि राज फिल्मी दुनिया में बहुत शानदार काम करेगा। ये बात अलग है कि आज केदार शर्मा ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया है, लेकिन एक दिन राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं बल्कि पृथ्वीराज को राज कपूर का पिता होने के कारण जाना जाएगा। ऐसी दीवानगी है फिल्मों को लेकर मेरे बेटे में।

0: कहें।
1: राज कपूर सहायक के रूप में काम कर रहे थे निर्देशक केदार शर्मा के साथ, और केदार शर्मा ने एक दिन, बल्कि क्या अक्सर, वो इस बात पर गौर किया करते थे कि राज कपूर जो हैं वो हमेशा आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारा करते हैं या अपने आप को अलग अलग एंगल से देखा करते हैं, और उनसे बातचीत और उनके विचारों के जरिए भी केदार शर्मा ने ये महसूस किया कि इस लड़के में एक्टर बनने के गुण ज्यादा हैं, और बस उनको समझ में आ गया कि ये लड़का एक अच्छा अभिनेता बन सकता है। बस फिर क्या था, 1947 में केदार शर्मा ने राज कपूर को हीरो लेकर फिल्म बना दी नीलकमल। फिल्म नीलकमल में राज कपूर के साथ हीरोइन थी मधुबाला, और ये सच्चाई तो पूरी दुनिया जानती है कि इन दोनों ही कलाकारों ने आगे जाकर हिंदी सिने संसार पर राज किया। आज भी राज कपूर और मधुबाला के बिना हिंदी फिल्मों के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहरहाल, फिल्मों में राज कपूर की जो पारी 1947 में शुरू हुई बतौर नायक, वो कहीं ना कहीं राज कपूर के लिए भी सिर्फ एक स्टार्टिंग वाली बात थी। उनको तो पता था कि उन्हें आगे जाकर बहुत कुछ करना है, और इसकी शुरुआत 1948 में ही उन्होंने कर दी। उन्होंने बतौर निर्माता, निर्देशक और हीरो फिल्म पेश कर दी आग।

फिल्म आज कई कारणों से विवादग्रस्त रही और राज कपूर की अपनी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं कर सके, लेकिन राज कपूर घबराए नहीं। 1949 में वो लेकर आ गए आग की सारी तपिश बुझाने के लिए बरसात।

बरसात अपने साथ साथ सफलता का सैलाब लेकर आई और इसी के साथ राज कपूर की एक नई टीम बनी, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, और ये फिल्म लिखी थी रामानंद सागर ने जो

आगे जाकर बहुत बड़े निर्माता निर्देशक बने, तो फिल्म बरसात रामानंद सागर ने लिखी थी और इस फिल्म की नायिका भी नई थी निम्मी, और कैमरामैन राधु कर्मरकर। राधु कर्मरकर ये वही कैमरामैन है जो आगे जाकर जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के निर्देशक बने, इसके प्रोड्यूसर भी राज कपूर ही थे। तो मैं बात कर रहा था फिल्म बरसात की। बरसात में सिर्फ अदाकारी और कहानी ही नहीं, उसका संगीत भी इतना बेहतरीन था, आज भी यूं लगता है जैसे

अरे वो कहानी ही नहीं, उसका संगीत भी इतना बेहतरीन था, आज भी यूं लगता है जैसे बारिश की बूंदें टप टप टप गिर रही हों, इतना तरोताजा बरसात का संगीत उस समय भी था और आज भी है।

अब बात 1950 की। 1950 में राज कपूर की 6 फिल्में आई और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 6 फिल्में एक साल में राज कपूर की 1950 के बाद फिर कभी नहीं आई। बहरहाल इन 6 फिल्मों में नरगिस, गीता बाली, सुरैया, निम्मी और रेहाना थी। जान पहचान, प्यार, दास्तान, भवरा, सरगम और बावरे ने मुझे सच...

0: क्या?
1: बहुत खतरा रहे थे तुम्हें
0: भी याद होगा

ये छह की छह फिल्में सुपरहिट फिल्में रहीं और इन फिल्मों के सुपरहिट होने के कारण उस समय के जो दिग्गज निर्माता निर्देशक थे महबूब खान, केदार शर्मा, नितिन बोस, बिमल रॉय, महेश कौल, वी शांताराम, इन सबको कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारी टक्कर में कोई आ गया है। लेकिन फिर भी राज कपूर ने अभी वो मयार हासिल नहीं किया था, वो ऐसा खुद समझते थे और उनको लगता था कि मुझे अभी एक ऐसी फिल्म तो जरूर बनानी है कि मैं इनकी श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाऊं। और शायद उन्हें इंतजार था अपनी फिल्म आवारा।

इस फिल्म आवारा की लोकप्रियता ने राज कपूर को देश ही नहीं विदेशों में लोकप्रिय कर दिया। भारतीय फिल्म संगीत देश की सीमाओं को लांघकर गूंजने लगा और आज भी कई देशों में ये फिल्म अपनी पहचान बनाए हुए है। अब बात 1952 की। बतौर नायक राज कपूर की 4 फिल्में इस साल रिलीज हुई, अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना। और इन चारों ही फिल्मों में उनके साथ थी नरगिस और चारों फिल्में हिट थी।

अगला साल राज कपूर के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, या ये कह लें कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। 1953 में राज कपूर की तीन फिल्में आईं, धुन, पापी और आह।

आह जो राज कपूर की बेहद सफल हो सकती थी वाली फिल्म थी, क्योंकि आह फिल्म में ऐसी हर वो बात थी जो एक फिल्म की सफलता की गारंटी बन सकती थी, जो एक फिल्म को सफलता की सीढ़ियों पर ले जा सकती थी। लेकिन बावजूद इसके ये फिल्म राज कपूर के लिए एक आह ही साबित हुई।

राज कपूर जैसी शख्सियत के बारे में सिर्फ एक ही कार्यक्रम में सब कुछ कह देना या बता देना कितना मुश्किल हो सकता है, ये तो आप भी समझ सकते हैं।

हमारी फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन अपने हिस्से का किरदार निभाकर 2 जून 1988 को इस दुनिया के रंगमंच से विदा हो गया, लेकिन सबको सिखा गया, शो मस्ट गो ऑन।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम। राज कपूर साहब पर हमने कुछ बातचीत की। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। स्वर शोध और आलेख अमरकांत का और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। फिलहाल नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती।

0: साथ साथ
1: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर, विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: हाय हाय।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। उस रोज गाया था उसने एक गीत, प्यार हो मेरा बहार हो मेरा। उसके इस गीत से बहार आ गई थी जिंदगी में, पर अचानक वक्त की धूल भरी आंधी चली और जिंदगी के मन के कुछ मोती टूटकर बिखर गए। जिंदगी उदास गीतों का सिलसिला बन गई।

हुस्न और इश्क का मिलन होता है तो समर जाती है जिंदगी। इश्क में जब दिल जकड़ जाता है तो जिंदगी की परेशानियां आसानियों में बदल जाती हैं। लेकिन जिंदगी कभी एक सुर में नहीं गाती। जिंदगी के थाट पर विविध रंगी राग गाए जाते हैं। जिंदगी के समीकरण डगमगाए और प्रेम राग उदास राग में बदल जाता है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। बदलता है प्रेम का मौसम, काली घटाएं घिराती हैं, जिंदगी की राहें भटक जाती हैं, कांटों का लंबा सफर बन जाती है जिंदगी। मोहब्बत भरी बातों में तकरार के अल्फाज खास हो जाते हैं, मोहब्बत के लिए वक्त कम पड़ जाता है, तकरार की घड़ियां लंबी हो जाती हैं। जिंदगी मोहब्बत और तकरार से मिलकर बनती है, पर जिंदगी तभी लुभावनी लगती है जब मोहब्बत भरे लम्हों से आबाद होती है जिंदगी। दो दिल रूठते हैं तो प्यार का मौसम उदास हो जाता है।

जिंदगी की हर कहानी में उसका नाम लिख दिया था। डायरी के हर पन्ने पर उसी की बातें दर्ज हो गईं। दुनिया के बहुत सारे रास्तों पर चलकर देखा, सबसे खूबसूरत रास्ता वही लगा जिस पर पड़े थे उसके कदम। लेकिन अचानक वक्त ने करवट ली, उसके कदम तेज हो गए, वो रास्तों की बजाय हवा में उड़ने लगा। बस उसी रोज से जिंदगी की राह में कांटे बिछ गए।

ख्वाहिशों के गांव में एक आशियां बनाया था, मन्नतों के धागे से गूंथी थी प्रेम की माला। मुश्किलों की आंधी ना आ जाए ये सोचकर सदका उतारा था। नीली आंखों की नदी में सुनहरे ख्वाब पनाह पाते थे, पर एक रोज काली घटाएं घिरी, नैनों में नदी तिराई, बरसने लगे नैन, होठों पर उदासी की बूंद ठहर गई।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी।

0: समिति 1 माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा दिल्ली से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system.